श्रोताओं सुप्रभात। FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 3 जून सन 2026, आज बुधवार है। सुबह के 5:57 हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने ही वाले हैं। आइए सुनते हैं समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष S. राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी।
1: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
2: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
1: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
3: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक, नगर पालिका और

0: कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टोंटन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। मंगल प्रभात की करते हैं शुरुआत मातृ वंदना से। समूह स्वर में सुनते हैं ये देशगान।

अभी आप सुन रहे थे चित्रा सिंह का गाया ये भक्ति गीत। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति सुरेश वाडेकर की आवाज़ में।

तुलसीदास की रचना और सुरेश वाडेकर का स्वर। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म आंखें से। इस भजन को साहिर लुधियानवी ने लिखा है और संगीत है।

0: लता मंगेशकर के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होती है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का प्रसारण। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। आलेख है स्वामी आत्मानंद का और वाचक स्वर है दीपक हटवार का।
1: आज सर्वत्र हमें यह बात सुनने को मिलती है कि ईमानदारी एक गुण नहीं बल्कि दुर्गुण है। लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति ईमानदार होगा वह जीवन में उन्नति नहीं कर सकता। इसके कई उदाहरण दिए जाते हैं। यदि व्यापारी या उद्योगपति ईमानदार होगा तो उसका धंधा बैठ जाएगा। यदि वह अपनी कमाई सच्चाई से बताता रहे तो आयकर विभाग वाले उसकी लुटिया डुबो देंगे। यदि किसी साल उसे घाटा पड़ा तो वे उसकी बात नहीं मानेंगे और अधिक आय वाले वर्ष के आधार पर ही घाटा वाले वर्ष में भी उसके आयकर का निर्धारण करेंगे। यदि मातहत कर्मचारी ईमानदार हुआ तो वह अपने बॉस को खुश नहीं कर सकेगा। चाहे शासन का कोई भी विभाग हो, बॉस को खुश करने की प्रक्रिया में मातहत अधिकारी को बेईमान बनना ही पड़ता है। यह बात आज हमें हर जगह सुनाई पड़ती है। इसलिए लोग कहने लगे हैं कि ऑनेस्टी डज नॉट पे, अर्थात ईमानदारी से काम नहीं बनता। ईमानदार व्यक्ति को लोग आउटडेटेड यानी पिछड़ा हुआ मानते हैं। फिर दूसरे हैं जो ईमानदारी को एक गुण तो मानते हैं पर यह कहते हैं कि आज जब सब लोग बेईमान हैं तब मैं अकेला ईमानदार बनकर क्या करूंगा। उनका तर्क है कि अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा। वे महाभारत के एक वाक्यांश का उद्धरण देते हुए कहते हैं, षठम प्रति साठ्यम कुरिया, अर्थात षठ के प्रति षठता का ही व्यवहार करना चाहिए। यदि दूसरा व्यक्ति सरल और निष्कपट हो तब तो उसके साथ सरलता और निष्कपटता से पेश आया जा सकता है, पर यदि वह दुष्ट हो, छली हो और कपटी हो तब उसके संदर्भ में सरलता और निष्कपटता के व्यवहार का कोई मतलब नहीं। अब ये दोनों तर्क वजनी मालूम होते हैं। मेरे एक सम्मान्य मित्र हैं, रविशंकर विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। उन्हें एक वर्ष अपनी पुस्तकों की रॉयल्टी मिले, स्वाभाविक ही आय अधिक हुई। वे ईमानदारी की प्रतिमूर्ति हैं। वे अपनी आय का एक नया पैसा तक हिसाब में लाने में भूल नहीं करते, पर आयकर विभाग वालों ने उस वर्ष की आय के आधार पर अन्य वर्षों की भी आय पकड़ ली और उन पर आयकर ठोंक दिया। उन्होंने ऋण लेकर आयकर पटाया। यह बात दूसरी थी कि अधिक पटाया गया आयकर उन्हें बाद में लंबे समय के बाद वापस कर दिया गया, पर उन्हें बहुत मानसिक और शारीरिक परेशानी हुई होगी इस तथ्य

0: से भला कौन इनकार कर सकता है। उनके आयकर प्रकरण के सुलझने में इतना विलंब इसलिए लगा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को खुश करने से मना कर दिया। यह घटना पूर्व में ईमानदारी के विपक्ष में कही गई दोनों तर्कों को ही पुष्ट करती है। प्रश्न उठता है कि ईमानदारी को तब जीवन में क्यों स्थान दिया जाए। उत्तर यह है, इसलिए कि ईमानदारी ही मनुष्य के अस्तित्व का मूल आधार है, उसका धर्म है। जैसे अग्नि का धर्म ताप है और उसके नष्ट होने पर अग्नि का अग्नित्व ही नष्ट हो जाएगा, वैसे ही ईमान मनुष्य का धर्म है और उसके नष्ट होने से मनुष्यता ही नष्ट हो जाएगी। आज मानवता नाश के कगार की ओर इसीलिए जा रही है कि उसका ईमान टूट रहा है। हम यह दलील तो देते हैं कि ईमानदारी से काम नहीं बनता, पर अपने लिए व्यवहार में ईमानदारी चाहते हैं। यह हमारे जीवन की एक महती विडंबना है। हम चाहते हैं कि हमें दुनिया से धोखाधड़ी करने की छूट मिलनी चाहिए, पर हम यह नहीं चाहते कि कोई हमसे धोखाधड़ी करे। हम दूसरों से बेईमानी का बर्ताव करने को जमाने की चाल मानते हैं, पर कोई अगर हमसे बेईमानी का बर्ताव करता है तो नाखुश होते हैं। क्या हम चाहेंगे कि मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा भाई, मेरा पिता, मेरा नौकर, मेरा मातहत कर्मचारी मेरे प्रति बेईमान हो? क्या हम अपनी पत्नी को हमारे अपने प्रति बेईमान होने की छूट दे सकते हैं? यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो हमें कतई यह कहने का अधिकार नहीं है कि ईमानदारी से काम नहीं बनता। मनुष्य को अपनी यह दुरंगी चाल बदलनी पड़ेगी। फिर यह जो दलील दी गई कि अकेले हम ईमानदार बनकर क्या करेंगे, इसके उत्तर में कहना यह है कि यदि हम मानवता के हितैषी हैं तो हमें अपने जीवन से ही ईमानदारी का पाठ शुरू करना होगा। अंग्रेजों की सल्तनत का विरोध अकेले महात्मा गांधी ने ही शुरू किया। उनका दृष्टांत हमें प्रेरणा प्रदान करता रहेगा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:35 हुए हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान का संगीतमय पाठ। मुख्य गायक स्वर है अनूप जलोटा का और संगीत निर्देशन है सतीश भाटिया का।

राम सखा निषाद राज को गले लगाकर भरत ने कुशलक्षेम पूछा। निषाद राज ने कहा, हे प्रभु, कुशल का स्रोत तो आपके चरण हैं, जिनके आज मुझे दर्शन हो गए और आपकी कृपा पाकर मेरी करोड़ों पीढ़ियों का कल्याण और मंगल हो गया। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाती हूँ, किंतु श्री राम ने मुझ जैसे अधम को अपनाकर विश्व का आभूषण बना दिया है। निषाद राज की प्रीति देख और उनके वचन सुनकर छोटे भाई शत्रुघ्न उनसे मिले। अपने कुल और धाम बताते हुए निषाद राज ने सभी रानियों को प्रणाम निवेदित किया। रानियां उन्हें लाख वर्ष की आयु प्राप्त करने का आशीष देती हैं। ये अद्भुत दृश्य देखने वाले अनायास ही कह उठते हैं कि मनुष्य जीवन धारण करने का वास्तविक लाभ तो निषाद राज ने पाया है। निषाद सेवकों ने घरों, वृक्षों के नीचे, बागीचों तथा आसपास के वन उपवन में भरत जी के पूरे दलबल के विश्राम के लिए समुचित प्रबंध कर दिए। श्रृंगवेरपुर को देख भरत का शरीर प्रेमातिरेक से शिथिल पड़ गया। गंगा के दर्शन कर सभी यही कामना प्रकट करते हैं कि श्री राम के चरणों में उनका

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान अनूप जलोटा की स्वर में। संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। सुबह के 6:46 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 6:50 पर आप आनंद लीजिएगा कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीतों का। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे 7:10 पर। 7:20 का वक्त होगा कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट का। सुबह 8:00 समाचार आप सुन सकते हैं, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 8:15 का वक्त होगा कार्यक्रम सुगम संगीत का। 8:30 पर महिला श्रोताओं का अपना मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत। 9:00 का वक्त होगा विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रमों का, जिसे हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। जिले की चिट्ठी, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 10:00 और 10:05 पर फिल्म संगीत का प्रसारण किया जाएगा। 10:30 का वक्त होगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का उमंग।

सुबह 11 बजे विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रमों का एक बार पुनः प्रसारण किया जाएगा। दोपहर 2:10 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से और 2:15 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। दोपहर 2:30 पर विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रमों का आप लीजिएगा आनंद। हमारी शाम की सभा आरंभ होती है कार्यक्रम युववाणी के साथ। शाम 5:00 5:30 पर फिल्म संगीत, 6:00 गुड इवनिंग बालाघाट, 6:30 पर सुगम संगीत। शाम 7:30 पर हेलो ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा। रात्रि 8:00 फिल्म संगीत का आप आनंद लीजिएगा और 8:30 पर पॉप म्यूजिक का। रात्रि 9:00 विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण किया जाएगा। रात्रि 10:30 पर सदाबहार फिल्मी गीतों का आप आनंद लीजिएगा। रात्रि 11:00 हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये तो थी हमारी आज की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM बैंड 101.3 MHz पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत।

अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में फिल्म आवारा का गीत। शैलेंद्र के बोल थे और शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म लाजवंती से। आवाज है आशा भोसले की, एसडी बर्मन का संगीत है और मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं।

पोस्ट बॉक्स नंबर 999। आइए सुनते हैं इस फिल्म में मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज़ में गाया हुआ ये गीत। कल्याण जी आनंद जी का संगीत है और पंडित संतोषी के बोल।

आशा भोसले की आवाज़ में आइए सुनते हैं साहब बीबी और गुलाम फिल्म का गीत। शकील बदायूनी के बोल हैं और हेमंत कुमार का संगीत।

कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म बरसात से, शंकर जयकिशन का संगीत है और रमेश शास्त्री के गीत।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म बरसात का गीत। इस गीत के साथ ही हमारा आज का सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में जनजातीय गरिमा उत्सव का शुभारंभ करेंगी। प्रदेश में पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को सिला हुआ गणवेश मिलेगा, प्रदेश कैबिनेट में लिया गया निर्णय। रक्षाबंधन से पहले प्रदेश में चलेंगी सरकारी बसें, शुरुआत इंदौर से होगी। और प्रदेश में मानसून 20 से 22 जून के बीच दस्तक दे सकता है। अब समाचार विस्तार से। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और परियोजनाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअली उद्घाटन भी करेंगी। विदेश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। प्रदेश के सभी शासकीय शालाओं में कक्षा पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को अब सिला हुआ गणवेश प्रदान किया जाएगा। यह निर्णय कल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि जनकल्याण और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए 21,485 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। वहीं प्रदेश में स्वामित्व योजना में जिन भूखंडधारियों के अधिकार अभिलेख निर्मित किए गए हैं, उन्हें आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए इन निर्मित अधिकार अभिलेखों का पंजीयन कराया जाए। इसके लिए डीड ऑफ कन्वेंस का निष्पादन और पंजीयन किया जाएगा, ताकि नागरिक आवश्यकता अनुसार गृह निर्माण, व्यवसाय एवं कृषि संक्रियाओं आदि के लिए ऋण प्राप्त कर अपनी आजीविका एवं आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना सकें। मंत्री चैतन्य कश्यप ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लेकर भी जानकारी दी।
1: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता के बारे में जन सुनवाई के कैंप और इसके विभिन्न स्तरों के ऊपर प्रचार माध्यम से इसमें जो सुझाव चाहिए जनता के वे सारे लेने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। तब इस कार्य को पूर्ण करके मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता की ओर हम आगे कदम बढ़ाएंगे।
0: प्रदेश में रक्षाबंधन से पहले सरकारी बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल भोपाल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत बसें शुरू करने की तैयारी जोरों पर है, ताकि रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों के घर आसानी से पहुंच सकें। बसों की शुरुआत पहले इंदौर से की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी और दूरदराज के इलाकों में अब भी लोग जान जोखिम में डालकर लोडिंग वाहनों से सफर करने को मजबूर हैं, और ये सेवा उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक यात्रा का विकल्प प्रदान करेगी।
2: आवागमन के साधनों के लिए बसों का इंतजाम करना ये हम सबकी जवाबदारी है। हमारी सरकार के गठन के समय हमने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की जो घोषणा की थी, अब धीरे धीरे करके हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इस साल का रक्षाबंधन बहनें अपनी बसों से जाएगी, ये प्रयास कर रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे इस सेवा के माध्यम से राज्य के अंतर्वर्ती बाकी राज्यों के साथ भी इसका संबंध जोड़ते हुए यात्री परिवहन सेवा के रूप में आएगा।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में मानसून की तैयारियों की समीक्षा की। मौसम विभाग ने इस साल मानसून के सामान्य से कम यानी करीब 90% रहने और अलनीनो का असर पड़ने की आशंका जताई है। श्री चौहान ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि जिन इलाकों में कम बारिश की आशंका है, वहां वैकल्पिक फसलों, सूखा सहनशील बीजों और जल प्रबंधन की पूरी तैयारी रखी जाए। भोपाल के चर्चित तुषार शर्मा संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई की 5 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद पूर्व जज गिरबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को कल विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजते हुए 16 जून तक भोपाल सेंट्रल जेल में रखने का आदेश दिया है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर पेश है एक विशेष रिपोर्ट।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इस बार का वैश्विक अभियान जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है और इसकी मेजबानी अजरबैजान कर रहा है। प्रदेश में भी इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारत की डिजिटल पेमेंट व्यवस्था में UPI ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। मई 2026 में UPI के जरिए 23.2 अरब यानी करीब 2312 करोड़ लेनदेन हुए, जिनकी कुल कीमत लगभग 30 लाख करोड़ रुपए रही। इसका मतलब है कि हर रोज औसतन 73 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन UPI के जरिए हुए हैं। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेब्स OTT की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्ष से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि यह भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाली स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में नौतपा के दौरान मौसम ने पूरी तरह करवट ले ली है। पिछले 8 दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है, जिसके चलते गर्मी और लू का प्रभाव लगभग समाप्त हो गया है और न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में फिलहाल प्री मानसून गतिविधियां सक्रिय हैं। टर्फ लाइन और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई इलाकों में बारिश हो रही है। विशेषज्ञों के अनुसार इस बार मानसून 20 से 22 जून के बीच प्रदेश में दस्तक दे सकता है। अब रुख करते हैं क्रिकेट का। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल रात टॉन्टन में खेले गए तीसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय महिला टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 180 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में महिला स्वसहायता समूहों ने गेहूं उपार्जन अवधि में 7,712 किसानों से 5,27,000 क्विंटल से अधिक गेहूं की खरीदी की। खंडवा में कल युवा संगम रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जाएगा। झाबुआ कलेक्टर ने जिले के रामा में सचिवों और पटवारियों की कल बैठक ली और डिंडोरी में जल संचय जन भागीदारी अभियान के अंतर्गत 8 लाख से अधिक स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में जनजाति गरिमा उत्सव का शुभारंभ करेंगी। प्रदेश में 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सिला हुआ गणवेश मिलेगा। प्रदेश कैबिनेट ने लिया निर्णय। रक्षाबंधन से पहले प्रदेश में चलेंगी सरकारी बसें। शुरुआत इंदौर से होगी और प्रदेश में मानसून 20 से 22 जून के बीच दे सकता है दस्तक। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के त्रिरंगों से सजा ये कार्यक्रम, जिसका नाम है
1: नमस्कार बालाघाट।

श्रोताओं, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। बालाघाट कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में है स्वागत। और आज आपके साथ हूँ मैं, आपके रेडियो मित्र अमिता श्रीवास्तव। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हमारे अपने कौन होते हैं? क्या वो जो हमारे आसपास हों? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो हमारे आसपास है वो आपका हित चाहे, आपसे स्नेह करे, आपका सम्मान करे। अपनों का पता तो हमें मुसीबत के समय ही होता है, तब जबकि हमारे ऊपर कोई संकट आ जाए या फिर हम कोई कभी ऐसी किसी परेशानी में पड़ जाएं, तो जो हमसे सच्चा प्रेम करता होगा, वो जो निस्वार्थ भाव से, और वही हमारा अपना होता है। ऐसे लोगों की संख्या हम सभी की जिंदगी में सिर्फ गिनती की ही होती है। दोस्तों, ऐसे लोगों की कद्र करिए, उन्हें पहचानिए, ऐसे रिश्तों को सहेज कर रखिए, संभाल कर रखिए, क्योंकि सच्चा प्रेम करने वाले ऐसे लोग हमें बहुत ही किस्मत से मिलते हैं, जिनके साथ होने से हम अपने सपनों को भी सच कर सकते हैं। साथ ही जिंदगी का यह सुहाना सफर कट जाता है अपनों के साथ, हंसते गाते और गुनगुनाते।

नमस्कार। बालाघाट कार्यक्रम में अब है बारी आज के सुविचार की। दार्शनिक ओशो के अनुसार सवाल यह नहीं है कि मृत्यु के बाद जीवन मौजूद है या नहीं, असली सवाल यह है कि आप मौत से पहले जीवित हैं या नहीं। मंथन कीजिए ऐसे अनमोल सुविचार पर जो जिंदगी को अपने तरीके से पूरे हर्षोल्लास के साथ जीने के लिए प्रेरित करते हैं। बीते हुए कल की चिंता को भुलाकर आने वाले कल के बारे में सोचकर अपना आज खराब मत कीजिए। जिंदगी के इस सफर को भरपूर एंजॉय करिए इस गीत के साथ।

0: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
1: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी, चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां BTech कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री और साथ ही पॉलिटेक्निक के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में।
0: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबारा रोड, गर्रा, बालाघाट।
1: मोबाइल नंबर 6262604111 और 9425836824।
2: नमस्कार, बालाघाट कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है और आज आपके साथ हूँ मैं अमिता। श्रोताओं, कार्यक्रम में हम पलटते हैं तारीखों के पन्ने क्रम इतिहास में। आज है 3 जून। आज ही की तारीख में वर्ष 1918 में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश के इंदौर में हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित किया गया,

में पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। 3 जून सन 1965 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री एड वाइट जेमिनी 4 मिशन के दौरान स्पेस वॉक यानी अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाले पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बने। 3 जून वर्ष 1947 को भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने माउंटबेटन योजना का प्रस्ताव रखा। इस योजना के अनुसार अखंड भारत को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देशों में बंटवारे का ऐलान किया गया था। साल 2018 में भारत ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का ओडिशा के तट पर सफल परीक्षण किया था। कार्यक्रम में बातें अभी और भी, पहले आपके रेडियो सेट तक पहुंचा रहे हैं ये प्यारा सा गीत।

और श्रोताओं, आज ही की तारीख में क्रम इतिहास के अंतर्गत वर्ष 2018 से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित पहला विश्व साइकिल दिवस मनाया गया, जिसका उद्देश्य साइकिल को परिवहन के रूप में एक सरल, किफ़ायती, स्वास्थ्यवर्धक और पर्यावरण अनुकूल साधन के रूप में बढ़ावा देना है। यानी कि यह यातायात का सबसे सस्ता और सरल साधन है। नियमित रूप से साइकिल चलाने से शारीरिक फिटनेस और स्वास्थ्य बेहतर रहता है। इसके साथ ही साथ साइकिल परिवहन का एक ऐसा साधन है जिससे प्रदूषण नहीं फैलता है।

श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं इतिहास की आज की तारीख से जुड़ी। तो हम आपको बता दें कि आज की तारीख में वर्ष 1929 को गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे चिमन भाई पटेल का जन्म हुआ था। वर्ष 1930 में राजनेता, पत्रकार और देश के पूर्व रक्षा मंत्री रहे जॉर्ज फर्नांडिस का। वर्ष 1941 को भारत की प्रसिद्ध महिला न्यायाधीश रही रूमा पॉल का जन्म हुआ था। और आज ही की तारीख में इस संसार से विदा लेने वाले कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं। 3 जून सन 2014 को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे गोपीनाथ मुंडे का। और वर्ष 2016 में दुनिया के दिग्गज अमेरिकी हैवीवेट बॉक्सर मोहम्मद अली का निधन हुआ था।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब हम अपने युवा श्रोताओं को देते हैं रोजगार संबंधी जानकारी इस रोजगार सूचना के माध्यम से। कार्यालय महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ में शीघ्र लेखक अंग्रेजी के 14 पद और सहायक वर्ग 3 के 14 पद हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अंतिम तिथि 6 जून वर्ष 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट advocatejeneral.cgstate.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। वेबसाइट एक बार फिर सुन लीजिए, advocatejeneral.cgstate.gov.in। सूचना समाप्त हुई।
1: अच्छा, तो हम चलते हैं।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमें भी अब चलना होगा, यानी अब हमारा आज का ये अंक समाप्त करने के लिए हमारे स्टूडियो की घड़ी इशारे कर रही है वक्त का। तो चलते चलते हम आपको बता दें कि आज का ये अंक आपके रेडियो सेट तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग मिला प्रदीप कुमार एड़े और राकेश कुमार वर्मा का, रूपरेखा और संकलन था धीरज कुमार का, प्रस्तुति कुंवर विक्रम सिंह की, और आज आपके साथ थी मैं आपकी रेडियो मित्र अमिता श्रीवास्तव। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।
1: नमस्कार बालाघाट। नमस्कार बालाघाट।
0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की, भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
1: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। नवन्न में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक, नगर पालिकाएं और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काशफिन नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
4: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
3: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
5: लगभग 1 साल से यहां से दवाई ले रहा हूं, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
3: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: धन्यवाद विशाल। CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई आज के सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, CBSE चेयरमैन और सचिव हटाए गए, OSM टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, 1 महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, CBSE ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें ना विचारधारा की चिंता रहती है और ना ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल। अमर उजाला के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता DK शिवकुमार आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। और जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 8:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत।

अभी आप सुन रहे थे रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर के गाए यह गीत। इसरार अंसारी का कलाम था और रूप कुमार राठौर का संगीत। इस गीत के साथ ही हमारा आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

0: आप सभी श्रोता बहनों का आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत में और महिला जगत के आज के इस अंक को आपके लिए होस्ट कर रही हूँ मैं आपकी रेडियो सखी छाया साटी। तो कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साइकिल सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है कि आज हम अपने कार्यक्रम में इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं। तो सखियों, आपको बताते हुए हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आज के समय में यातायात का सबसे सुगम और अच्छा स्वास्थ्यवर्धक साधन साइकिल माना जाता है और आज ही के दिन हर वर्ष 3 जून को यह मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। साइकिल केवल एक वाहन नहीं बल्कि स्वास्थ्य, पर्यावरण और सादगी का प्रतीक है। और आपको बता देते हैं कि आज के समय में क्यों साइकिल हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहले तो साइकिल हमारे स्वस्थ रहने का आधार है। साइकिल चलाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हृदय मजबूत बनता है और हम अनेक बीमारियों से दूर रहते हैं। साथ ही अगर हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी यह मदद करती है। इससे हम वायु और ध्वनि प्रदूषण से बच सकते हैं। इस दिवस को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2018 में की गई थी, जिसका उद्देश्य लोगों को साइकिल के उपयोग के प्रति जागरूक करना भी है। और आजकल हम देख भी रहे हैं कि हमारे शहर में सुबह सुबह बहुत लोग साइकिल से घूमते नजर आते हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि जिस तरह से देश में हम पेट्रोल, डीजल और कच्चे तेल की समस्या से जूझ रही हैं, तो क्यों ना हम ये सुगम साधन को अपनाएं और देश हित में एक कारगर कदम उठाएं। और आज इस विशेष दिवस पर ये संकल्प लें कि छोटी छोटी दूरियों के लिए हम साइकिल का उपयोग करेंगे, ना सिर्फ स्वयं करेंगे बल्कि बच्चों और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। इससे हम अपने पर्यावरण का ध्यान रखेंगे, देश और पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएंगे। सखियों, साइकिल सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि यह हमें जीवन में आगे बढ़ने और संतुलन बनाए रखने का संदेश भी देती है। दो पहियों की ये सवारी स्वास्थ्य और खुशियों की है तैयारी। प्रदूषण को इससे दूर भगाएंगे और साइकिल से ही जीवन में मुस्कान लाएंगे। बातें करेंगे आगे भी, फिलहाल आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।
1: अरे अरे ए

सखियों, चाहे बात करें मौसम की, हवा की, पानी की या फिर मिट्टी की, ये सभी हमारे जीवन के अनिवार्य अंग हैं। सखियों, अब हम चर्चा करेंगे उस महत्वपूर्ण विषय पर जो हम सभी के वर्तमान और भविष्य से जुड़ा हुआ है, प्रकृति। जी हाँ, ये हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। स्वच्छ वायु, निर्मल जल और हरे भरे वृक्ष और साथ ही जैव विविधता, यही हमारे जीवन का आधार है। यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो जिस तरह दिन प्रतिदिन मौसम का मिजाज बदल रहा है, बेमौसम बारिश, तपन, हवा तूफान, ये सब कहीं ना कहीं मानवीय भूल का सबसे बड़ा कारण है। यदि आज हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे तभी आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और अच्छा सुंदर भविष्य दे पाएंगे। बढ़ता प्रदूषण, वनों की कटाई और जल की बर्बादी, ये सभी प्रकृति के लिए बड़ी चुनौतियां बन चुकी हैं। आज समय की मांग है कि हम सभी पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें। श्रोताओं, यदि हम पेड़ों की बात करें तो एक पेड़ अपने जीवन काल में हजारों लोगों को ऑक्सीजन प्रदान करता है। इसलिए व्यक्ति को अपने विशेष अवसरों जैसे जन्मदिवस और वैवाहिक वर्षगांठ पर, साथ ही साथ यदि घर में पारिवारिक सदस्य में किसी का जन्मदिन है तो कम से कम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। ना सिर्फ पौधा लगाना बल्कि उसका उसी तरह से देखभाल भी करना जरूरी है जैसे हम परिवार के सदस्य की करते हैं। सखी, सोने पे सुहागा वाली कहावत तो तब सिद्ध हो जाएगी यदि हम हर शुभ अवसर पर उपहार में पेड़ देना शुरू कर दें। और आजकल देख रहे हैं कि ये चलन में भी आ गया है, लेकिन जब हमें कहीं से पेड़ मिलता है या हम किसी को देते हैं पौधा उपहार में, तो हम सिर्फ उसे उपहार समझकर ले जाकर रख देते हैं, या फिर कहीं पर थोड़े गमले में, थोड़ी मिट्टी में गमला में उसे डाल दिया और भूल जाते हैं। तो जब भी आप किसी से उपहार में पेड़ लें या उसे उपहार में पौधा या दें, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि उसे ये बताएं कि उसके द्वारा दिया गए पौधे की आप उचित देखभाल करेंगे और उसे बड़ा करेंगे।

सब जो है, हमें जितनी भी सुंदरता मिल रही है, जितनी भी सुविधाएं मिल रही हैं, ये सब हमें प्रकृति से मिल रही हैं। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। प्रकृति हमारी माँ बनके हमें अपना सर्वस्व देती है। अब हमारी बारी है श्रोताओं कि हम इसे सुरक्षित और संरक्षित करने का पुनित कार्य करें। इस पुनित कार्य को करने के लिए हम अपने जीवन में छोटे छोटे उपायों को शामिल कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें, जल बचाएं, स्वच्छता का ध्यान रखें, जितना कम से कम हो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग करें, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, पंखों का इस्तेमाल सीमित करें। फ़ोन चार्जर से निकालते समय हम सब की आदत आजकल हो गई है कि हम स्विच को ऑन ही छोड़ देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। उसे आवश्यक रूप से बंद करें। संभव हो सके तो इस भीषण गर्मी में पशु पक्षियों और राहगीरों के पेयजल की व्यवस्था ज़रूर करें। यदि ज़रूरत ना हो तो कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण, चाहे वह आपके घर के हों, पड़ोसी के हों या फिर सार्वजनिक स्थानों के, बेवजह चलने वाले कूलर पंखों को बिना किसी हिचकिचाहट के साथ बंद करें। आप करके देखिए, एक दो बार तो आपको हिचकिचाहट होगी, लेकिन बाद में जब आप पर्यावरण के बारे में सोचेंगे ना, तो निश्चित ही आपको एक सुकून मिलेगा कि आज कम से कम आपने कुछ तो मात्रा में ऊर्जा का संरक्षण किया। ऐसा करने से आप देश हित में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अनावश्यक रूप से चलने वाले नलों, टूटे फूटे नल और बहते नलों की जल निकासी, जो हजारों लीटर पानी की बर्बादी की ओर इशारा करती हैं, उसे भी रोकें। देश हित में एक कदम बढ़ाएं और संतुष्टि के साथ इस बात को निश्चित करिए कि आपने पर्यावरण के हित में एक कारगर कदम उठाया है। बातें करेंगे आगे भी, फिलहाल सुनाते हैं ये प्यारा सा गीत।

सखियों, आज समय ऐसा हो गया है जिसमें खुश रहना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम सब इतने व्यस्त हो गए हैं कि किसी के पास समय ही नहीं है, और समय के साथ साथ आज खुश रहना भी एक सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। हर किसी की खुशी अलग अलग होती है, लेकिन जब तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब तक तो सब कुछ अच्छा लगता है, सब खुश रहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई विपरीत परिस्थितियां आ जाएं तो हम सब उससे घबराने लगते हैं, भागने लगते हैं, या तो कभी कभी स्थितियां इतनी विपरीत हो जाती हैं कि अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में भी लोग सोचने लगते हैं। और आज हो भी रही यही रहा है। हम अक्सर समाचार पत्रों में, न्यूज़ चैनल में ये सुनते और देखते आ रहे हैं कि आज व्यक्ति की स्थिति इतनी नहीं है कि वो किसी भी स्ट्रेस को झेल सके, या तो उसने अपने आप को मानसिक रूप से इतना कमज़ोर कर लिया है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में उसके मन में नकारात्मक विचार घर कर लेते हैं। व्यस्तता के चलते आज हम इतने बेबस हो गए हैं कि हम समस्या के समाधान की ओर अपना ध्यान लगा नहीं पाते, और यही हमारे मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण बनता है। हमेशा एक बात याद रखिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। भले ही तुरंत हमें बुरा लगता है, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा छिपा होता है। आज हम इसी विषय पर आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहे हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक राजा का मंत्री हमेशा अपने राजा से कहता रहता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन राजा की उंगली कट गई। ये देखकर मंत्री फिर बोला, महाराज जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये सुनकर राजा को बड़ा गुस्सा आया कि मेरी उंगली कट गई और ये कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसने तुरंत मंत्री को जेल में डाल दिया। और कुछ दिन बाद जब राजा शिकार खेलने गए तो शिकार खेलते खेलते एक घने जंगल में चले गए, जहाँ

आदिवासियों ने उन्हें पकड़ लिया और उसकी बलि देने लगे। जैसे ही राजा को बलि के लिए तैयार किया गया तो एक आदिवासी ने उनकी कटी हुई उंगली को देखकर कहा कि इनकी बलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये पहले से ही उनकी परंपरा में था कि किसी भी अधूरे शरीर वाली व्यक्ति की बलि नहीं दी जा सकती। उन्होंने राजा को छोड़ दिया। राजा ने अपनी जान की खैर मनाई और महल आ गए। जैसे ही वे महल में आए, उन्होंने मंत्री को कारागार से निकाला और फिर मंत्री ने वही बात दोहराई कि महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आप मुझे जेल में नहीं डालते तो मैं हमेशा की तरह आपके साथ शिकार में जाता। आप तो बच जाते लेकिन मेरी बलि दी जाती। तो सखियों, कहानी बहुत छोटी है लेकिन ये हमें सिखाती है कि जीवन में हमेशा जो भी हुआ, चाहे वो अच्छा हुआ, थोड़ा बुरा हुआ या कुछ बुरा हुआ, भविष्य के बेहतर के लिए हुआ। इसलिए चिंता मत करिए, हर स्थिति में अपने आप को सकारात्मक रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, भविष्य की चिंता बिल्कुल भी मत करिए। वर्तमान में जिए और मनोरंजन करते रहिए आकाशवाणी के इस प्यारे से गीत के साथ।

सही भी कहा है दोस्तों किसी ने कि जिंदगी एक ऐसा रास्ता है जिस पर हमेशा लगातार आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। अब आज के समय की यदि हम बात करें तो इस दुनिया में, आज के समय में हर व्यक्ति बड़ी से बड़ी शिक्षा और डिग्री लेकर बैठा हुआ है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर बड़ी डिग्री लेने वाला व्यक्ति समझदार हो। आज के समय में एजुकेशन तो बहुत है, लेकिन सिर्फ कमी दिखाई दे रही है परवरिश और संस्कारों में। हर किसी के जीवन में परवरिश और संस्कारों का बहुत महत्व होता है। ये दोनों सुनने में सिर्फ एक शब्द हैं, लेकिन जीवन में बहुत मायने होते हैं। सिर्फ पढ़ लिख कर कोई अच्छा इंसान नहीं बनता। कई बार हर पढ़ा लिखा व्यक्ति समझदार हो ये ज़रूरी नहीं, कई बार कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी पढ़े लिखे व्यक्ति से अधिक समझदारी दिखा जाता है। समझदार वो नहीं जो पढ़ा लिखा हो, समझदार तो वो होता है जिसे कि मालूम होता है कि किससे, कब, कैसे, क्या और किस लहजे में बात करनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमें बड़ों से किस तरह से बात करनी है, बुज़ुर्गों का सम्मान किस तरह से करना है। यदि आपके जीवन में संस्कार हैं तो आप पढ़े लिखे व्यक्ति से ज़्यादा महत्व रखते हैं। और बच्चों, आज के समय में हम ये देख रहे हैं कि हर बच्चा आज हायर एजुकेशन करने तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं यदि मॉरल वैल्यूज़ की बात करें तो कहीं ना कहीं वो बच्चा इतना पिछड़ा हुआ है कि उसे अपने शिक्षक और माता पिता के साथ वार्तालाप करना भी नहीं आता। कई बार उसे ये नहीं पता होता कि उसे किस तरह, कैसे और किस स्थिति में बात करनी है। तो सखियों से भी यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा समय निकाल के एजुकेशन के साथ साथ अपने बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ ज़रूर बताएं। उन्हें बताएं कि परिवार की क्या भूमिका होती है, रिश्तों की क्या भूमिका होती है, किस लहजे में बड़ों से बात करनी है, किस तरह से करनी है, कब, कैसे, किस समय में क्या बात करनी है। इन बातों को यदि हम थोड़े थोड़े समय में ही बताते रहेंगे तो बच्चा उसे याद कर पाएगा। कहीं ना कहीं संस्कारों को देने की जो जिम्मेदारी है वो माता पिता के, शिक्षक तो दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ माता पिता की भी है। तो यही कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को हर अच्छी आदतों, अच्छी संस्कारों से आप बताएं, उन्हें रूबरू कराएं। बातें तो और भी करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, समय इसकी अनुमति नहीं देता। तो चलते चलते इसी वादे के साथ कि फिर होगी आपकी मुलाकात एक नई आवाज़ के साथ, तब तक के लिए स्वीकारें छाया असाटी का प्यार भरा नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए आपको सुनवाते हैं दबंग 2 फिल्म का गाना। सोनू निगम और तुलसी कुमार की आवाजें हैं, इरफान कामिल के बोल हैं, साजिद वाजिद का संगीत।

0: सुनें अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
1: इस संदेश के पहले आप सुन रहे थे जिला गाजियाबाद फिल्म का गाना। मोहित चौहान, तुलसी कुमार और नदीम खान की आवाजों में शब्बीर अहमद के बोल थे और अमजद नदीम का संगीत था। और अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिलवाले का गाना। अरिजीत सिंह, अंतरा मित्रा की आवाजें हैं, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और प्रीतम का संगीत।

आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में। आइए सुनते हैं हाईवे फिल्म का गाना सुल्ताना और ज्योति नूरन की आवाजों में। इरशाद कामिल ने लिखा है, एआर रहमान ने धुन बनाई है।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर

रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

चित्रलोक कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म तमाशा का गाना, अलका याग्निक और अरिजीत सिंह का गाया हुआ, इरशाद कामिल ने लिखा है और ए आर रहमान ने धुन बनाई है।

ऐसा ही कुछ लगता है अपनी साइकिल के लिए। वैसे साइकिल जिंदगी का सबसे पहला एडवेंचर बन जाती है अक्सर। सीखते वक्त चोट लगे या गिरकर साइकिल में टूट फूट आए, लेकिन साइकिल चलाना सीखकर एक अलग ही रोमांच होता है। बचपन में साइकिल खिलौनों में सबसे ज्यादा प्यारी होती है, फिर 2-4 साल की उम्र वाली छोटी साइकिल का अलग ही आनंद होता है, और धीरे धीरे साइकिल का उपयोग स्कूल जाने के लिए भी होता है। कई लोग साइकिल से अपने काम पर भी जाते हैं। वक्त के साथ साइकिल की उपयोगिता भी और महत्व भी अब बदल गया है। अब साइकिल एक्सरसाइज के तौर पर काफी प्रयोग होती है। हम साइकिल के बारे में इतनी सारी बातें कर रहे हैं क्योंकि आज ही है साइकिल दिवस। 2018 में अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस घोषित किया गया था, और इसे मनाए जाने का ख्याल सबसे पहले आया था अमेरिका के मॉन्टगोमरी कॉलेज के प्रोफेसर लेसेक सिब्लिस्की को, जिन्होंने अपने साथियों के साथ साइकिल का खूब प्रचार प्रसार किया। इसके बाद इस दिन को मनाने का निर्णय लिया गया। साइकिल सबसे सस्ता वाहन है, इसके लिए एक नहीं अनेक फायदे हैं। पेट्रोल की खपत नहीं होती, पर्यावरण

की दृष्टि से बहुत सुरक्षित है, एक्सरसाइज करने के लिए बेस्ट है और इम्यूनिटी भी बढ़ती है। और विशेषज्ञों की माने तो इससे बीमारी का खतरा भी कम होता है। साइकिल चलाने से दिमाग ज़्यादा एक्टिव रहता है और सक्रियता बढ़ती है सोचने विचारने की, ऐसा भी कहा जाता है। तो भाई विश्व साइकिल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।

फिल्म खामोशियां का ये गाना आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में। रश्मि सिंह ने ये गीत लिखा था और जीत गांगुली का संगीत था। इस गीत के साथ ही अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
1: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
2: आप खाए थाली में, सुनने को थे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, आज के फनकार कार्यक्रम में एक ऐसी कलाकार जिन्होंने अपने अभिनय से सबको खामोश कर दिया।
1: मैं इस विशाल भारतवर्ष के प्रांत बिहार के एक शहर पटना में पैदा हुआ था। सिन्हा परिवार ने पूरी रामायण को जन्म दिया। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, यानी मैं।
2: और मैंने पूनम से शादी की। आज मेरे दो बच्चे हैं, जुड़वा लव और कुश, और मेरी एक बिटिया है। यानी कई लोग मुझसे पूछते हैं कि अब आप किससे प्रेम करते हैं। मैं कहता हूँ, जीवन में एक बड़ी सुंदर सी, अच्छी सी, छोटी सी और थोड़ी मोटी सी लड़की है जिससे मैं प्रेम करता हूँ, और कोई लड़की जीवन में नहीं है। ये बात दूसरी, जो लड़की मेरे जीवन में है वो मेरी बेटी है, और उसका नाम है सोनाक्षी सिन्हा।
0: दोस्तों, आप सोच रहे होंगे जिनकी आवाज आपने सुनी वही है आज के फनकार। अरे नहीं भाई, ये तो उनके पिता की आवाज है जिन्हें अभिनय विरासत में मिली है, जिन्होंने पाई है बहुत कम समय में ढेर सारी कामयाबी, और जो है बड़ी दबंग।

0: तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, आज की फनकार हैं सोनाक्षी सिन्हा।
1: चमक छल्ला छल छबीली, कहते हैं मुझको रस रसीली।
0: दोस्तों शत्रुघ्न सिन्हा जब अपने कामयाबी के परचम लहरा रहे थे, उन दिनों उन्हें ये अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि उनकी बिटिया सोनाक्षी एक दिन उन्हीं की तरह फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम रोशन करेंगी। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत ही बड़े धमाकेदार हुई है। बहुत कम फिल्मों के बावजूद चोटी की अभिनेत्रियों में सशक्त अभिनय करने वाली अदाकारा के रूप में सोनाक्षी का नाम शुमार हो गया।

की पौद में सोनाक्षी सिन्हा एक ऐसी अदाकारा हैं जिनमें देसी लुक भी है और पश्चिमी मॉडर्न लड़की के किरदार में भी वे खूब जचती हैं। अभिनय की बारीकी तो उनके रग रग में है। अभिनय का कौशल उन्हें अपने पिता शत्रुघ्न सिन्हा से विरासत में मिला है। फिल्म ओ माय गॉड में इस गाने को विशेष तौर पे शामिल किया गया था और इस गाने ने खूब धूम मचाई।

जून 1987 में जन्मी सोनाक्षी सिन्हा के करियर की शुरुआत हुई फिल्म दबंग से, जिसमें थे बॉलीवुड के सुपर हीरो सलमान खान, और ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। सच

सोनाक्षी सिन्हा ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की। शुरुआत में उन्होंने कई फैशन शो में हिस्सा लिया। सोनाक्षी बड़ी उम्दा फैशन डिजाइनर भी रही हैं। उन्होंने 2005 की फिल्म दिल लेके देखो के लिए कॉस्ट्यूम भी डिजाइन किया। लेकिन दोस्तों, सोनाक्षी का सपना था अभिनय में कामयाबी और वे चल पड़ी फिल्मों की पगडंडी पर। अपनी लगन और मेहनत से जल्दी ही उनकी झोली में कामयाबी के तमगे चमक उठे।

आज के फनकार कार्यक्रम में हम बातें कर रहे हैं अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की। आइए उनकी कुछ बेहतरीन फिल्मों के गाने सुन लिए जाएं। ये फिल्म है राउडी राठौड़, जिसमें उन्होंने निभाया पारो का किरदार।

सोनाक्षी सिन्हा की कुछ महत्वपूर्ण फिल्में और भी हैं, जैसे कि वेलकम टू न्यूयॉर्क, हैप्पी फिर भाग जाएगी, मिशन मंगल, दबंग 3।

दोस्तों, आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा पर। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का था। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। आज के फनकार।

0: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी, जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है झाबुआ जिले की चिट्ठी। आलेख हरीश कुमार यादव का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत जिले में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत खेती के तरीकों और शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 10 दिवसीय कृषि रथ अभियान का शुभारंभ किया गया है। कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने बीते दिनों कृषि रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ के माध्यम से गाँवों में किसानों को ई टोकन आधारित उर्वरक वितरण प्रणाली, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, जैविक एवं प्राकृतिक खेती, पराली प्रबंधन और संतुलित उर्वरक उपयोग जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर बीते दिनों व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। देखें, साफ करें, ढकें, डेंगू को हराने के उपाय करें थीम पर आधारित इस अभियान के तहत डेंगू जन जागरूकता प्रचार रथ को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया। प्रचार रथ के माध्यम से डेंगू एवं चिकनगुनिया से बचाव संबंधी संदेश प्रचारित किए जा रहे हैं। जिला चिकित्सालय झाबुआ में डेंगू की जाँच निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की समय पर सहायता कर उसकी जान बचाने वाले झाबुआ निवासी भावेश सोलंकी को बीते दिनों राहवीर योजना के तहत प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। रोगी कल्याण समिति की कार्यकारिणी बैठक में जिला चिकित्सालय भवन का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने, सोनोग्राफी उपकरण क्रय करने, पार्किंग व्यवस्था और फायर सेफ्टी ऑडिट संबंधी प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। बैठक में कलेक्टर ने प्रत्येक 3 माह में नियमित समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने ग्रामीणों से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने और शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि

प्रशासन का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक विकास और सुविधाओं का लाभ पहुंचाना है। जिले में आमजनों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने बीते दिनों राणापुर बस स्टैंड का निरीक्षण कर यातायात व्यवस्था, बस संचालन और यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान स्थानीय नागरिकों ने हाट बाजार के दिनों में बढ़ने वाली भीड़, यातायात अव्यवस्था और अतिक्रमण की समस्याओं से अवगत कराया। जल संसाधन विभाग ने माही परियोजना की नहरों के मरम्मत कार्यों के लिए 16 करोड़ 68 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की है। लगभग 284 किलोमीटर लंबी इस परियोजना से वर्तमान में 19,000 से अधिक किसान और करीब 22,000 हेक्टेयर कृषि भूमि लाभान्वित हो रही है। जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान के तहत झाबुआ जिले ने प्रदेश स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। जिले के सभी 6 विकास खंडों में आयोजित 559 संतृप्त शिविरों के माध्यम से 32,000 से अधिक हितग्राहियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया है। अभियान के दौरान आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पेंशन योजनाएं, किसान क्रेडिट कार्ड और उज्ज्वला योजना की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। खरीफ सीजन को देखते हुए कृषि विभाग ने जिले के किसानों को उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। वर्तमान में जिले में यूरिया, डीएपी, एनपीके, एसएसपी और पोटाश सहित विभिन्न उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है। किसान ई विकास पोर्टल के माध्यम से ई टोकन प्राप्त कर अपनी आवश्यकता अनुसार उर्वरक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मौसम को देखते हुए खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने फल एवं सब्जियों के सुरक्षित भंडारण और उपयोग को लेकर एडवाइजरी जारी की है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि हरी पत्तेदार सब्जियों को धोकर और सुखाने के बाद ही साफ कपड़े या पेपर टॉवल में लपेट कर रखें और प्लास्टिक की बंद थैलियों की बजाय नेट बैग का उपयोग करें। फ्रिज का तापमान निर्धारित मानकों के अनुसार बनाए रखने तथा सब्जियों और फलों का स्वच्छ उपयोग करने की सलाह भी दी गई है। झाबुआ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक श्रवण बीते दिनों आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने सहभागिता करते हुए कहा कि मन की बात केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन और जन जागरूकता का सशक्त मंच बन चुका है। विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर कृषि मंडी परिसर झाबुआ में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय भीली बोली में गीतों और प्रदर्शनी के माध्यम से तंबाकू व अन्य नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। पल्स पोलियो अभियान की तैयारियों को लेकर जिला कार्यबल की बैठक का आयोजन बीते दिनों किया गया। इस बैठक में बताया गया कि 28 जून को जिले भर में पोलियो बूथों पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी, जबकि इसके बाद 2 दिनों तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को दवा पिलाएंगी। झाबुआ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं नसीब फिल्म के इस गीत से, जिसे गाया है सुमन कल्याणपुर, कमलेश अवस्थी और अनवर ने।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे

अभी आप सुन रहे थे लव स्टोरी फिल्म के लिए लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ें। संगीत था आरडी बर्मन का और गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। हीरा पन्ना, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। आरडी बर्मन का संगीत है और आनंद बख्शी के गीत।

गुलशन बावरा के बोल हैं और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की। फ़िल्म का नाम है जंजीर।

अभी आप सुन रहे थे गुलशन बावरा का लिखा हुआ गीत, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें। फिल्म का नाम था जंजीर। इस गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का उमंग।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र राधेनगर से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं और यही मानव संबंध की विडंबना है।
3: बहुत सुंदर संदेश राजेश पी कारिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
2: महाराष्ट्र से प्रशांत रमेश पाटिल।
3: और धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
3: और साथ ही साथ हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रसिद्ध शीत मरुस्थलों की।
2: इस क्रम में कल हमने चर्चा की थी अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल की और

0: जाना था इससे जुड़ी रोचक बातों को। आज हम चर्चा करेंगे एक और अनोखे शीत मरुस्थल की, और वो है गोभी का मरुस्थल। तो अजीत जी, चर्चा को विस्तार दीजिए।
1: जी विमलेश जी, आइए चर्चा को विस्तार देते हैं। तो श्रोताओं, आपको हम बताना चाहते हैं कि अंटार्कटिक का शीत मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है
0: जी।
1: लेकिन यदि एशिया महादेश की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोभी। इसका क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। विमलेश जी, अब आपकी बारी।
0: जी श्रोताओं, ये मरुस्थल मुख्य रूप से मंगोलिया और चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। स्थानीय भाषा में गोभी को गोब कहते हैं, जिसका अर्थ है निर्जल स्थान। एक बात और आपको बता दें कि ये रेत का नहीं लेकिन पत्थरों का मरुस्थल है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग चट्टानी और पथरीला है। केवल 5% भाग ही रेतीला है।
1: तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इस मरुस्थल के तापमान की। जहाँ तक तापमान का प्रश्न है, यहाँ तापमान बहुत कम होता है
0: जी।
1: सर्दियों में ये -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जबकि गर्मी के मौसम में यहाँ का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है।
0: यानी एक ही मरुस्थल में कड़कती ठंड भी और झुलसाने वाली गर्मी भी
1: जी।
0: लेकिन इसे शीत मरुस्थल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ अधिकांश समय सर्दियों का ही होता है। अजीत जी, एक बड़ी विशेष घटना हुई है जिसके कारण गोभी का मरुस्थल बहुत प्रसिद्ध हुआ है। क्या थी वो घटना?
1: विमलेश जी, वो घटना थी जब वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में डायनासोर के अंडे और जीवाश्म मिले
0: जी।
1: यहाँ और भी कई दुर्लभ प्राणियों के जीवाश्म मिले हैं, जिसके कारण वैज्ञानिकों और संचार माध्यमों ने इसे प्राचीन जीव जगत के खजाने की संज्ञा दी है।
0: अजीत जी, अब श्रोताओं को जरा यहाँ रहने वाले लोगों की जानकारी दे दें।
1: जी हाँ जरूर
0: श्रोताओ, गोभी मरुस्थल में रहने वाले अधिकांश लोग आज भी घुमंतू जीवन यानी नोमेडिक लाइफ जीते हैं। मंगोल परिवारों का पारंपरिक घर गोलाकार का होता है, जिन्हें यर्ट कहते हैं। इन घरों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये आसानी से खोले और दूसरी जगहों पर ले जाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग यहाँ मौसम को देखते हुए जगह बदलते हैं। वैसे गोभी मरुस्थल के बाहरी इलाकों में आधुनिक शहर भी हैं।
1: तो श्रोताओं, आपको ये भी बता दें कि आज के आधुनिक वाहन यहाँ बहुत कम मिलते हैं। यहाँ के ऊंट 2 कुबड़ वाले होते हैं
0: जी।
1: जो अत्यधिक ठंड और गर्मी दोनों सह सकते हैं। एक बात और आपको बता दें कि ठंड के समय ये ऊंट बर्फ खाकर अपनी पानी की जरूरत को पूरा करते हैं
0: जी।
1: घुड़सवारी यहाँ के प्रतिदिन के लोक जीवन का हिस्सा है और घुड़दौड़ है यहाँ का प्रिय खेल और मनोरंजन का माध्यम
0: जी। अजीत जी, क्योंकि उमंग रेडियो कार्यक्रम है तो ये बताना तो बहुत ही प्रासंगिक होगा कि गोभी मरुस्थल के दूर दराज के इलाकों में भी आज भी टेलीविजन की पहुंच बहुत कम या नहीं के बराबर है
1: जी।
0: यहाँ लोग रेडियो सुनकर ही मौसम का हाल जानते हैं, समाचार सुनते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। अब आधुनिकता के दौर में पर्यटन बढ़ गया है, सैलानी देश विदेश से आते हैं और यहाँ के घुमंतू परिवारों के साथ होम स्टे करते हैं।
1: श्रोताओं, यहाँ की दिनचर्या भी बहुत मजेदार और गतिविधियों से भरी हुई है। सुबह उठकर दूध दुहना महिलाओं का काम है, जबकि पुरुष मवेशी चराने का काम करते हैं
0: जी।
1: दिन भर की मेहनत के बाद शाम को पूरा परिवार एक साथ भोजन करता है और कहानियों और गीतों के द्वारा मनोरंजन करता है। ये गाते हैं, बजाते हैं।
0: बजाने के लिए इनके खास वाद्य यंत्र हैं, जैसे मोरिन खोर।
1: ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है?
0: ये 2 तारों वाला वाद्य यंत्र है। एक और बहुत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है लिम्बे। ये बांसुरी जैसा वायु वाद्य यंत्र है। एक रोचक बात यह है कि यहाँ लोग अपने संगीत को ऊंट, घोड़े और प्रकृति से जोड़ते हैं। कई धुनें यहाँ ऐसी होती हैं जो जानवरों को बुलाने और शांत करने के लिए बनाई गई हैं।
1: बहुत सुंदर जानकारी विमलेश जी। सचमुच गोभी का शीत मरुस्थल जीवन की कठिनाइयों और उसे सुंदर ढंग से जीने का अनूठा उदाहरण है।
0: तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी गोभी के शीत मरुस्थल की।
1: अब आज का प्रश्न सुनिए आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, गोभी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: गोभी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं?
1: श्रोताओं, आप प्रश्नों के उत्तर और संदेश हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर या हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं
0: जी।
1: हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। और हाँ, NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें यानी ऑडियो बुक्स आप दीक्षा या NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है दोस्त की पहचान।
0: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में बताया गया है कि एक सच्चे मित्र की

0: पहचान कैसे की जाती है। संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय काम आए।
1: एक जंगल से दो दोस्त गुजर रहे थे।
2: कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ तो।
3: हाँ, बहुत बड़े पेड़ हैं।
2: अरे देखो देखो, कितने अच्छे पक्षी हैं यहाँ पर। अरे वो देखो चिड़िया।
3: अरे वो देखो बंदर। ओ, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है।
2: मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है।
4: हाँ, ये तो सही कह रहे हो।
3: अरे कोई जानवर आ गया तो क्या करेंगे हम?
2: क्या करेंगे, देखेंगे जब जानवर आएगा तब।
1: अचानक
3: ये तो रीछ की आवाज है। अरे अरे, मुझे तो लगता है रीछ आ रहा है। ओ, अब हम अपनी जान कैसे बचाएंगे?
2: क्या करें क्या करें, जल्दी सोचो क्या करें।
3: मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
2: अरे मुझे तो पेड़ पर चढ़ना आता है।
1: रीछ को देखकर उनमें से एक दोस्त झट से दरख्त पर चढ़ गया।
2: ओ, ऐसा करता हूँ, पेड़ पर चढ़ जाता हूँ।
1: और दरख्त की टहनियों में छुपकर बैठ गया। दूसरा दोस्त नीचे अकेला रह गया।
3: ओ, अब मैं क्या करूं?
1: जब उसको कुछ नहीं सूझा,
3: मैं ऐसा करता हूँ, जमीन पर लेट जाता हूँ और अपनी सांस रोक लेता हूँ, तभी जान बचेगी।
1: तो वो सांस रोककर चुपचाप जमीन पर लेट गया। रीछ उसके करीब आया, उसने उसे सूंघा।
3: ये रीछ तो मुझे सूंघ रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, सांस रोक के लेटा रहता हूँ, तभी जान बच पाएगी।
1: और मुर्दा समझकर छोड़ दिया।
3: बच गए, लगता है रीछ चला गया।
1: रीछ जब चला गया तो दूसरा दोस्त,
2: अरे रीछ तो चला गया, अब मैं पेड़ से नीचे उतर सकता हूँ।
1: और अपने साथी से जाकर पूछा,
2: एक बात तो बताओ, रीछ ने तुम्हारे कान में क्या कहा?
1: पहले दोस्त ने जवाब दिया,
3: मेरे कान में कहा, ऐसे दोस्त से दोस्ती मत करो जो मुसीबत के समय काम न आए और तुम्हारा साथ छोड़ दे।
1: पंचतंत्र की कहानी मश्क। सोचिए और बताइए,
5: महफूज तरीके से जंगली जानवरों को कैसे देखा जा सकता है? जंगलों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, उनकी फेहरिस्त बनाइए। अगर आप उन दोस्तों में होते तो दोस्त की मदद कैसे करते? दोस्त की पहचान। अभी आप सुन रहे थे ये प्रोग्राम, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, रिकॉर्डिंग मंजू कुमारी, फनकार फरहान अली नकवी, बाल कलाकार सोहम और वान्या, हिदायतकार विमलेश चौधरी, पेशकश कुसुमलता। ये प्रोग्राम CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम दोस्त की पहचान।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गौरा देवी।
2: इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाट्य प्रस्तुति के द्वारा चिपकू आंदोलन की जानी मानी नायिका गौरा देवी के जीवन और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रसिद्ध चिपकू आंदोलन की जानकारी दी गई है।
3: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
4: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
3: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
5: मारो, मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
6: नहीं लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको, मैं
7: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो।
6: हाँ?
7: अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
6: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो।
7: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
8: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
7: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
6: बड़ी आई रोकने वाली। वही करेंगे।
3: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
4: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
3: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

0: अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
1: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
2: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
3: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
2: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
1: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
2: आप तो काम करती है ना?
1: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
2: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
0: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है, चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
1: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगों का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
0: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांव के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
4: नहीं कटने देंगे।
5: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
1: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
0: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थी। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
1: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
6: गौरमा, गौरमा,
2: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
6: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
2: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
6: गौरमा,
2: हाँ,
6: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
2: क्या?
6: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
2: अच्छा, तो ये बात है। बहनों,
4: हाँ गौरमा, हाँ गौरमा,
2: चलो हम सब तैयार हो जाएं।
1: बिल्कुल,
2: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
4: हाँ गौरमा, सब तैयार
5: हैं।
4: हम
5: तैयार हैं।
4: नहीं कटने देंगे।
5: बिल्कुल नहीं कटने।

0: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
1: ये है जंगल के उपकार,
2: मिट्टी पानी और बयान,
1: मिट्टी पानी और बयान,
2: जिंदा रहने के आधार।
3: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
4: अरे
5: ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे, जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
6: दूरो, आगे बढ़ो।
7: अरे कहां से?
6: दो मिनट की बातों में मत आओ। मैंने तुम्हें पेशगी दी है, पेशगी इस काम के लिए। बोलो शुरू।
7: काटो पे। हम चिपक जाएंगे। ऐसा नहीं होने देंगे हम।
5: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे आज।
8: नहीं लगाने देंगे।
5: बहनों, आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
9: हाँ, हम चिपक जाएंगे। सारे नहीं चिपक जाएंगे।
6: ठीक है, तो वहाँ चलो। अरे उन पेड़ों को काटो, चलो।
0: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
3: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
6: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
0: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
3: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
0: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
3: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
5: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहां से हमें फल फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
0: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।

अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा, प्रवीण शर्मा और गीतांजलि। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्माण सहायक कुसुम लता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा

हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, और इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का उमंग।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजे हैं। आइए सुनते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम।

0: जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में।

हम सुन रहे थे हिंदुस्तानी गजल एल्बम से निर्मला देवी की आवाज़ में। शकीक बदायूनी ने इसे लिखा और खान साहेब अब्दुल रहमान ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं अगली नज़्म, जो कि है उर्दू गज़ल एल्बम से, बेगम अख्तर की आवाज़ में है और जिगर मुरादाबाद ने इसे संगीतबद्ध किया है।

हम सुन रहे थे मुकेश गजल्स एल्बम से, मुकेश की आवाज़ में जान निसार अख्तर के बोल और खयाम के संगीत से सजी हुई इस नगमे को। आइए सुनते हैं अगली गजल जो होगी हिंदुस्तानी क्लासिकल गजल एल्बम से, तलत महमूद की आवाज़ में, एहसान मीरती के बोलों के साथ चित्ता रॉय का संगीत है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, जो कि हिंदुस्तानी गजल्स एल्बम से लिया गया है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। सबा अफगानी ने इसे लिखा और इकबाल ने संगीतबद्ध किया है।

0: हम सुन रहे थे मिराज़े गज़ल एल्बम से आशा भोसले गुलाम अली की आवाज़ में। नासिर काज़मी ने इसे लिखा और गुलाम अली ने संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं संदेश।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं उर्दू मॉडर्न गजल एल्बम से लता मंगेशकर की आवाज़ में गालिब के द्वारा लिखे गए इस नगमे को।

हम थे खामोश एल्बम से सुन रहे थे उत्कर्ष शर्मा की आवाज में सिया सचदेव के बोलों से सजे हुए देव बसक ने इसे संगीतबद्ध किया है। ये है एक प्यारा सा नगमा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, जो कि पृथ्वी गंधार की आवाज में है।

आज के कार्यक्रम रंग तरंग की अंतिम नज्म एहसास एल्बम से तलत अजीज की आवाज में सूरज सनीम के बोल और ललित सेन के संगीत के साथ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि जनजातीय सांस्कृतिक रूप से बहुत धनी हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय आत्मसम्मान के साथ जीते हैं। राष्ट्रपति इस समय सम्मेलन को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: खेलकूद में आज भी एसी वाला कपड़ा का बोल बना के वो खेलते हैं, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे कोई अवार्ड मिले, खुशी से खेलते हैं। उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत, आज भी गांव-गांव में फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, उनके खुद के अंदर गांव-गांव के अंदर टूर्नामेंट करते हैं, लेकिन उसको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। तो एक अलग जो विद्यालय को दिया गया है, मैं कहना चाहूंगी जो भी और भी ट्राइबल स्कूल है, क्योंकि उनके पास टैलेंट है। आज आप ओडिशा के भुवनेश्वर में क्या किट आज फेमस क्यों है, किट नहीं किस फेमस, आज वर्ल्ड फेमस क्यों है, क्योंकि वहाँ ट्राइबल्स 25,000 या 30,000 बच्चों को, ट्राइबल बच्चों को लिए हैं पढ़ाई।
1: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा।
3: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है और मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि को गति दे रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

0: उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है और वो विभाजन के कगार पर है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुबर्ता बनर्जी का दावा है कि उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके गुट ने विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस को पत्र लिखकर खुद को टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। बोर्ड ने कल कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था। यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस वर्ष का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 948 अंक की गिरावट के साथ 73,702 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम यादों की महफिल प्रस्तुत होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आइए सुनते हैं यादों की महफिल का पहला गीत देवदास फिल्म से। गीता दत्त और मन्ना डे की आवाजें हैं, साहिर लुधियानवी के बोल हैं और सचिन देव वर्मन का है संगीत।

हम सुन रहे थे सुजाता फिल्म से यह गीत, सचिन देव बर्मन की आवाज और उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस गीत को, जिसे लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने। आप सुन रहे हैं यादों की महफिल और आज हम सजा कर लाए हैं यादों की महफिल सचिन देव बर्मन की यादों के साथ, उनके गाए हुए और उनके द्वारा संगीतबद्ध किए हुए गीतों के साथ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। काला पानी फिल्म का ये गीत हम सुनने वाले हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी के हैं बोल, सचिन देववर्मन का है संगीत।

0: गीत हम सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देव बर्मन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
6: तुम्हारी याद सताती है
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में अगला नगमा, जो कि है फंटूश फिल्म से। आशा भोसले की आवाज है, साहिल लुधियानवी के हैं बोल, और हम आपसे बता रहे थे कि आज हम याद कर रहे हैं यादों की महफिल में सचिन देव बर्मन को, तो उनका ही संगीत है।

0: हम सुन रहे थे चुपके चुपके चल रही पुरबैया। ये गीत हमने लिया लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोलों के साथ, सचिन देवर्मन के संगीत से सजा हुआ फिल्म चुपके चुपके से।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज हमने सजाई है सचिन देव बर्मन के गीतों के साथ। आइए सुनते हैं सचिन देव बर्मन की आवाज में आराधना फिल्म का यह गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया है सचिन देव बर्मन ने ही।

अभिमान फिल्म से सुन रहे थे ये गीत हम, जिसे गाया लता मंगेशकर ने, मजरूह सुल्तानपुरी के हैं बोल और सचिन देवबर्मन के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। यादों की महफिल में हम सजा कर लाए हैं सचिन देवबर्मन के संगीतबद्ध किए गए और कुछ उनके गाए गए गीतों को। तो अब हम चलते हैं उनके ही द्वारा गाए गए इस गीत की ओर, जिसे लिया है गाइड फिल्म से, जिसे सचिन देवबर्मन ने गाया भी है और संगीतबद्ध भी किया है।

आइए चलते हैं अगले गीत की तरफ, जो कि है अनुराग फिल्म से, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर ने से गाया है, आनंद बख्शी के बोल हैं और सचिन देबर्मन का संगीत।

हम सुन रहे थे बड़ा सकारात्मक सा गीत बाजी फिल्म से गीता दत्त की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल और सचिन देव वर्मन के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम में सचिन देव वर्मन के ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस अगले गीत को, जिसे लिखा है साहिल लुधियानवी ने, किशोर कुमार ने गाया है और मुनीम जी फिल्म से इस गीत को लिया गया है।

आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम यादों की महफिल का अंतिम गीत। प्यासा फिल्म से गीता दत्त, मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, साहिर लुधियानवी के बोल और सचिन देवबर्मन के संगीत से सजा हुआ है। सुनते हैं इसके कुछ अंश।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। बस थोड़ी ही देर में हम सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। और अब हम चलते हैं उस सफर की ओर जो बहुत सुरीला है और जिसे हम कहते हैं सुरीला सफर। मैं हूं विधि प्रवीण जैन, नमस्कार स्वीकार। आज इबारत लेकर हम आपके बीच में आए हैं और वह इबारत हम आप सभी के साथ साझा करना चाहते हैं। इबारत बड़ी छोटी सी है लेकिन बात बड़े दिल की है। इबारत कुछ ऐसा कहती है कि दिल जब ये पूछता है कि वो कौन है, तो बरबस ही सामने वाले का अक्स आंखों में उभर आता है। फिर कोशिश होती है कि पहले खत के लिए, और दिल दलीलें देता है कि इशारों में उधर से कुछ कहा तो है, और कहीं एहसान दिल पर हो गया तो क्या ही बात है। और अगर उनकी नजरों की इनायत ना हुई तो कयामत ही आ जाएगी। बस ये छोटी सी इबारत उन क्षणों की, उन लम्हों की, जिन्हें हम बहुत प्यार से जीते हैं। अब इसके लिए हमारे श्रोता क्या कहते हैं, तो वह लिखते हैं कि आज की इबारत प्रेम के शुरुआती अनुभूतियों को व्यक्त करते हुए दिल की बेहद खूबसूरत, नाजुक और कश्मकश भरे एहसास है। ये मोहब्बत के उस दौर का आईना है जब प्यार का पहला खत अभी कागज पर नहीं, दिल की धड़कनों में लिखा जा रहा है। जब किसी का चेहरा सिर्फ आंखों में नहीं बल्कि दिल और दिमाग में छाया है। एक मीठी सी जंग शुरू है। हर इशारा एक पैगाम है, हर ख्याल एक उम्मीद है, और मन उस पहले खत के अल्फाज तलाशने लगा है जो मोहब्बत की सबसे खूबसूरत इबारत बन सके। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। बिल्कुल सही बात है। हमारी श्रोता लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्यमय इबारत में प्रणय के सुनिश्चय से संबंधित दिल के उहापोह का एक अच्छा खासा मनोविश्लेषण किया गया है, जिसके फलस्वरूप दिल की दृढ़ता सामने वाले की नजर से गुफ्तगू के आधार पर न केवल टिकी हुई अपितु परिवर्धनशील भी है। इस दृष्टिकोण से आज की यह गद्यमय इबारत वास्तव में इबारत करने योग्य है, इबादत करने योग्य है। और यह लिखते लिखते वह कहीं ना कहीं रुक जाती हैं। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज के छोटे से गद्यांश से दिल में उमड़ रहे प्यार मोहब्बत के भरे बहुत ही गहरे भाव

उभारा गया है। मोहब्बत का इजहार शब्दों से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से जुड़े छोटे छोटे और नाजुक इशारों से किया जाता है। आंखों की ये खामोश भाषा भाषा और प्यार की नजराने आपके जज्बातों को बिना कहे भी बयां कर देते हैं। बहुत बढ़िया लिखा है आपने। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, प्रेम का इजहार आंखों के इशारों से लेकर खत लिखने तक की यात्रा में बहुत उहापोह कशमकश और मन में एक डर समाया होने वाली श्रृंखला रहती है। प्रेम की शुरुआत सर्वप्रथम दृष्टि मिलने यानी नयनों के बाण से होती है। बहुधा प्रेयसी की कटीली तिरछी चितवन से प्रेमी घायल होता है और प्रेम अंकुर फूट पड़ता है। इसके बाद मन में एक दूसरे के प्रति अनुराग या लगाव को चेहरे के हाव भाव से लज्जा शर्म और रोमांच के माध्यम से समझा जाता है और एक दूसरे के इशारों से अपने हृदय की बात पहुंचाते हैं। बिल्कुल सही बात कही है आपने। और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि एक अनजान व्यक्ति से कुछ लगाव हो ही जाता है तो समझ में नहीं आता कि आखिर क्या है उस शख्स में जो उस ओर खिंचा चला जाता है। कुछ चिट्ठी पत्री लिख कर देखूं क्या उधर से भी कोई मेरी तरह से सोच रहा है, और अगर कोई इशारा ना मिला तो क्या होगा, मेरी तरफ से पहल ठीक रहेगी। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, आज का कार्यक्रम बहुत ही स्पेशल होने वाला है जिसमें प्यार मोहब्बत की बातें होंगी, इशारे भी होंगे, छेड़छाड़ भी होगा, खत किताबत भी होगी और फिर मिलन के गीतों की लंबी फहरिस्त भी होगी और बस सुनने में मजा आएगा। बिल्कुल सही। अब हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि आज की जो इबारत है आप सही समझे हैं, बस उतने ही समय की है जितने समय में इस राह मोहब्बत होती है, बस उससे कहने की देर होती है, पर कहने के पहले जो जो कुछ होता है वो सब कुछ आज की बातों में है। तो पहला प्रश्न है, क्या आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, बात तो अंदर की है जो हम आपसे पूछ रहे हैं। हो सकता है ये बात आपकी अपनी पत्नी आपके पति के साथ हुई हो या फिर कोई और हो जो आपकी प्रेयसी या आपका प्रेमी रहा हो, या ये बात आपने किसी और के लिए भी महसूस की हो, तो बताइएगा ज़रूर ये बात क्या है आपके दिल की। कभी कभी तो कोई अभिनेता अभिनेत्री गायक गायिकाओं के लिए भी इस तरह के मन में विचार रख लेते हैं, कभी कोई खेल खिलाड़ी के लिए, तो अगर ऐसा कोई विचार मन में है तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जो दिल है ना बड़ा बड़ा खतरनाक है, जाने किस पे कब आ जाए। तो चलिए सुनते हैं आज के इस कार्यक्रम का पहला गीत और इस गीत के साथ हमारा एक प्रश्न आपसे जो हमेशा जुड़ा होता है। पहला प्रश्न तो हमने आपको दे दिया कि बताइए कि आपके साथ ऐसा कुछ हादसा हुआ है, अगर हुआ है तो बता दीजिए, बताने में शर्म कैसी। और बस इतना बता दीजिए, ये जो गीत आप सुन रहे हैं इसमें ये मीठी सी सुरीली सी आवाज किसकी है?

अब दिल जो ना कह सका वो कहने की रात आई है, और ये गीत हमने लिया भीगी रात से, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और संगीत है रोशन का। हमने आपसे पूछा कि ये मीठी सुरीली सी आवाज कौन सी है, तो ऐसा कौन होगा जो ये आवाज नहीं पहचान पाएगा। हमारे सभी श्रोताओं ने बहुत अच्छे से पहचाना इस बात को, और बताया कि ये आवाज मोहम्मद रफी की है। अब ये इजराहे मोहब्बत जो है, आप सब सबको प्यार हुआ ही होगा कभी ना कभी, किसी ना किसी समय। तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से इस बात के उत्तर देना शुरू किए। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, रफी की भी आवाज, भीगी रात, प्रदीप कुमार, मीना कुमारी, अशोक कुमार नजर आते हैं। बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं, कुछ कुछ प्रेम कहानियों का आगाज झगड़े से भी होता है। हाँ, ये मैंने भी देखा है कि कई लोग झगड़ते रहते हैं और फिर बाद में प्यार करने लगते हैं। ये भी बड़ा रोमानियत भरा एहसास है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत, हम बुजुर्गों को जवां बना दिया है, कुछ गुलाबी जख्मों को हल्के से सहला गया। अब देखिए, इस बात को अगर आप ये समझें कि जीवन जो है वो शरीर बड़ा होता है, मन और आत्मा तो वही रहती है, तो उसी मन के लिए, सहलाने के लिए और उसी मन की प्यारी बातों के लिए आज का यह कार्यक्रम हमने इन जज्बातों से संजोया है। तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से लिखा कि करोड़ों लोगों की पसंद की आवाज अनमोल रत्न रफी साहब की है। बिल्कुल सही है। हमारे श्रोता ने लिखा है, हमारे हुआ तो हमारे साथ भी खुल के बता दे ना मत डरिए, बताना है तो बता दीजिए, अब तो समय निकल चुका है, अब क्या क्या ही फर्क पड़ने वाला है। पर हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे जमाने में प्रेम विवाह तो कोई सपना भी नहीं देखता था। हाँ, अरेंज मैरिज में बगल में बैठी पत्नी के पैर की अंगुलियां बस दिखाई पड़ती थी, वह भी साथ में बैठी नाई की पत्नी झट से ढक देती थी, तो इशारे भिसारे क्या करते जी, शायद आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने विवाह के बाद एक दूसरे को देखा होगा। यानी कितनी आरजू होगी ना कि जिसके साथ विवाह हो रहा है कम से कम उसका चेहरा तो देख लें, पर वह भी एक समय की बात, कितनी अच्छी एक अलग ही अनुभूति होगी। ऐसे ही हमारे श्रोता लिख रहे हैं, मोहब्बत का इजहार उनके सामने करना कोई उतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन सामने से अगर कोई इनकार आ जाए तो बस इस बात का डर रहता है, इसीलिए कई लोग इजहार नहीं कर पाते। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, दिल धड़कने का सबब याद आया, लेकिन राजे दिल कहने की दोपहर नहीं है, कहीं डंडे खिलवाने का इरादा तो नहीं है देखिए, अब अगर वही है तो फिर कह सकते हैं, अगर दूसरी है तो कहना बनता नहीं है जी चलिए आज, हाँ जी बिल्कुल, हमारे श्रोता ने लिखा है, आज सबके ये छुपे हुए राज रहस्य जानने आई हैं। जी, जानना बनता है, क्योंकि हम आपको बताएं कि ऐसा नहीं है कि ये जो प्रेम है ये केवल किसी एक तरह का ही हो। हमें भी एक बार वो बड़ा सुंदर सा एक कार्यक्रम आता था, उसमें एक संचालक हुआ करते थे, वो गायक हैं सोनू निगम, उनको देखकर हमें भी मन करता था कि इनको एक हम पत्र लिखें, और एक बार हमने लिखा भी और बाकायदा लिखा, सोनू भैया आप ऐसा ऐसा कुछ कुछ जो भी लिखना था वो लिख के उनको भेजा। एक लंबे अरसे के बाद उस चिट्ठी के बारे में जिक्र भी हुआ। तो ये प्रेम किसी भी तरह का हो सकता है, ये प्यार, ये पहला खत कैसा भी हो सकता है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, हम

वो मिले हैं, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो सच में हमें भी प्यार करते हैं या नहीं। पर हमने सोच लिया कि वो हमें प्यार करें या ना करें, बाकी आगे देखो क्या होता है। जी बस, हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी वो उम्र जब मेरी जॉब लग चुकी थी, शादी से पहले मैं सोचता था कि मेरे सपनों की रानी कैसी होगी। वाकई में मेरी आंखों के सामने बरबस ही अक्स उभर आते थे। फिर माता रानी का चमत्कार हुआ, पता नहीं कैसे मेरी पूज्य सासू माँ ने मुझे लायक समझा, मुझे पसंद किया और सपनों की रानी से मुझे मिला दिया, जिसके लिए मैं अपनी पूज्य सासू माँ का ता उम्र एहसानमंद रहूंगा। रहना ही चाहिए, उन्होंने अपनी बेटी आपको दी है और इतनी प्यारी बेटी, लाजवाब बेटी आपके साथ है उनकी। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं और उनमें से लिखा बहुत प्यारी बात के लिए है कि हाँ, ये बहुत अच्छी इबारत है कि हे साइकिल, अपनी इनायत, आपके कर्म कैसे भूलेंगे हम। आज विश्व साइकिल दिवस है, तो उससे जुड़ा हुआ ये हमारे बीच में एक संदेश आया है कि ये साइकिल, आपकी इनायत, आपके कर्म कैसे भूलेंगे हम। अगर उस जमाने में ना होती तुम, तो हमारे फूट जाते कर्म, खेतों के इंतजार में रहते, खेतों के खतों के इंतजार में रहते हरदम। जब बजती पोस्टमैन की साइकिल की घंटी, दरवाजे दौड़े दौड़े चले जाते थे हम, खत पाकर हाथों में खुश हो जाते थे हम, बोल उठते थे शुक्रिया शुक्रिया हम। अगर हमारा खत ना होता तब हो जाते थे बेदम। बहुत बढ़िया बात है, और ये खत कितने काम की चीज रही है उस समय, ये बात तो हम भी जानते हैं। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से इस बात को बताया कि कई सारे जो प्रेम है, उस प्रेम के बारे में, जैसे इबारत रूपी दो दिलों की रूहानी मोहब्बत, नज़ाकत, इनायत और तड़प का जिक्र है। जहां दिलों पर हुकूमत करने वाली मोहब्बत अगर रुस्मा हुई तो कयामत ही कयामत है। खतों और इशारों की दलीलों से दिल को सहलाने वाले प्रेमी युगल के प्रयास दो दिलों की विरह, बेसब्री और वेदना को चित्रित करता है। रूहानियत भरी इश्क में एहसान की गुंजाइश नहीं, ये जज्बा एक दरिया है जहां दो दिल अक्सर बह जाते हैं। आज के सात्विक सुरीले प्रेम सफर का आनंद का इंतजार है। तो चलिए हम चलते हैं अगले गीत की तरफ, और इस बार भी बड़ा सरल सा प्रश्न है। जैसे मैंने अपनी पहली खत के बारे में बता दिया, जिसके लिए लिखा था, दिल किया था, शायद आपका भी कोई खत हो जो आपने पहली बार लिखा था, बता दीजिए, डरिए मत, कोई पिटाई नहीं करने वाला। और आप ये बता दीजिए बस, अगला गीत जो हम आपको सौंप रहे हैं ये किस फिल्म का है, बताइएगा जरूर।

ये खूबसूरत सा गीत हम सुन रहे थे मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने। हमने आपसे पूछा था कि इस फिल्म का नाम क्या है, तो आप सब बहुत समझदार और बहुत ज्ञानी हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बड़ी जल्दी लिख देते हैं, और आपने लिखा कि ये फिल्म अनजाना है, और मैंने इस बात को स्वीकार किया। हमारे श्रोताओं से हम बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, उसमें से हमारे एक श्रोता ने लिखा है, मेरी लव मैरिज है, कुछ 56 साल पहले मैंने शादी की थी, घर वालों से मंजूरी नहीं मिली क्योंकि ये जमाना था जिसमें प्यार शब्द बोलना भी गुनाह माना जाता था, लेकिन मैं तो आज भी मानती हूँ प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, प्रेम एक शुद्ध भावनात्मक अनुभव है जो किसी भी उम्र में हो सकता है। इन्होंने जवानी या बुढ़ापा दोनों का जिक्र किया है। यह दिल से दिल का जुड़ाव है जो समय या सामाजिक बंधनों से नहीं बंधा है। प्यार जीवन के किसी भी पड़ाव पर हो सकता है। असली प्यार वह है जहाँ इंसान बिना किसी डर या दिखावे के स्वीकार कर सके। बिल्कुल सही है। हमारे श्रोता लिखते हैं, नहीं बताएंगे विधि जी, आपको और सभी को पर बहुत

बातें हैं पर दिल में रहें तो ज्यादा अच्छी हैं। बस इतना कहेंगे कि कभी किसी को परेशान नहीं किया। हाँ, हमारे हमारा हमारे नटखट श्री कान्हा जी से भी प्यार का इजहार एक माँ के रूप से भी कुछ कम नहीं है। उसमें कभी कान्हा जी को डांटना, कभी नजर उतारना, और कभी कभी उनको क्या खाना है इस बात का भी एहसास। कितना सच्चा प्यार है ना ये। हाँ, सच बात है, ये बहुत खूबसूरत एहसास है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इसी पेज पर हमारी बहन ने लिखा है कि उसे वापस लिख रहा हूं कि उम्मीद और डर के बीच झूलता हुआ एहसास ही मोहब्बत है, और यही हाल पहले लिखे खत में नजर आता है, और वो खत चाहे किसी को भी लिखा हो। सही बात है। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारी जो सगाई होने पर पत्नी रानी को खत लिखा, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, तो उन्होंने जवाब दिया, तुम्हें पाके हमने पा लिया है। क्या बढ़िया खूबसूरत, आप तो गीतों के साथ बात कर रहे थे। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हमने खत स्कूल टाइम में लिखा था, स्कूल को ट्यूशन क्लास लगने जाते थे तो हमने लिखा था, उसके बाद फिर कभी नहीं लिखा। इन्होंने बड़ी अच्छी पंक्तियां लिखी हैं कि चर्चा हमारे प्यार का हर आमो खास में था, पर वो ना समझ सके जो दिल के पास था। हमने तो अपनी हर दुआ उनके नाम कर दी, शायद उनकी तकदीर में कोई और ही खास था। क्या बात है, बढ़िया शेर है। ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिया कि वैसे तो प्रेम की परिभाषा अलग-अलग होती है, पर मुझे जॉय मुखर्जी बहुत पसंद आती हैं। शादी वाला प्यार नहीं था लेकिन बहुत पसंद थे, इसलिए मैंने अपने बेटे का नाम जॉय ही रखा, ताकि मैं जॉय मुखर्जी को हमेशा अपनी यादों में जिंदा रख सकूं। टीवी का एक कार्यक्रम आता था सुरभि, जिसमें रेणुका शाणे जी की हंसी भी मुझे बहुत पसंद थी। ये भी तो एक प्रेम का रूप है ना। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं, हमारी भी सगाई के 2 साल बाद शादी हुई, इस बीच हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं था, शादी भी घूंघट में हुई, सीधा रूम में दीदार हुआ, लेकिन हम एक दूसरे को खत लिखते रहे। उस समय फोन से ही बातें होती नहीं थी, मात्र एकमात्र सहारा खत हुआ करते थे। उसके बावजूद भी इतना प्यार कि प्यार इतना प्रकार की आज तक मजबूत डोर बंधी हुई है। यह होती है दिल से दिल का मिलन, लेकिन आज वह बात नहीं है जो राजा न रानी दुनिया हो गई बड़ी सयानी, कब रिश्ते टूट जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैंने जब शादी की तो शादी के पहले मैंने अपने जीवन साथी को देखा नहीं था, माँ पापा ने रिश्ता पसंद करके तय कर दिया था, हमने केवल फोटो देखा था, और 1990 से लेकर आज तक रिश्ता बहुत अच्छे से चल रहा है, ये सदा चलता रही है, प्रार्थना हमारे ईश्वर से है। हमारे श्रोता ने लिखा, गांव की एक लड़की के दो छोटे भाई लड़की को दो छोटे भाई के जरिए लेटर लिखा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब भाई ने उसके हाथ में खत दिया तो गुस्सा हो गई, बोली आगे से ऐसे खत लिखा तो खैर नहीं है, वैसे मुझे देखने के लिए हमारे घर टीवी देखने आती थी। ये बात 1992 की है। बढ़िया है। हमारे श्रोताओं ने बहुत, एक और बात मेरी जो मैंने बात कही थी उसके लिए भी उन्होंने सराहा है कि हाँ ऐसा सबके साथ हुआ है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि इश्क की उस नाजुक दहलीज को दिखाती है जहां एक बेइंतहा उम्मीद है, दूसरी तरफ कोने का उतना बड़ा डर। दिल पूरी तरह उस इंसान के फैसले पर निर्भर हो जाता है, जहां उसका हाँ जिंदगी को जन्नत बना सकता है और ना कयामत ला सकता है। सही बात है। हमारे श्रोता लिखता है, किसी पर दिल आ जाए तो क्या होता है। बहुत बढ़िया है, खुश रहिए, ऐसे ही खुश रहिए। आप लिखते हैं, हमारे श्रोता ने लिखा, आज की जनरेशन का प्यार मोहब्बत का इजहार डिजिटल और क्रिएटिव है तरीकों का इस्तेमाल करती है, इसके लिए सोशल मीडिया, डेटिंग ऐप और पर्सनलाइज्ड जेस्चर बढ़ चला है। बिल्कुल सही है। तो ये बहुत सारी बातें हमारे पास आ रही हैं, और इन्हीं बातों के बीच में हमारे श्रोताओं ने हमें और भी संदेश भेजे हैं। उन संदेशों में खत के लिए बात कही है। खत सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि दो दिलों के जोड़ने का एक पुल है, और उन्हें गहराई तक पहुंचाने वाला सुकून है या एहसास का जरिया है, जो दूरियों को मिटाकर शब्दों के जरिए जज्बातों को हमेशा के लिए अमर कर देता है। खत के शब्द लिखने के लिए रूह को पढ़ने वाले तक पहुंचते हैं, यानी कहीं बात बयां करने का सबसे अच्छा साधन है। यह बिल्कुल सही बात है। शब्द कभी पूरे नहीं पड़ते जब खत लिखने बैठो, इसलिए दिल इशारों इशारों में बहुत कुछ कहना चाहता है। और एक तो लिखते हैं कि प्यार का पहला खत लिखना आसान नहीं होता, अल्फाज कम, धड़कनें ज्यादा शामिल होती हैं, कलम कागज पर चलती है, मगर असल में दिल अपनी बात कह रहा होता है। हर लफ्ज के साथ यह डर भी होता है कहीं भावनाएं अधूरी ना रह जाएं, हर पंक्ति में उम्मीद भी कि शायद सामने वाला उन्हें अनकहे जज्बातों को पढ़ ले जिसमें शब्द पूरी तरह बयां नहीं कर पाते। ऐसे ही कई सारे संदेश आए हैं, पर ये गीत सुनवाना बनता है आपको। जब आपका जैसे एक जिक्र किया गया कि वो फिल्म देखने हमारे घर आती थी, तो ऐसा ही कुछ भी हो सकता है ना, कोई बड़ा करीबी सा।

लता मंगेशकर की आवाज, राजा मेहदी अली खान के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के संगीत से सजा हुआ ये गीत हम सुन रहे थे अभी। और हमने आपसे पूछा था, बस इस फिल्म का नाम बता दीजिए, तो आप सबने सही बताया, अनीता फिल्म।

का ये गीत हम सुन रहे हैं और हम बात कर रहे थे प्यार के इजहार की या फिर खत लिखने की। प्यार किसी से भी हो सकता है। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा कि जब मेरे बीए का एग्जाम था तो देकर अभी निकला ही था तो तुरंत विविध भारती से जुड़ गया, और ये भी तो एक प्रेम का रूप है श्रोताओं के लिए, विविध भारती के लिए। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छे से ये सारे उत्तर देते देते एक और बात लिखी कि मैंने एक नाटक देखा था डोली तेरे अग्नि, जिसमें सच्चा प्यार करते हो, सच्चा मान लेते हो, मिल जाता है, पर मुझे लगता है कि सच्चे आशिक को सजा मिलती है, पाई हुई मंजिल भी छूट जाती है। हो सकता है, देखिए हर किसी का अलग अलग बात होती है। अच्छा, हमारे श्रोता लिखते हैं कि दूसरा खत प्रेमिका को लिखा था जो आज सरकार होम मिनिस्टर बनकर हम दोनों का जीवन जिस पथ पर सुगम करने में तुला हुआ है। क्या बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं, मैंने पहला प्यार अगर किसी से किया तो रफी साहब की आवाज के साथ में किया। उनको सुनकर मुझे कुछ होने लगता कुछ मुझे होने लगता था। और एक शशि कपूर मुझे बेहद पसंद थे, मैं उन्हें अपने बड़े भैया की तरह मानती थी और जब वो उनको देखती तो खुशी होती थी। पर खत तो मैंने कभी किसी को नहीं लिखा। अभी कुछ साल पहले आनंद जी नाइट में मैं गई थी कोलकाता, आनंद जी भाई आए थे अपनी पत्नी के साथ, तो हम शशि कपूर को खत एक खत लिखकर उनको दिया था। पता नहीं उन तक पहुंचा या नहीं। उसके बाद शशि कपूर साहब चले जाने की खबर भी आई थी। जी, हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि खत तो हमने बहुत लिखे अनगिनत, लेकिन 77 में घर से बेघर हो गए थे तो पत्र के संवाद का माध्यम था। बिल्कुल सही बात है। घर जब छूट जाता है तो फिर हम अपने परिवार वालों से भी ऐसे ही बात करते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा कि आज का प्यार तो कुछ इस तरह से हो गया कि पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरे को दिया और मिलना बिछड़ना बड़ी आम बात हो गई है। जी, पहले ऐसा भी होता था ना कि गांव के मोहल्ले के किसी बच्चे को चिट्ठी दे देते थे और वो जाकर दे आता था, है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं, पोस्ट कार्ड इनलैंड और लिफाफे के एक जमाने में खूब लिखे हैं और आज भी संभाल कर रखे हैं। हमारे श्रोता ने लिखा, खत पहले हमने विविध भारती के प्रोग्राम को लिखा। प्रेरणा जीजा जी थे जो मुंबई विविध भारती ऑफिस में टेक्निकल विभाग में काम करते थे। तो ऐसे ही खत आप लिखते जाइए ना। अभी तो आपके लिए खत वाला कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है और आपके खत के साथ आपके पसंदीदा गीतों को भी हम सुनाया करते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, कॉलेज में एक लड़की को खत लिखा था मगर उसने फर्स्ट ईयर के बाद ही कॉलेज छोड़ दिया। ऐसा कैसा खत लिख दिया आपने। हमारे श्रोता लिखते हैं, लव मैरिज हुआ था और अभी 38 साल मना रहे हैं। बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। हमारी श्रोता लिखती है, कभी प्यार का खत नहीं लिखा, मोबाइल आ चुके हैं, दिल की बात कागज पर नहीं मैसेज में होती है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग होने लगी है। बिल्कुल सही बात है। अब हमारे श्रोता लिखते हैं कि सिर्फ तुम में जो स्टोरी थी वैसी भी कहानियां बनती हैं, असलियत में बिना देखे बिना मिले वाला प्यार। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। वो प्यार कितना सुंदर होता है ना जिसमें देखा ही नहीं। शादी 58 साल पहले हुई थी, तब हम पढ़ते थे, विदाई 3 साल बाद होकर पत्नी घर आई तो हम बलिहारी जाऊं उन्हें खूब प्यार करते, 6 महीने बाद वह चली गई तो हम भी परेशान, वो भी। लेकिन उनकी सहेली पढ़ती थी, वो कॉलेज का नाम पूछकर एक खत डाल दिया। एक दिन एक छात्र ने एक खत दिया और कहा, ये तुम्हारा ही है ना, आज मेल बॉक्स में पड़ा मिला, जहाँ डाक किया सब चिट्ठियां डालकर जाता है। हमने पढ़ा सब, जितने दोहे और शायरी उसे आते थे उसने लिखा था, नीचे आपकी रानी लिखा था। फिर हमने उनके गांव में खत भेजे, खूब शायरी लिखते थे, वो सहेली उन्हें सुनाती थी। फिर 6 महीने बाद वो आ गई, फिर ऐसे खत नहीं लिखे। कितना अच्छा, कितनी अच्छी याद होती है ना ये सारी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में हमारे मेरे घर के सामने मेरी उम्र की लड़की रहती थी, मैं उसे देखता था, उसके पीछे करता था, बाद में विवाद हुआ परिवारों में और उसके बाद इन्होंने ये काम छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, बेटियां भी परेशान हो जाती हैं। और इसके साथ ही हम आपको अगला गीत सौंप रहे हैं और अगला गीत बस वही है खत के बारे में। लेकिन कई लोग हैं जो खुद खत लिखते हैं और पहले का जमाना ऐसा था जब खत लिखवाए जाते थे किसी और से। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि खत उन्होंने लिखा था माता पिता और बड़ी बहन जी जी जीजा जी भांजे भांजी के लिए। तब हमने मुंबई में नेवी ज्वाइन किया था। अच्छी बात है, जब दूर रहते हैं घर से तो हम लिखते ही हैं खत। ऐसी ही बहुत सारा प्रेम, बहुत सारी चीजें हम एक दूसरे के लिए भेजते हैं। तो अब देखिए ये वाला गीत आप सुनिए और बताइए इसकी गायिका कौन है, और साथ में संगीतकार भी बता देंगे तो अच्छा रहेगा। और इसके साथ एक बात और बताइएगा, खत तो लिखा लेकिन पहले खत का जवाब क्या आया था, जरूर से साझा कीजिएगा।

0: हक दूसरे से लिखवाना कितना कठिन होता होगा ना, कि आप अपने जज्बात उसे बता रहे हैं। यही बात तो आखिरी अंतरे में आशा भोसले गा गा के बता रही थी, जिसे आनंद बख्शी ने लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया। फिल्म आए दिन बाहर के हमने वही प्रश्न पूछा था कि गायिका कौन है, तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। आशा भोसले गा रही हैं, आशा पारेख अभिनय कर रही हैं, आनंद बख्शी के गीत हैं, लक्ष्मी प्यारे का संगीत है और बहुत खूबसूरत गीत है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सच में बिना देखे वाला प्यार भी बड़ा प्यारा होता है। ऐसा भी होता है कभी किसी की अच्छी बातों से प्यार हो, कभी किसी की आवाज़ से प्यार हो, कभी किसी की बात ना करने से प्यार हुआ हो, तो बात बहुत सारी हो सकती है। बस प्यार में सच्चाई, अपनापन हो, ना तो कोई दिखावा हो ना कोई गलत बात। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि हाँ, इस गीत में बाबू बार बार बोला जा रहा है या डाक बाबू के लिए ही बोला जा रहा है। हाँ, आजकल ये बाबू शब्द का प्रयोग भी प्रेमी या के लिए किया जाता है, पर यहाँ पर डाक बाबू के लिए ही कहा जा रहा है। बिल्कुल सही बात कही आपने। हमारे श्रोता ने लिखा, गाने की खूबसूरती यही है, पर्दे पर भी आशा जी हैं और आवाज में भी आशा है, यानी आशा भोसले और आशा पारेख। बिल्कुल सही। हमारे श्रोता लिखते हैं, मगर इतना जरूर जाना है कि प्यार एक बहुत गहरा एहसास है, कि पालेना ही प्यार है, प्यार महसूस किया जाता है, इसलिए प्यार किया नहीं जाता। अगर हम प्यार करते हैं तो खुशी में हमारी खुशी होती है, मर्जी में दुख। जी बिल्कुल सही बात आप कहते जा रहे हैं। इसके साथ हमारे श्रोताओं ने इस बात के लिए लिखा कि शादी के बाद जब पत्नी पीहर चली जाती थी तो उनके लेटर पैड पर पत्र लिखता था और लिफाफे को पोस्ट कर देता था उसके पास रहने वाले पड़ोसी के पते पर। पड़ोसी के पते पर क्यों, उनके पते पर क्यों नहीं, ये प्रश्न हम आपसे पूछते हैं। हमारे एक श्रोता ने हमारे लिए बहुत अच्छा संदेश भेजा है। जब पहला खत 2008 में विविध भारती को लिखा था, जब रेडियो पर अपना नाम सुना तो पल भर के लिए अविस्मरणीय बन गया, तभी से मैं विविध भारती मेरे जीवन का प्रिय साथी बन गई। लगभग 18 वर्षों से मैं नियमित रूप से विविध भारती सुन रहा हूँ। इसके कार्यक्रम उद्घोषकों की सभी कलाकारों की मधुर आवाजों से एक आत्मीय रिश्ता बन गया है। ऐसा लगता है विविध भारती केवल रेडियो सेवा नहीं बल्कि परिवार का एक हिस्सा है। इसकी हर आवाज़ मुझे अपनापन और स्नेह मिला है और यही कारण है कि मेरा लगाव दिन प्रतिदिन और गहरा होता गया है। छोटी पंक्ति, विविध भारती से मेरा रिश्ता श्रोता का नहीं बल्कि दिल का है। इसकी हर आवाज़ में मुझे अपनापन और प्यार महसूस होता है। हमें भी यही होता है। हमारे एक श्रोता ने बड़े अच्छे से अंग्रेजी में लिखा है, मैं उसका हिंदी में अनुवाद करके आपसे बात करती हूँ कि उनकी अरेंज मैरिज थी, यानी विवाह माता पिता ने तय किया था और दोनों गांवों के बीच में 40 किलोमीटर का अंतर था। दोनों बैंक में काम करते थे और इनके जो होने वाले सैया थे वो बड़े शर्मीले थे, इसलिए मिलने नहीं आते थे। पर इन्होंने ही एक दिन आगे रहकर बात करी तो उन्होंने जन्मदिन पर बुलाया। फिर वो एक होटल में खाने के लिए गए, बीच पर बैठे, बातें की और साथ में एक बहुत सुंदर सी रिश्ता इनके बीच में कायम हुआ। बहुत बढ़िया बात है। अब हम चल रहे हैं एक और जज्बात की ओर, एक और गीत की ओर, और उस गीत को सौंपने के पहले हम चाहते हैं कि ये संदेश हम सुन लें।
1: कहिए, सुनिए एक खुशखबरी।
2: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
0: वैसे ही प्यारे आपका

और हमारे बीच में आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम. चल रहा है सुरीला सफर, और इसी सफर में एक इबारत हमारे श्रोता ने लिखकर भेजी कि इशारे शब्द पर हमारे दिल में कुछ यूं कहा, कुछ बातें लफ्जों में नहीं कही जाती, बस इशारों में दिल अपना हाल बयां कर देता है. एक नजर, एक मुस्कान, एक छोटी सी खामोशी, कभी कभी इतना ही काफी होता है समझने के लिए कि सामने वाले की अहमियत हमारे लिए कितनी है. इशारे वही समझ पाते हैं जिनके दिलों में अपनापन और एहसास जिंदा होते हैं. इशारे अक्सर वो कह जाते हैं जो जुबान कहने की हिम्मत नहीं करती. बिल्कुल सही बात है. और इशारे से मुझे याद आया कि हम लोग कई सारे इशारे किया भी करते थे पहले, जैसे बोलते बोलते प प ब भ कुछ एक शब्द का प्रयोग हमारे उसके साथ कर लेते थे, या उल्टा बोलना या सीधा बोलना, और ऐसे हम सबके बीच में भी अपने दिल की बात कर लेते थे. ऐसा कुछ आपने किया है क्या, उल्टा सीधा बोल के या किसी एक शब्द को जोड़ के अपने दोस्तों से बात की है? फर जोड़ते थे, बर जोड़ते थे और लोगों से बात करते थे. आपने अगर ऐसा किया है तो जल्दी से बताइए. और एक और चीज बता दीजिए, ये जो गीत है उसके गीतकार कौन है, गीतकार का नाम बताइए. और आपने हमारे जैसी कोई हरकत की है सीक्रेटली बात करने की तो जरूर बताइएगा. सुनिए ये गीत.

हम सुन रहे थे कश्मीर की कली फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ में ओपी नैयर के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा कि इसके गीतकार कौन हैं, तो आप सबने बिल्कुल सही उत्तर दिया, SH बिहारी इस गीत के गीतकार हैं। अब इसके साथ मुझे एक चीज़ और, एक बड़ा प्यारा सा शेर याद आ रहा है जो जोश मलिहाबादी ने कहा था शायद, कि एक दिन कह लीजिए जो कुछ है दिल में आपके, एक दिन सुन लीजिए जो कुछ हमारे दिल में है। और ऐसी ही बात अगर हो जाती है तो फिर बात क्या कहनी है। और इसके साथ ही हमारे श्रोता ने लिखा कि 21 से 23 तक बहुत गहरा प्यार था, ये अपने दिल की बयां कह रहे हैं, और लंबे समय तक परिस्थितियां बदल गई। देखिए, कई बार प्यार हमें मिलता है, कई बार नहीं मिलता, पर ठीक है, कोई बात नहीं, खुश रहिए। और आज हम आपसे, अच्छा, हमारे श्रोता ने लिखा है एक उल्टे शब्द तो आज भी कभी कभी फन के लिए बोल लेते हैं, जलेबी को जबेली कह लेते हैं। जी बढ़िया है, कहना चाहिए। और इशारों इशारों में बात थी, अच्छा मैं भी बता दूं अपना नहीं, हमने इशारों में उनसे ही बात की जिनके लिए हमारे माता पिता ने हमारे लिए चुना। उसके बाद तो चिट्ठी पत्री खत सब लिखना बनता ही है, आपने भी लिखे हमने भी लिखे। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बड़े प्यार से कि ये बहुत सुंदर सा गीत है कश्मीर की कली का, पंजाबी ठेका तबले में और संतूर पियानो सितार वायलिन का बेहतरीन इस्तेमाल इशारों इशारों में, रफ़ी साहब लाजवाब, बहुत बढ़िया। और हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बाबू बच्चों के लिए उपयोग किया जाता है हमारे मालवा में, या लाड़ प्यार दर्शाता है, लेकिन आजकल पत्नियां अपने पति को लाड़ से बाबू कहाँ हो, बाबू इधर आओ, बाबू मेरे लिए आइसक्रीम ले आओ, ऐसा कहती हैं। तो ठीक है, ये प्रेम जताने वाली बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं जब हम फोन पर बात करते थे तो घर वाले सामने ऐसे बात करते थे, चोरी छुपे फोन नीचे रख के कॉल चल रही है, मैं बोलती थी सहेली का नाम लेकर कि उससे बात करी, फिर कॉल पर बोलती थी और फिर सो नहीं पाती थी और फोन कट जाता था। जी कई बार ऐसा होता था ना कि हमारी बातें ऐसी होती थी किसी को पता ही नहीं पड़ता था। और चलिए अब हम आपको अगला गीत जल्दी से सौंपना चाहते हैं क्योंकि कार्यक्रम बस समाप्ति की ओर है, और आपके साथ में जो समय बिताया वो बहुत सुंदर था। आपसे आखिरी बात कहकर मैं जा रही हूँ, और बात कुछ ऐसी कहकर जा रही हूँ कि जो ये गीत है, अगर किसी का प्यार हमें मिल जाए तो बस वो एहसान की तरह होता है, और उस एहसान के लिए लोग कई दिनों तक इंतज़ार करते हैं। तो ये कहना उनसे मोहब्बत है मुझको, ये कहने में मुझको जमाने लगे हैं, ये लिखते हैं खुमार बारा बंकवी। और चलते हैं इस अंतिम गीत की तरफ, आके दीजिएगा इस गीत के साथ।

0: मुझ पर।
1: और ऐसा एहसान हो जाए तो जिंदगी बड़ी अच्छी होती है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि कुछ और फर्ज जोड़कर उनकी माँ और मौसी बातें करते थे, तो इस शब्दों पर आप जरूर बात कीजिएगा अपने लोगों से, कुछ नए तरीका सीख लीजिएगा अपने जीवन में। और आज के इस कार्यक्रम में सुरीला सफर में बस इतना ही, आज्ञा दीजिएगा, नमस्कार।

0: हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। मोहम्मद रफी का गाया, गुलजार का लिखा, मदन मोहन का स्वरबद्ध किया, फिल्म मौसम का यह गीत है।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का गाया फिल्म मौसम का ये गीत था। डर फिल्म का गीत अब आपको सुनवाते हैं, लता मंगेशकर और ए हरिहरन ने इसे गाया है। शिवहरी के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी ने लिखा है।

0: लता मंगेशकर और ए हरिहरन का गाया ये डर फिल्म का गीत था। शिव हरी के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी ने लिखा था। इसके साथ ही फिल्म संगीत अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास एजेंसियों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति

0: ने कहा कि जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और देश के हर गांव और हर व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए। उन्होंने ये भी चिंता जताई कि अभी भी कई जनजातीय वर्गों को सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं है। जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत आयोजित इस सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा के जॉर्ज कुरियन, सुमेर सिंह सोलंकी और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह का कार्यकाल 21 जून को खत्म हो रहा है। इन सीटों के लिए नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 9 जून को जांच होगी और 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। जरूरत पड़ी तो 18 जून को मतदान और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना होगी। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने से कई लोगों की मौत की खबर है। हालांकि प्रशासन ने अब तक 4 शवों की ही पुष्टि की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने भी घटना पर गहरा दुख जताया है। सीबीएसई ने बताया है कि 12वीं के लगभग 40,000 छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए सफलतापूर्वक आवेदन जमा कर दिए हैं। बोर्ड ने कल उत्तर पुस्तिकाओं की जांच और पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए है जिन्होंने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी पहले ही प्राप्त कर ली है। प्रदेश का लोक निर्माण विभाग अब सड़क निर्माण को सिर्फ निर्माण कार्य तक सीमित नहीं रखेगा। इसी सोच के साथ मंत्री राकेश सिंह की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 1 और 2 जून को महाराष्ट्र और गुजरात के अध्ययन दौरे पर गया। वहां टीम ने महाराष्ट्र के वित्तीय मॉडल, डिजिटल गवर्नेंस और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम को समझा। अब इसी तर्ज पर प्रदेश में 1 रियल टाइम इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम बनाया जाएगा ताकि निर्माण स्थल पर कोई घटना होने पर मिनटों में कार्रवाई हो सके। खंडवा जिले ने जल संचय जन भागीदारी अभियान में देश भर में 5वां और अपने जोन में दूसरा स्थान हासिल किया है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 4,22,000 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण किया गया। इनमें सोकपिट, रिचार्ज पिट, बोरी बंधान और कंटूर ट्रेंच जैसी संरचनाएं शामिल हैं। 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इस बार का वैश्विक अभियान जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है। इसकी मेजबानी अजरबैजान कर रहा है। प्रदेश में भी इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खंडवा समेत कई जिलों में इस दिन एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत विकास खंडों में पीपल, नीम, बरगद और आम के पौधे लगाए जाएंगे। दूसरी तरफ पश्चिम मध्य रेलवे भी 15 मई से 15 जून तक जबलपुर मंडल में पर्यावरण जागरूकता अभियान चला रहा है। भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में 6 जून से 5 दिवसीय महुआ महोत्सव शुरू हो रहा है। ये महोत्सव संग्रहालय की 13वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। 10 जून तक चलने वाले इस महोत्सव में देश भर के जनजातीय नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक शिल्प और देशज व्यंजनों की भरमार रहेगी। संस्कृति और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी 6 जून की शाम 6:30 बजे इसका शुभारंभ करेंगे। और अब बात मौसम की। इस बार नौतपा में गर्मी की जगह आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने डेरा जमाए रखा। बारिश और तेज हवाओं से पारा 8 से 10 डिग्री तक लुढ़क गया और कहीं भी हीट वेव नहीं बनी। मौसम विभाग ने आज इंदौर, उज्जैन सहित 36 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नीमच कलेक्टर ने अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच कलेक्टर ने कल समय सीमा पत्रों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में बारिश के पहले सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आगर मालवा जिले के सुसनेर नगर परिषद द्वारा 3,27,00,000 रुपए की लागत से नगर में आधुनिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कराया जाएगा। शिवपुरी में प्रतिबंधित और नियंत्रित श्रेणी की भूमियों के अवैध हस्तांतरण, पंजीयन, नामांकन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए जिले के सभी उपपंजीयकों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को निर्देश जारी किए गए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम।

दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के

0: अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 60 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला के परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई। इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कैट एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने घायल के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और साहस प्रदान करने की भी कामना की। गृहमंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गाँव और व्यक्ति तक विकास पहुँचना चाहिए।
3: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तले इलाके में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
0: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में योगदान करने का आह्वान किया है। राज्य के कोलाबिस जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newson.aiar.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष

0: नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिंद्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटाली से संदीप अंसाहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शहरी विकास, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने नबन्ना में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रूपये मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू करना संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद किए गए। एक बंद कमरे में दो पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट बुरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि ये कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजदूर, लेखक, अभिनेता, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली ये खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि ये लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसे प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहली नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी

0: सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के पांचवें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
1: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के मौद्रिक नीति समिति की तीन दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांचाई इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62% पूर्व SIR मैपिंग हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
2: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
1: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में HS प्रणय आयरलैंड के नहन गुवेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में PV सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओंगमाम रुंगफान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंगकांग और आरोई ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों ओडिशा, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता DK शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में HS प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे समाधि फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर, अमीर बाई और साथियों की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल और सी रामचंद्र के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे, और आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो कि है श्री 420 फिल्म से। मन्ना डे और साथियों की आवाजें हैं, शैलेंद्र के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत।

0: का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं,
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं न्यू दिल्ली फिल्म का ये गीत, किशोर कुमार की आवाज में, शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन का है संगीत।
1: मिलते ही नजर, मिलते ही नजर।

हम सुन रहे थे सीआईडी फिल्म का यकीन गीत आदित्य की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो कि है फिल्म साथी से। लता मंगेशकर की आवाज है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल है और नौशाद का है संगीत।

हम सुन रहे थे बरात बिरादरी फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। कुमार ने इसे लिखा और शौकत दिलवी नौशाद ने इसे शौकत दिलवी नौशाद ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं अगला गीत। आज के कार्यक्रम का यह अंतिम गीत होगा और जो गीत है फिल्म अनुभव से, गीता दत्त की आवाज़ है, गुलजार के बोल हैं, कनू रॉय का संगीत है। इसके साथ ही आज्ञा

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मेरा यानी चंचल वर्मा का
1: प्यार भरा नमस्कार। क्या बात है चंचल, आज बड़ी महक रही हो और खूब कपड़े भी हरे भरे पहने हुए हैं। और जब मैं तुम्हारा लंच बॉक्स देख रही थी तो काफी हरी हरी सब्जी लेकर आई थी, क्या बात है।
2: वैसे तो हरी सब्जियां भाई इस मौसम में मिलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर कभी मिल जाए ना तो अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए जरूर खा लेनी चाहिए। और बात हुई हरे भरे की, तो थोड़ी सी हरियाली आप में भी है। और ये जो उत्सव का सा माहौल है ना, कल से ही जो चल रहा है, आज भी जब हम आए स्टूडियो में तो सजावट देख कर लगा कि कल के उत्सव की जो रौनक महक है
1: आज भी है, खुशबू है ना आज भी हमारे बीच में महसूस हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि हर उत्सव को जब हम खुशी के साथ मनाते हैं तो वो कई दिनों तक हमारे दिलो दिमाग पर असर करता है।
2: तो चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे सभी सुनने वालों को बताते हैं कि आज हमारे सखी सहेली के पिटारे में कौन कौन सी जानकारी है या मनोरंजन है और किस चीज पर हम चर्चा करने वाले।
1: तो बताइए आज क्या क्या विषय लेकर आई हैं आप।
2: तो देखिए, सखी सहेली का रिश्ता यानी कि 22 साल पुराना रिश्ता, और कोई भी रिश्ता मजबूत कब बनता है, जब वहां पर प्यार हो, खुशियां हो,
1: विश्वास हो, सम्मान हो।
2: तो रिश्तों की जो मजबूती है उसका आधार क्या है, इस पर हम बात करेंगे।
1: बिल्कुल।
2: और आज बुधवार का दिन है तो साड़ियों की भी कुछ बात होती है। जब उत्सव का समय होता है ना तो भाई जो महिलाएं हैं वो बड़ी सजी धजी नजर आती हैं, और साड़ियों के बिना कहाँ श्रृंगार पूरा होता है।
1: तो भाई हम अपनी अलमारी खोलते हैं ना जब उत्सव के दिन की आज हमें खास साड़ी पहननी है, तो चंचल लगता है जैसे हमारे पास कुछ है ही नहीं। बहुत कुछ होते हुए भी लगता है कुछ नहीं है, क्या पहना जाए क्या पहना जाए। तो लगभग ये सभी महिलाओं की कमजोरी होती है ना।
2: तो आज जो साड़ी है वो है घर चोला साड़ी, जिसके बारे में बात होगी। और शब्द हमारा, विचार आपके, तो हमारे सुनने वालों को जिस शब्द के बारे में अपने विचार भेजने हैं वो शब्द है नियोजन।
1: अरे वाह, बहुत सुंदर शब्द है ये नियोजन जी। तो इस पर हमारे श्रोता जो हैं अपने विचार लिखें कि नियोजन का अर्थ क्या है और आपने इसको किस तरह से किस अर्थ में अपने जीवन में उतारा है।
2: और 3 जून का दिन होता है विश्व साइकिल दिवस, तो साइकिल से जुड़ी हुई अपनी यादें भी आप साझा कर सकते हैं।
1: हाँ, ये बता सकते हैं कि जब आपको पहली साइकिल मिली आपकी जिंदगी में, जो पहली साइकिल थी, चाहे वो छोटी सी थी, चाहे वो बड़ी थी या वो उससे बड़ी थी, तो आप उसका जिक्र कर सकते हैं कि वो साइकिल हमारे लिए कितना मायना रखती थी उस जमाने में, है ना।
2: और आज कई घरों में हमने देखा है कि चाहे दोपहिया वाहन है या चौपहिया वाहन है, उनके घर में बड़े बड़े वाहन खड़े हैं, लेकिन एक साइकिल जरूर रखते हैं, क्योंकि लोग अपने स्वास्थ्य को लेते हुए बहुत जागरूक हो रहे हैं। तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक जाने की बजाय वो साइकिल लेके
1: नजर आते हैं,
2: ताकि उनकी सेहत पर कोई बुरा असर ना पड़े। तो साइकिल एक घर का परिवार के सदस्य की तरह वो हिस्सा होती है।
1: बिल्कुल सही कहा। और आजकल इसका प्रचलन जो थोड़ा कम हुआ है ना, उससे हमारी सेहत में बहुत बुरा असर भी पड़ा है, क्योंकि हमने हर जगह दोपहिया वाहन या चार पहिए के वाहन को कार को लेके जाना सीख लिया। थोड़ी सी दूर पर हम सामान लेने जाते हैं और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके ले जाते हैं, तो हम हिलना डुलना ही नहीं चाहते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आपने साइकिल चलानी नहीं छोड़ी है तो यकीनन आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा।
2: तो साइकिल चलाने के क्या फायदे हैं, इस पर भी आप हमें लिख कर बता सकते हैं। और गर्मियों की बात हो रही है, तो गर्मियों में जैसे हमने शुरू में ही कहा ना कि हरी सब्जियां बड़ी मुश्किल से देखने को मिलती हैं, और सिर्फ हरी सब्जियां नहीं, बाकी सब्जियां भी बाजार में बड़ी कम दिखती हैं।
1: हाँ।
2: ले देखे कुछ गिनी चुनी सब्जियां हैं, तोरी है, टिंडे हैं, भिंडी है, कद्दू है,
1: लौकी है,
2: जिसमें से बहुत सारी सब्जियां तो बच्चे पसंद नहीं करते खाना, तो महिलाओं के सामने बड़ी समस्या है कि बनाएं क्या।
1: सुनो चंचल।

0: बहुत
1: जी
0: सारी सब्जियां बनाने पर जो पति देव है ना हमारी सखियों के, वो मुंह
1: जी
0: फुला लेते हैं, ये क्या बना दिया आज, मैं नहीं खाता हूँ।
1: तो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है बिना सब्जी के सब्जी बनाने के लिए बेसन, और बेसन से जाने कितनी तरह की सब्जियां बनाई जा सकती है। तो हमारी सखियां बेसन से कौन कौन सी सब्जी बनाती हैं, जैसे अगर मुझे कुछ याद है तो कड़ी बन जाती है, गट्टे बन जाते हैं, पितौड़ की सब्जी,
0: अरे सारा मत बताओ।
1: और इसके अलावा कौन सी सब्जियां हैं और उनकी रेसिपीज भी हमारी सखियां साझा करें। तो ये गीत सुन लेते हैं सखियों के
0: बिल्कुल
1: साथ।
0: सुन लेते हैं। तो अपनी सखियों से हम कहते हैं कि फटाफट तैयार हो जाइए, और बेसन की इन गर्मियों के दिनों में आप क्या सब्जी बनाती हैं हमें भी बताइए।
1: जी

0: हाँ तो चंचल, जब हम बेकरार होते हैं कब होते हैं बताओ? जब
1: हुँ?
0: हम किसी के साथ मजबूती से किसी रिश्ते में बंधे होते हैं, है ना?
1: और पता है, जब किसी से रिश्ता बहुत मजबूत होता है, कई बार हम उनके साथ ना हो तो भी उनका जो एहसास है वो हमारे साथ होता है,
0: बिल्कुल सही
1: और ये
0: कहा,
1: उसी रिश्ते की मजबूती को दिखाता है।
0: बिल्कुल। तो रिश्तों की मजबूती के लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, वही हमारे सफल जीवन का आधार है। अगर इस बात
1: बिल्कुल
0: को हम जान लेंगे तो हमारे रिश्ते मजबूत होंगे, वरना स्वार्थी रिश्ते तो हर जगह मिलते ही हैं।
1: बिल्कुल, मतलब ही रिश्तों का तो कहते हैं ना कि हर जगह लोग अपना मतलब साधने में ही लगे रहते
0: हाँ
1: हैं, लेकिन जीवन में रिश्तों की कीमत को साधारणतया बहुत कम लोग समझ पाते हैं
0: बिल्कुल
1: मंदाकिनी जी।
0: बिल्कुल
1: लेकिन जो इस बात को समझ जाते हैं कि रिश्ते हमारी ताकत होते हैं, और इसलिए जरूरी है कि जो भी रिश्ते हमारे साथ हैं और वो हमें मजबूती दे रहे हैं, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि रिश्तों की जो नींव है वो प्यार और त्याग पर ही टिकी होती है। प्यार के धागे में ही रिश्ते पिरोए जाते हैं, और त्याग से उन्हें हम प्रगाढ़ता देते हैं, मजबूती देते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: सही कहा। और अपने से बड़ों के साथ अगर हमारे रिश्ते हैं तो विनम्र होने चाहिए, और विनम्रता ही हमारे जीवन

0: पथ पर आगे हमें ले जाती है।
1: जी
0: अहंकार और अक्कड़ से भरा जो व्यक्तित्व होता है वो कभी भी रिश्तों को सही ढंग से नहीं निभा पाता चंचल, और
1: हाँ
0: इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ कोई रहना भी नहीं चाहता, और क्या होता है धीरे धीरे वो व्यक्ति अकेला रह जाता है।
1: लेकिन हम अपने लिए अगर मान सम्मान चाहते हैं ना मंदाकिनी जी, तो सभी जो भी हमें मिलते हैं, बड़े हैं छोटे हैं, सबके साथ सरल सहज रहने की कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए। जो जैसा है बस उसे वैसे ही अगर हम स्वीकार कर लें, उसके साथ अपना तालमेल बिठा लेते हैं, तो अगर विपरीत स्वभाव वाला भी कोई व्यक्ति है उसके साथ भी हम सामंजस्य बिठा सकते हैं, और ऐसा जब होगा तो कभी भी मुश्किलें आएंगी ही नहीं हमारे जीवन में।
0: बिल्कुल सही कहा। परिवार के साथ हम जिन रिश्तों से जुड़े होते हैं वो तो हमें जन्मजात मिलते हैं, मतलब वो भगवान की देन है, ऐसा हम मानते हैं,
1: हाँ
0: ठीक है। और उनमें कोई बदलाव भी नहीं हो सकता, भाई माता पिता हैं, भाई बहन हैं, ये हमारे
1: जी
0: रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं। बदलाव लाना है तो अपने स्वभाव में लाना होता है, और प्रेम पूर्ण होकर संबंधों को निभाने का जो प्रयास है वही आपके जीवन को खुशियों से भरता है।
1: बिल्कुल। और एक सफल और संतुष्टिदायक जीवन अगर जीना है तो रिश्तों को मजबूत बनाना भी जरूरी हो जाता है हम सबके लिए। विश्वास, संवाद, सम्मान, सहानुभूति, प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देकर हम सार्थक संबंध बना सकते हैं और उनको हमेशा के लिए कायम भी रख सकते हैं, और यही व्यवहार हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को समृद्ध करने में भी मंदाकिनी जी
0: सहायक
1: बहुत
0: होते
1: मदद होता
0: हैं,
1: है।
0: बिल्कुल।
1: दोस्त बनाने की कोशिश हम जरूर करें, लेकिन अच्छे दोस्त बनाने पर ध्यान दें, क्योंकि दोस्त हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं और वो हमारे बहुत बड़े राजदार भी होते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ऐसे दोस्त चंचल बहुत कम मिलते
1: जी
0: हैं। ज्यादातर लोग दोस्ती करते तो वह कहते हैं भी हमारा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन जब आप उनसे दोस्ती करते हैं तो वही आपके साथ क्या करते हैं ये हम
1: बिल्कुल
0: कह नहीं सकते हैं। रिश्ते जो होते हैं हमारे अंदर की अच्छाई या बुराई को उजागर करके हमें बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, और इसीलिए किसी भी नए रिश्ते में कदम रखते समय बस थोड़ा सा सावधानी जरूरी होती है।
1: बिल्कुल। हमारे आसपास परिवार के लोग जो भी होते हैं, ये इनके साथ हमारे रिश्ते बहुत भावनात्मक होते हैं, और ऐसी दुनिया में सच्चे संबंध से लेकर तेजी से ये जो रिश्ते हैं मूल्यवान होते जा रहे हैं। मजबूत रिश्ते बनाने की कला में जो महारत हासिल करनी है अगर आपको, तो भाई आपके अंदर प्यार होना बहुत जरूरी है।
0: सबसे बड़ी बात है कि आप प्यार दें, सम्मान दें, विश्वास दें, है ना। और इसके अलावा मजबूत रिश्ते सुखी और संतुष्टिपूर्ण जीवन की आधारशिला माने जाते हैं। चाहे अगर हम व्यक्तिगत बात करें जैसा कि आपने कहा, या व्यावसायिक स्तर पर बात करें, अगर हमारे व्यवहार में कड़वाहट है तो कोई भी हमें पसंद नहीं करेगा।
1: अब देखो ना, हमारे सुनने वालों का एक संदेश मैं पढ़कर सुनाती हूँ। ये लिखते हैं कि रिश्तों की मजबूती सफल और संतुष्ट जीवन का वास्तविक आधार है। मजबूत रिश्ते जीवन में भावनात्मक सुरक्षा, मानसिक शांति, कठिन परिस्थितियों में संबल प्रदान करते हैं। अकेले कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। सार्थक और गहरे संबंध ही जीवन को सही मायने में खुशहाल बनाते हैं। सफल जीवन में मजबूत रिश्तों की मानसिक चुनौतियां और उतार चढ़ाव के समय परिवार दोस्तों के साथ तनाव करने में मदद करता है। अच्छे रिश्ते आपको नई सीख, दृष्टिकोण और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं और आपके व्यक्तिगत रूप से आपको बेहतर बनाते हैं।
0: बिल्कुल। वहीं एक श्रोता ये भी लिखते हैं चंचल कि रिश्ते जो हैं जीवन की सबसे अनमोल पूंजी होते हैं। धन, पद और प्रतिष्ठा जीवन को सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन सच्ची खुशी और मानसिक संतोष रिश्तों की मजबूती से ही प्राप्त होता है। परिवार हो, मित्र हो, समाज हो, इनसे जुड़े जो रिश्ते हैं वो हमारे जीवन को प्रेम देते हैं, विश्वास देते हैं और अपनत्व से भर भी देते हैं। तो ये जो रिश्ते हैं हमें कठिन समय में संबल देते हैं और सफलता के क्षणों को और अधिक आनंदमय बना देते हैं। इसलिए रिश्तों को समय दें, उन्हें सम्मान दें, प्रेम से सींचे, क्योंकि रिश्तों की मजबूती ही सफल और सुखी जीवन का सच्चा आधार होती है।
1: और भाई बातें तो भी बहुत सारी करनी है, संदेश भी पढ़ने हैं, लेकिन साथ में गीत सुनते हुए आगे बढ़ते हैं।
0: चलिए

0: तो देखा आपने कितनी इल्तिजा कर रही थी कि दूरी मत होना, दूर नहीं होना, और ये रिश्ते हमें निभाने हैं, है ना।
1: और रिश्तों में ही तो कई बार हम प्यार से सोना वगैरह भी कहते हैं।
0: वही मैं कहने वाली थी, कितना प्यार से हम किसी को कहते हैं ओ मेरे सोना रे, है ना, ये प्यार है। और ये रिश्ता बना रहे उसके लिए हम इस तरह का भाव रखते हैं मन में। तो एक श्रोता लिखते हैं चंचल कि रिश्तों की मजबूती किसी इमारत की नींव की तरह होती है, जो दिखती तो नहीं है पर सब कुछ उसी पर टिका होता है। रिश्तों में संवाद के दौरान बोलने से ज्यादा सुनने पर फोकस करना पड़ता है, तर्क वितर्क करने पर बहस की स्थिति बन जाती है। जबरन अपनी बात मनवा लेना किसी रिश्ते की जीत नहीं होती, वो बात अपनी पसंद दूसरे पर थोपना भी नहीं होता। रिश्तों में बहुत सी गलतफहमियां बन जाती हैं जो चुप्पी से लंबे समय तक रह सकती हैं, उन्हें बातचीत और सहमति से हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। किसी में सामने वाले की अच्छाइयों के साथ कुछ छोटी छोटी कमियां भी होती हैं, उसे स्वीकार करें, माफी मांग लेना, माफ कर देना, वो ज्यादा अच्छा होता है।
1: और यही बात हमारे श्रोता ने पहले भी लिखी थी, जो जैसा है वैसे अगर उसे स्वीकार कर लिया जाए तो रिश्तों में कहीं कोई बनावट नहीं होती या कहते हैं कि तनाव नहीं रहता। ये चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। इसी तरह से हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भाई मेरे जीवन का आधार मेरी धर्म पत्नी है और उनके आने से दो कलियां मेरे जीवन में खिली और पैरालिसिस होने पर भी उन्होंने मेरा सारा साथ दिया और सहारा बनकर पूरे परिवार को संभाल लिया। आज उसी वजह से मैं स्वस्थ हो सका हूं और इसीलिए कहते हैं कि

0: ही समय में जीवन साथी बनी वो मेरी और जीवन का वो आधार है।
1: क्या
0: क्या
1: बात
0: बात
1: है,
0: है,
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसके लिए हम आपने जो आपकी धर्म पत्नी है उन्हें सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मजबूत रिश्ते एक सुखी और सफल जीवन गहरे में और आत्मीय संबंध जीवन के तनाव को कम करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। जहाँ एक और अकेला व्यक्ति संघर्षों में टूट जाता है, वहीं मजबूत पारिवारिक और सामाजिक संबंध उसे चट्टान जैसा सहारा देते हैं।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये चट्टान और मजबूत होगी अगर आप उसे प्यार से हमेशा सींचते रहेंगे।
1: बिल्कुल
0: इसी तरह से हमारे एक अन्य श्रोता का संदेश है कि रिश्तों की मजबूती हमारे लापरवाह होने पर कमजोर पड़ जाती है। मैं स्वयं के अनुभव से ये बता रहा हूँ कि नौकरी में रहते हुए हम कभी बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे पाए, माँ के संरक्षण में ही रहे तो सब अपने मन के हो गए। जब घर आते तो सब सामान्य दिखते थे लेकिन करते वो अपने मन की थे। एक ने तो बीए तक कर लिया, जूनियर हाई स्कूल खत्म कर दिया है उसने, दूसरे ने, और आज बुढ़ापे में घर में पड़े उन दिनों की ढिलाई का परिणाम हम भुगत रहे हैं। अनुशासन जब सिखाना चाहिए था जब सिखाया नहीं गया, और अब वो सब अपने अपने परिवार में मस्त हैं। पत्नी रही नहीं तो अब सब होते हुए भी सारे रिश्ते बेमानी से लगते हैं और बस मुश्किल के दिन उनके गुजर रहे हैं। तो कई बार हमने जब अगर रिश्तों पर हम ध्यान नहीं दे पाते तो सिर्फ ये अफसोस और काश हमारे जीवन में रह जाते हैं। इसीलिए समय पर वो बच्चों को जो हम कहते हैं संस्कार देना, या बच्चे जो है ना हमारे व्यवहार से ही सीखते हैं,
1: बिल्कुल
0: तो सबसे अच्छा तरीका यही है आप अपने व्यवहार में वो सारी अच्छाई या
1: बच्चों को दें,
0: जी
1: बिल्कुल, ताकि बच्चे भी बड़े होकर वही आपको दें, है ना।
0: जी
1: ये तो है ही कि टिट फॉर टैट होता ही, अगर आपने अपने माता पिता को दुख दिया है तो आपके बच्चे भी फिर आपको बड़े होकर दुखी देंगे, ऐसा माना जाता है। क्योंकि
0: जी
1: उन्होंने जो देखा है वही उनके मन में, उनके जो बीज है भीतर वही तो
0: हाँ
1: उत्पन्न हुआ है ना, वही फलता फूलता है। इसलिए
0: जी
1: हमेशा खुद को, जब तक हम एक प्रेरणा का स्रोत नहीं बनाएंगे, बच्चों के लिए आइडियल नहीं बनेंगे, बच्चे भी नहीं बन पाएंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि रिश्तों की मजबूती सफल जीवन का सबसे प्रमुख आधार है। ये भरोसा, सम्मान और त्याग के धागों से बंधा होता है, जो न केवल व्यक्तिगत खुशी लाता है बल्कि कड़े समय में भावनात्मक संबल भी प्रदान करता है। गहरा और सच्चा रिश्ता ही सफलता का सफर है, असली प्रेरणा है। समर्पण और प्रेम से सींचा जाना चाहिए सफल जीवन के रिश्तों का महत्व। भावनात्मक स्थिरता, मजबूत रिश्ते तनाव कम करते हैं और मानसिक शांति हमें प्रदान करते हैं। वहीं वो कहते हैं साथ ही कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कुछ सूत्र है, विश्वास, ईमानदारी, जिससे कि हमारे रिश्ते जो हैं टिके रहते हैं। संवाद, मधुर संवाद होने चाहिए, त्याग और स्वीकृति की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे को समय देना चाहिए, समय निकालना चाहिए। अहंकार और अक्कड़ रिश्तों के लिए सबसे बड़े बाधक होते हैं, जो व्यक्ति को अकेला कर देते हैं। और सच्चा वैवाहिक जो जीवन है तभी सफल होता है जब आप दोनों मिलकर रहते हैं।
0: एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिश्ते अगर मजबूत हैं तो जीवन सफल होता है। अगर हमारे जीवन में रिश्ते हमने नहीं कमाए तो समझिए कि जीवन कुछ भी काम नहीं आया और वो रिश्ते सफल नहीं होंगे। इसीलिए अपने रिश्ते अगर हम मजबूत रखेंगे तो किसी भी ज़रूरत के समय वो हमें उनसे मदद मिलेगी, और वो आपके अगर साथ होंगे तो यही आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। और आगे छोटा सा संदेश है हमारे श्रोता का, हम भी रिश्ते निभाते हैं और बनाते भी हैं और ये हमें बहुत अच्छा लगता है, हम परिवार में ही रहते हैं।
1: बिल्कुल, तो अब एक गीत सुन लिया जाए।
0: जी

0: हाँ चंचल, देखिए जीवन से भरी जब आंखें होती हैं ना, तो आपके व्यक्तित्व पे चार चांद लगा देती हैं, है ना। और ऐसे में जब महिलाएं खास तौर से खूबसूरत साड़ियां पहनती हैं, तो फिर उनको तो देखते मन ही भरता नहीं है कि क्या बात है।
1: और आपने बात की भाई किसी खास मौके की, तो शादी एक ऐसा मौका होता है ना जब हमें अपना कल्चर उसे दिखाने का और उसमें लुत्फ उठाने का कोई जब मौका मिलता है तो उसे महिलाएं खास तौर पे बिल्कुल गंवाना नहीं चाहती। शादियों में रीति रिवाज के अलावा सबसे ज्यादा खास होता है पारंपरिक खाना और पारंपरिक पहनावा।
0: पहनावा। और शादी किसी भी लड़की के लिए उसके जीवन के सबसे खास मौकों में से तो एक होता ही है। दूल्हा दुल्हन के कल्चर और रीति रिवाज शादी के मौके को और भी खास बना देते हैं। हर जगह का अपना कल्चर होता है, अपने नियम होते हैं और उनका अपना खास महत्व भी होता
1: तो
0: है।
1: आज हम गुजरात के कल्चर की एक खास साड़ी के बारे में बात कर रहे हैं मंदाकिनी जी, और जिसे कोई लड़की शादी में पहनकर अपने जो भी उसके लुक्स हैं उसे वो और भी ज्यादा निखार सकती है, यानी कि हम बात कर रहे हैं घर चोला साड़ी की।
0: क्या बात है, गठचोला साड़ी इतनी सुंदर लगती है चंचल
1: जी
0: कि पूछो मत। तो गठचोला साड़ियां गुजराती शादियों का बहुत खास हिस्सा है और इन्हें जो खास दुल्हन की साड़ी के रूप में चुना जाता है। गठचोला साड़ी के चेकर्ड ग्रिड में प्रत्येक वर्ग दुल्हन और उसके वैवाहिक घर के लिए आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा माना जाता है।
1: और ये दुल्हन की सुंदरता में चार चांद लगा देती है, तो वहीं इस साड़ी की जो खूबसूरती है और इसकी तरह ही इसका मतलब भी बड़ा खास होता है। घट चोला यानी कि नाम में दो गुजराती शब्दों को मिलाया गया है, घर
0: घर
1: जिसका मतलब होता है
0: घर
1: और चोला इसका मतलब है कि पोशाक,
0: पोशाक। हाँ
1: और दुल्हन अपने पैतृक घर से यानी कि पिता के घर से वैवाहिक घर में जाने को इस चीज के बारे में दर्शाया जाता है। इसका मतलब होता है कि दुल्हन का नया घर और उस चोले को पहनकर ये लड़की उस नए घर में प्रवेश
0: प्रवेश
1: करती।
0: करती है। बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से इस बात को रखा गया है। और वैसे तो घटचोला एक साड़ी होती है, लेकिन आजकल शादियों में इसके दुपट्टे का भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है।
1: और देखिए ना, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि एक छोटे से अंतराल का समय हो गया है। बातें हम
0: बिल्कुल
1: जारी रखेंगे, लेते हैं अंतराल।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूँ आपके साथ चंचल वर्मा
1: और मैं हूँ आपके साथ मंदाकिनी जोशी।
0: बात कर रहे थे हम साड़ी की।
1: बिल्कुल, साड़ियों की बात हो और हम भूल जाएं, ऐसा कभी होता है चंचल? तो हम बात कर रहे थे कि आजकल शादियों में इसके दुपट्टे का भी खूब इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिसे दुल्हन अपने सिर पर ओढ़ती है और ये कॉटन या सिल्क से बना होता है जिस पर जरी का काम किया जाता है। घटचोला साड़ियों में पारंपरिक रूप से जरी की बुनाई के साथ चेकर्ड ग्रिड डिजाइन होता है और अक्सर मोर, कमल, फूल पत्तियां जैसे शुभ चिन्ह भरे होते हैं।
0: जब आपने दुपट्टे का जिक्र किया तो मुझे याद आया, सिर्फ महिलाएं ही नहीं पहन कर सचती संवरती, जब कुर्ता पायजामा मर्द पहनते हैं तो जो हमारे पुरुष साथी हैं ना, वो भी घटचोला का दुपट्टा लेना बड़ा पसंद करते हैं,
1: साइड में रख लेते हैं वो
0: जी।
1: भी। हाँ।
0: और हम बात कर रहे थे साड़ी की, जो आपने बताया चेकर डिजाइन होते हैं, फूल पत्तियों के चिन्ह होते हैं इस पर, और क्योंकि ये एक पारंपरिक विवाह में पहने जाने वाली साड़ी है तो इसमें वर्गों की जो संख्या है अनुष्ठानिक रूप से वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। वर्गों की संख्या 9, 12, 92 के गुणांक में होती है और ये पहले कपास से बनी होती थी लेकिन अब रेशम का भी इसमें उपयोग किया जाने लगा है।
1: हाँ, हालांकि घटचोला साड़ी में क्या है कि बांधनी साड़ियों की जैसा मिश्रण होता है चंचल, जिसमें घटचोला के जरी ग्रिड पैटर्न के भीतर बांधनी टाई डाई को शामिल भी किया गया है।
0: घटचोला बनाने की शुरुआत गुजरात के खंबात जिले में हुई थी और तब से लेकर आज तक गुजरात में साड़ियों, ये जो साड़ी है वो शादियों में बहुत अहम हिस्सा मानी जाती हैं। इस साड़ी की सबसे खास पहचान है ग्रिड पैटर्न और ये साड़ियां पारंपरिक रूप से विवाह जैसे खास अवसरों पर ही पहनी जाती हैं। इन साड़ियों में गुजरात की पारंपरिक खास साड़ी है ये, खासतौर पर जामनगर, राजकोट इलाकों में इनका बहुत ही ज्यादा चलन देखने मिलता है।
1: बिल्कुल, और सास की तरफ से बहू को जब आशीर्वाद दिया जाता है ना, तो घटचोला दूल्हे के परिवार की तरफ से दिया जाता है, जिसे ओढ़कर दुल्हन अपने नए घर में प्रवेश करती है और ये नए परिवार की स्वीकृति और आशीर्वाद का प्रतीक भी होता है। और जब दुल्हन अपने नए घर में स्वागत के लिए पानेत्र साड़ी के ऊपर जो है घटचोला साड़ी डालती है, तो इस बात का प्रतीक माना जाता है कि शादी के बाद दूल्हा और उसका परिवार दुल्हन का हमेशा ख्याल रखेंगे।
0: इनमें से बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं ने भी हम तक लिखकर पहुंचाई हैं, उन्हें हम धन्यवाद कहते हैं। और घटचोला जो है वो दुल्हन को अपने सिर और कंधे दोनों पर वो ओढ़कर आती है, जिसे फेरों के समय दूल्हे को के दुपट्टे के साथ में बांध दिया जाता है। ये पति पत्नी के अटूट संबंध और इस जोड़े के बीच के पवित्र रिश्ते और उसकी मजबूती को दर्शाता है, इसलिए भी शादी में इस साड़ी का बहुत
1: महत्व होता है। बिल्कुल, और घटचोला साड़ी एक सदाबहार फैशन है जो कभी फैशन से बाहर नहीं जाता। इसे शादी के अलावा आप दूसरे फंक्शंस में भी पहन सकते हैं। देखा है बहुत सारी महिलाओं को चाव से पहनकर जाती हैं, ज्यादातर लाल है, गुलाबी है, हरा है, पीला है, ये रंग इसमें बेहद खास लुक देता है। और इसके दुपट्टे को लहंगे के साथ भी अलग अलग स्टाइल तरीके से, स्टाइलिश तरीके से हम पहन सकते हैं जो खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं।
0: तो भाई कुछ गाने भी सदाबहार होते हैं साड़ियों की तरह, सुन ले।
1: बिल्कुल, जो हमारे कार्यक्रम में चार चांद लगा देते हैं।

0: कुछ तुम कहो और कुछ हम कहें, यानी बात हम करेंगे अब विश्व साइकिल दिवस की, कुछ हम कहेंगे कुछ हमारे श्रोता तो कह रहे, कुछ नहीं बहुत कुछ कह रहे
1: कहेंगे
0: हैं।
1: बिल्कुल, ही इतना प्यारा विषय है साइकिल, हमारा इतना प्यारा एक ऐसा
0: याद है
1: याद, हमारा अभिन्न मित्र हुआ करता था एक जमाने में, जब हमें
0: जी।
1: पहली साइकिल मिली थी तो आज भी भुलाई नहीं भूलती।
0: और 3 जून को ये दिन हम मनाते हैं और इसका उद्देश्य है लोगों को साइकिल चलाने से जो लाभ होते हैं उसके बारे में जागरूक करना। और ये दिन इसलिए भी खास है मंदाकिनी जी, क्योंकि साइकिल एक ऐसा परिवहन साधन है जो वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद करता है और पर्यावरण को भी बचाने में मदद करता है।
1: बहुत बड़ी बात, और ये परिवहन का एक सबसे सस्ता, सरल और टिकाऊ और सुलभ साधन है चंचल। इसे हर वर्ग के लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन दिनों साइकिलिंग को एक स्वस्थ और किफायती परिवहन विकल्प के रूप में भी प्रस्तुत किया जा रहा है। साइकिल चलाना सामाजिक समावेशन और शांति की संस्कृति को बढ़ावा भी देता है।
0: विश्व साइकिल दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अप्रैल 2018 में मनाने की घोषणा की थी और ये दिन साइकिल के महत्व पर बहुत सारी बातें हमें बताता है। और हम सब भली भांति इस बात को समझते हैं कि साइकिल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है और पर्यावरण के नजरिए से भी अच्छा कदम है, ये हम बता ही चुके
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल सही बात, और इस दिन का समर्थन करने वाले भी मानते हैं कि साइकिल का उपयोग विकास को बढ़ावा देना, बच्चों और युवाओं के लिए शरीर को मजबूत करना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और बीमारियों की रोकथाम करने के साधन का एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
0: अब देखो ना हमारे जो साथी हैं वो क्या लिख रहे हैं, साइकिल कभी मध्यम वर्गीय परिवार की आन बान शान हुआ करती थी। जो साइकिल चलाता था या जिसके दरवाजे पर साइकिल होती थी, समझिए कि वो समाज में एक सम्मानित व्यक्ति हुआ करता था। और
1: बिल्कुल
0: इसी तरह कहानी में कोर्स की किताब भी पढ़ी है हमने, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा साइकिल की सवारी के लेखक
1: हाँ
0: सुदर्शन हैं पंडित बद्रीनाथ भट्ट। इन प्रेरणादायक कहानी में आदर्शवादी संदेश होता था और ये कहानी हास्य से भरपूर है, जिसमें लेखक साइकिल सीखने की प्रबल इच्छा और इसके दौरान उनके द्वारा किए गए मजेदार प्रयासों के बारे में वर्णन करता है। तो अगर किसी ने ये कहानी नहीं पढ़ी है
1: तो
0: तो
1: उसे
0: जरूर
1: पढ़नी
0: पढ़िए
1: चाहिए,
0: जी।
1: बहुत सुंदर जिक्र किया है इन्होंने। वहीं एक श्रोता लिखती है कि जब मैंने पहली बार साइकिल पर कदम रखा तो मेरे मन में धुकधुकी थी, कहीं मैं गिर न जाऊं। संतुलन बनाने की कोशिश में शुरुआती कुछ पलों में हैंडल कांप रहा था और मुझे पैडल मारने में डर लग रहा था। कुछ बार लड़खड़ाने और गिरने के बाद मैंने संतुलन बनाना सीखा। हवा का एहसास जैसे ही मैंने पैडल पर पूरी ताकत लगाई और साइकिल आगे बढ़ी तो चेहरे पर ठंडी हवा का सुखद एहसास था।
0: और हमारे एक अन्य श्रोता का संदेश है कि जब मैंने पहली बार पापा को साइकिल के लिए कहा तो उसके 2 साल बाद मेरी साइकिल आई। यानी कि पहले के माता पिता भी ऐसे होते थे कि तुरंत आपकी फरमाइशें पूरी नहीं करते थे,
1: बिल्कुल
0: सही समय आने पर ही वो ला कर देते थे।
1: बिल्कुल
0: आगे इन्होंने लिखा है कि जब भी पापा से पूछो कब आएगी तो वो कहते एक टायर बन रहा है, फिर कहते हैंडल बन रहा है, फिर कभी कहते कि सीट बन रही है, और इस तरह उन्होंने 2 साल
1: साल निकाल
0: निकाल
1: दिए, कितनी
0: दिए।
1: अच्छी बात है। और
0: जी
1: वहीं आजकल के माता पिता 2 मिनट भी नहीं लगाते, अगर
0: जी
1: बच्चे ने कह दिया मुझे मोटरसाइकिल चाहिए मुझे मोबाइल चाहिए तो 2 मिनट में आ जाता है। एक श्रोता लिखते हैं कि साइकिल की बात चली है तो आपको बता दूं, 1999 में कक्षा 10वीं पास करने पर मेरे को मिली थी, उसकी खुशी मैं बयां नहीं कर सकता। और आज दो दो दुपहिया वाहन है किंतु साइकिल की बात कुछ और ही है।

0: को साइकिल आज भी मैंने संभाल कर रखी है, मैं चली देखो प्यार की गली, ऐसा ये गाना भी सुनना चाहते थे।
1: और भाई ये गाना नहीं सुना कि गाना कोई दूसरा सुनवा देंगे, गाने सभी अच्छे हैं। और संदेश बताइए क्या है।
0: ये लिखते हैं कि एक अन्य श्रोता कि दोपहिया वाहन यानी मोटरसाइकिल तब चला सकते हो जब आप साइकिल चलाना सीख गए हो, मतलब दोपहिया वाहन चलाने से पहले साइकिल चलाना आना जरूरी है। भाई वो तो बेस है आपका, है ना, वो तो सबसे पहले आप नहीं सीखेंगे तो उसके बाद दूसरी चीजों पर जब आप हाथ साफ करेंगे तो आपको डर लगेगा, आप सीख ही नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ ये बात भी होती है चंचल कि साइकिल चलाने के साथ घुटने टूटने का जो है ना, घुटनों में चोट लगने का जो एक सबसे बड़ा नजर आता है, वो उसके लिए तैयार रहना चाहिए।
1: एक और बात बहुत सारे श्रोताओं ने लिखकर भेजी है कि नियमित साइकिल चलाने से हृदय फेफड़े मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद मिलती है और इसी वजह से हृदय संबंधी बीमारियां, मोटापा, गठिया, मधुमेह, कैंसर, बहुत सारी बीमारियों के खतरे को हम कम कर सकते हैं। साइकिलिंग तनाव को भी कम करती है और मानसिक कल्याण को भी बढ़ावा देने में ये सहायक है। तो चलिए अब गाना सुन लें।
0: नहीं, एक मेरे पास बहुत अच्छा मैसेज आया है,
1: तो पढ़िए ना।
0: हाँ, ये लिखते हैं कि मेरे लड़के ने पूरी पढ़ाई साइकिल कॉलेज लेकर जाकर की है और इस साल फाइनल पढ़ाई होगी, अभी भी वो साइकिल चलाता है।
1: क्या बात है।

0: हाँ तो चंचल, वक्त तो तब गुजरेगा ना जब आप वक्त का ध्यान रखेंगे, और कैसे ध्यान
1: जी
0: रखेंगे कि आपके पास घड़ी होगी। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि हम लोग जब हाई स्कूल पास करते थे तो लड़कियों को हाथ की घड़ी दिया करते थे हमारे माता पिता, और हम लड़कों को साइकिल मिला करती थी।
1: तो भाई ये भी एक तरह का नियोजन है, यानी कि प्लानिंग है
0: हाँ
1: कि लड़कियों को क्या देना है, लड़कों को क्या देना है। उस समय पहले की अगर बात जब चल रही है ना, तो लड़कियों को भाई वाहन चलाते समय कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, उन्हें थोड़ा नाजुक समझकर इस तरह के उपहार नहीं दिए जाते थे। और लड़कों को क्योंकि बाहर जाकर ही सारे काम करने हैं।

0: साइकिल दे दी जाती थी, लेकिन
1: दुपहिया वाहन या मोटरसाइकिल का इतना फैशन नहीं था।
0: हाँ, आज उल्टा है चंचल, आज लड़कियों को कमजोर नहीं मानते हमारे माता पिता भी, और उन्हें यहाँ तक कि चार पहियों वाली गाड़ी भी दिलाने में कोई परहेज नहीं करते हैं।
1: और बिल्कुल इस बात का नियोजन भी अब सब माँ बाप करते हैं। और नियोजन पर ही बात हो रही है, नियोजन का मतलब होता है योजना बनाना या फिर प्लानिंग करना। और दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है शब्द, मतलब बहुत सारे शब्द इसमें, इसके जो अन्य शब्द हैं योजना, आयोजन, प्रबंध, व्यवस्था, रूपरेखा या फिर रणनीति,
0: इस अर्थों में भी इनको समझा जा सकता है इन शब्दों से भी। और नियोजन एक प्रबंधन प्रक्रिया है जिसमें भविष्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक यानी जरूरी कार्यों और संसाधनों का निर्धारण किया जाता है, और ये प्रक्रिया लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी काम करती है।
1: बिल्कुल, नियोजन में की जो प्रक्रिया है बहुत सारे चरण शामिल होते हैं, जिसमें विकल्पों का मूल्यांकन, योजना का चयन, उसका क्रियान्वयन, और नियोजन में भविष्य में आने वाले जो भी जोखिम है या अनिश्चितताएं हैं उनका पहले से ही एक अनुमान निकालकर क्या समाधान हो सकता है, इसकी तैयारी की जाती है।
0: बिल्कुल, और नियोजन में किसी भी पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य की एक रूपरेखा तैयार की जाती है। इसे हम यूं भी समझ सकते हैं कि ये निर्णय लेने की एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो तय करती है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है।
1: इसीलिए हमारे श्रोता लिखकर हमें बता रहे हैं कि नियोजन प्लानिंग का सामान्य अर्थ योजना बनाना है। ये किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने की बौद्धिक प्रक्रिया होती है। इसमें यह तय किया जाता है कि काम कब करें, कैसे करें, कहां करें, किसके द्वारा किया जाएगा, और उपलब्ध साधन का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित कर लेना ताकि जो लक्ष्य है उस तक आसानी से पहुंचा जा सके। ये सब वैसा ही है जैसा हम अपने घर का बजट बनाया करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, और अगर सरल शब्दों में हम इसे समझें तो वर्तमान और भविष्य के बीच की खाई को कम करना भी नियोजन है, और ये तय करना कि आने वाले समय में हमें किस दिशा में काम करना है। किसी स्पष्ट लक्ष्य को ध्यान में रखकर जो योजना बनाई जाती है वही नियोजन है, और ये योजना वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य के अनुमानों के आधार पर बनाई जाती है।
1: और बिल्कुल ममता मंदाकिनी जी, समय, धन, उपलब्ध संसाधन, इन सब का बेहतर उपयोग भी जिस तरह से किया जाएगा ये नियोजन ही बताता है हमें। जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं तो उनमें से किसी सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना भी नियोजन का मुख्य हिस्सा होता है।
0: और नियोजन का यानी जो है विभिन्न तरीकों में से जो सबसे उपयुक्त और प्रभावी मार्ग का चयन करना वही नियोजन कहलाता है।
1: तो ये भी एक नियोजन है ना कि बातों के बाद गाना सुनवाना है।

0: बहुत सुंदर गीत था
1: बहुत सुंदर गीत था, और सुनने के बाद एक मन में अलग सा
0: जी
1: नशा आ गया है।
0: जी
1: और चंचल, हम बात कर रहे थे ना कि भाई आजकल गर्मी का मौसम है, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या सब्जी बनाएं, क्योंकि महिलाओं की खास तौर से ये सबसे बड़ी परेशानी होती है। तो
0: और वो
1: हमारे,
0: इसलिए होती है क्योंकि बच्चे बड़े चूजी होते हैं, वो बहुत सारी सब्जियां खाने के लिए मना कर देते हैं। जब भी उन्हें बोलो टिंडे की सब्जी बनेगी तो उनका मुंह बन जाता है, लौकी बनाओ तो उसे वो खाना पसंद नहीं करते। तो कितने कितने जतन करती हैं महिलाएं कि वो सब्जियां उनको
1: खिला दी जाए किसी भी तरह से।
0: ताकि उनका पोषण
1: लेकिन
0: मिले।
1: लेकिन तुम मुझे माफ करना, बच्चों को तुम बहुत ज्यादा बदनाम कर रही हो, है ना। देखा जाए तो हमारी सखियों में से भी कुछ सखियां ऐसी हैं जो हर तरह की सब्जी खाना पसंद नहीं करती हैं।
0: तो भाई ऐसे में बहुत अच्छा आपके पास एक विकल्प है कि बेसन की तरह तरह की सब्जियां आप बना सकती हैं। उसके लिए बेसन, सिंधी बेसन की टिक्कियों की सब्जी, इसके बारे में हमारे श्रोता ने लिखकर बताया है कि इसके लिए सबसे पहले बेसन को कम पानी से टिक्कियां बनाना है। इसमें अनारदाना और हरा धनिया भी डालते हैं। फिर तवे पर बहुत कम तेल में इनको सेका जाता है। प्याज लहसुन अपनी इच्छा के अनुसार, अदरक हरी मिर्च, इन सबको डालकर आप पेस्ट बना लीजिए। एक अच्छी स्वादिष्ट सी ग्रेवी बनाना है, उसमें नमक लाल मिर्च स्वाद के अनुसार डाल लीजिए। आप अन्य मसाले भी स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। थोड़ा गरम मसाला डालकर बेसन की टिक्कियों को डालकर थोड़ी सी आंच पर इसे पकाना है और सिंधी बेसन की टिक्कियों वाली सब्जी तैयार हो जाती है।
1: बहुत स्वादिष्ट सब्जी होती है ये। हमारी एक सहेली थी, वो सिंधी थी, उनके यहाँ मैंने ये सब्जी खाई भी है।
0: जी
1: हाँ, वही एक श्रोता लिखती है कि बेसन की चीले वाली सब्जी, क्या बात है। बेसन को नमक हल्दी अदरक मिर्ची का पेस्ट के साथ चीले की तरह घोल लें और तवा पर चिली को सेक लें, मतलब चिली को सेक लें, इस दोनों तरफ से फोल्ड कर लें, फिर इन्हें चाकू से काट के टुकड़े के रूप में बना लें। ग्रेवी के लिए धनिया पाउडर पिसा हुआ, पीला सरसों, लहसुन, जीरा, मिर्च, इन सभी को बारीक पीस लें। कढ़ाई में तेल डालें, राई का तड़का दें, बारीक कटा प्याज भून लें, पिसें पिसे हुए टमाटर डाल दें, मतलब अगर आपने टमाटर को भी पीस लिया है। साथ ही मसाले, जो भुने हुए मसाले हैं, उनकी ग्रेवी तैयार होने पर बेसन के टुकड़ों को डाल दें, 5 मिनट तक इसे पकाएं। स्वादिष्ट जो है सब्जी आपकी तैयार है, और बहुत सारे लोग इसे शाकाहारी मछली भी बोलते
0: क्या बात है।
1: हैं।
0: तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।

0: हाँ तो जल जल रहे ना रहे, हम यूं ही महकते रहेंगे और ये कार्यक्रम
1: जी
0: यूं ही चलता रहेगा। और अब ही सखी सहेली से हमें इजाजत लेनी होगी क्योंकि
1: जी
0: वक्त हमें और इजाजत नहीं दे रहा है।
1: जी तो
0: तो कार्यक्रम
1: चलिए,
0: समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी
1: और
0: और
1: चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर गायत्री आहूजा को, जो अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांग जन संस्थान की विभागाध्यक्ष है, यानी कि अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज। ये संस्था देश भर के दिव्यांग जनों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है। ऐसे छात्र जो श्रवण बाधित हैं और बोलने में समर्थ नहीं है, उन बच्चों को शिक्षा देना, उन्हें सिखाना कितना मुश्किल होता है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है, ये सब कुछ बताएंगे डॉक्टर गायत्री आहूजा। विविध भारती के स्टूडियो में डॉक्टर गायत्री, हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और विविध भारती से जुड़ना मुझे लगता है काफी सम्मान की बात होती है, सो थैंक यू सो मच। और ये इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आपने मुझे बुलाया है।

0: थैंक यू सो मच। और ये एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं होती है, तो इस संस्था के बारे में आप जानकारी दीजिए सबसे पहले, और उसके बाद बताइए कि श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा बाकी बच्चों से किस तरह से अलग होती है। तो मेरे ख्याल से एक साथ दो सवाल हो गए।
1: कोई नहीं, अलिया वर्जन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, और जहाँ पे मैं वहाँ पे काम करती हूँ ये हेडक्वार्टर्स है, और हेडक्वार्टर्स से जुड़े हुए रीजनल सेंटर्स भी हैं, जैसे सिकंदराबाद है, कोलकाता है, नोएडा है। हमारे अंतर्गत कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर्स भी हैं, जैसे कि अहमदाबाद, गोवा एंड छतरपुर, नागपुर एज वेल। हम सारी संस्था जो हैं स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज पे काम करती हैं, पीडियाट्रिक से लेके जेरियाट्रिक पॉपुलेशन तक हम डील करते हैं। मतलब आप अगर हमारी संस्था में आएंगे तो आप बिल्कुल छोटे से छोटा बच्चा देखेंगे, एज वेल एज 80 ईयर अबाव लोग भी देखेंगे। तो उन सब की हम श्रवण की जांच, स्पीच की जांच, जो हेडक्वार्टर्स है मुंबई, सिकंदराबाद, नोएडा एंड कोलकाता में, स्पीच एंड हियरिंग से जुड़ी हुई करते हैं। पर जो सीआरसीज हैं, जैसे अहमदाबाद हो गया या नागपुर हुआ या छतरपुर हुआ, वहाँ पे हम सारे डिसेबिलिटीज के साथ डील करते हैं। तो ये बेसिक हमारा काम है, जहाँ पे हम आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, इंटरवेंशन भी करते हैं। सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी करते हैं।
0: अच्छा,
1: हमारे अंतर्गत डिप्लोमा के कोर्सेज, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी प्रोग्राम्स, साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलते हैं। पेरेंट्स के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाते हैं, जिससे वो खुद एम्पावर हो सके। एंड पेरेंट्स के लिए जो प्रोग्राम्स हम करते हैं वो मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। बहुत बार हम इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज के लिए भी कार्यक्रम करते हैं कि बैंकिंग किस तरीके से करना चाहिए या इंग्लिश स्पीकिंग किस तरीके से करना चाहिए, वॉट एवर स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हम चलाते हैं, वो भी हम बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते हैं। तो रेंज बहुत सारी है कि जहाँ पे हम बच्चे से लेके सीनियर सिटीजन तक के लिए हम काम करते हैं।
0: जी,
1: ये हो गया
0: और
1: पहला सवाल,
0: हाँ,
1: राइट?
0: और फिर कितना अंतर है एक सामान्य बच्चे को पढ़ाना, शिक्षा देना, और श्रवण बाधित जो बोलने में समर्थ नहीं है उनको सिखाना, कितना कठिन होता है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है?
1: अब जो बच्चा एडुकेशन के लिए स्कूलिंग सिस्टम में जाता है, एक सामान्य बच्चा, ठीक है, सामान्य बच्चे के जो गोल्स होते हैं एडुकेशन के, वो सेम गोल्स हियरिंग इम्पेयर्ड या श्रवण बाधित बच्चों के भी होते हैं। ओके, जनरल गोल्स सेम रहते हैं। बट आप ऐसा सोचिए कि एक बच्चा है जिसको सुनाई नहीं देता है, ठीक है, अब उसको सुनाई नहीं देता है हियरिंग लॉस की वजह से, उसके तीन चीजें बेसिकली इम्पैक्ट होती हैं, स्पीच वाचा में प्रॉब्लम, लैंग्वेज में इश्यूज एंड कम्युनिकेशन में इश्यूज। ओके, तो एक चीज तीन चीज से जुड़ी हुई है। अब ऐसे बच्चों को जब हम एडुकेट करते हैं तो अगेन इसके अंदर दो पहलू आ जाते हैं। एक ग्रुप जहाँ पे हम हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट, लिसनिंग डिवाइसेस से हम सिखाते हैं, जहाँ पे हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चा सुने और बात करे। फिर एक ग्रुप है जहाँ पे हम साइन लैंग्वेज के माध्यम से हम पढ़ाते हैं। तो जनरल गोल्स तो आपके हो गए कि नॉलेज का डेवलपमेंट करना है, स्किल्स को डेवलप करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। ओवरऑल डेवलपमेंट बेसिकली मतलब आपका बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट तो हो गए जनरल गोल। पर जब मैं स्पेसिफिक गोल की बात करती हूं तो स्पेसिफिक गोल में आ गया मेरा इस बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट करना, स्पीच डेवलपमेंट करना, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट करना। अब कम्युनिकेशन भी कितनी चीजों से जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम साथ में बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, पर मेरी उंगलियां भी चल रही है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन भी हो रहे हैं, मेरे आंख वाँख भी, यू नो, इट्स गोइंग अप एंड डाउन, एंड बहुत सारा बॉडी लैंग्वेज है एंड स्माइल है, और जो मैं महसूस कर रही हूं वो मैं बता सकती हूँ, ठीक है। नाउ यू इमेजिन अ चाइल्ड जिसको, जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास भाषा नहीं है। तो कम्युनिकेशन इज सच अ वेरी बिग इंपॉर्टेंट रोल। कम्युनिकेशन करने के लिए भाषा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाषा नहीं है तो वो समाज में किस तरीके से उठेगा बैठेगा, वो समाज में इंटरैक्ट कैसे करेगा और पार्टिसिपेट कैसे करेगा, वो जो महसूस करता है या करती है वो किस तरीके से व्यक्त करेगा। तो जो एडुकेशन है, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए जो एडुकेशन है, वो ये सारी पहलुओं को देखकर हम उसका एडुकेशन का विकास करते हैं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एडुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट इज पेरेंट्स पेरेंट्स का एम्पावरमेंट करना। तो पेरेंट्स के लिए हम बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं।

0: कि बच्चे को हियरिंग एड किस तरीके से लगाना है या कॉकलियर इम्प्लांट है तो किस तरीके से लगाना है, अगर हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट में कुछ भी रिपेयर्स हुए तो उसको सिंपल रिपेयर्स किस तरीके से करने हैं, और अगर बच्चा हियरिंग एड और कॉकलियर इम्प्लांट नहीं लगाता है, सांकेतिक भाषा से बात करता है, इशारों में बात करता है, इशारे इज अ वेरी सिंपल टर्म, हम उसको सांकेतिक भाषा बोलते हैं, और सांकेतिक भाषा में अगर बात करता है या करती है तो पेरेंट्स को भी आनी चाहिए सांकेतिक भाषा, तब तो कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट होगी। तो बहुत सारे एडिशनल गोल्स आ जाते हैं जब हम एडुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की बात करते हैं। तो
1: यहाँ पर एक गाना सुनते हैं फिर और बातें करते हैं, कौन सा गाना सुनवाए?
0: मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, ये गाना बहुत पसंद है,
1: ये धरती ये नदिया
0: और विविध भारती और अलिया वर्जंग।
1: क्या बात है, सुनते हैं।
2: बड़े अच्छे लगते हैं
3: क्या

0: प्रोटेक्टिव हो जाते हैं या तो बिल्कुल भी प्रोटेक्टिव नहीं होते हैं. बैलेंस्ड अप्रोच कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिसिंग हो जाता है. तो वो भी उनको बताना होता है कि किस तरीके से एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना है, ना कि यू नो ओवर हो या अंडर हो. यू हैव टू कंसिडर योर चाइल्ड, एक्सेप्ट चाइल्ड, उसको उतनी ही रेस्पेक्ट दें जितनी बाकी बच्चों को दी जाती है. उसे ऐसा नहीं लगे कि हाँ मैं कुछ अलग हूं इसलिए मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं. तो उसे भी अपनापन लगना चाहिए और मैं इस ही घर का एक हिस्सा हूं ये उसे समझना बहुत जरूरी है. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पेरेंट्स को एडुकेशन के प्रोसेस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए. अगर इन्वॉल्व हुए तो यस द चाइल्ड कैन प्रोसीड या प्रोग्रेस आराम से. इसलिए हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कोर्सेज करने के लिए, चाहे डिप्लोमा हो या बैचलर्स हो, जिनके खुद के बच्चों को या तो हियरिंग लॉस हो या कोई कंसर्न हो, वो खुद भी आते हैं. क्योंकि जब तक पेरेंट्स को नहीं पता चलेगा कि इन बच्चों में क्या कंसर्न्स हैं तो वो बच्चों की डेवलपमेंट में कैसे भागीदारी ले सकते हैं. स्कूल्स के साथ जुड़े रहें लगातार या फॉलो अप ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के साथ करते रहें. टीचर्स के साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और अगर आपका बच्चा सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करता है तो आप खुद भी सीखें सांकेतिक भाषा, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. बहुत बार ये देखा गया है कि क्या होता है कि पता तो चल जाता है कि बच्चे को हियरिंग लॉस है, ओके, बट माँ या फादर बाकी फैमिली मेंबर्स को बताते ही नहीं है कि बच्चे को कुछ इशू है.
1: रिश्तेदारों को
0: और बाकी लोगों को बताते ही नहीं है, डर के मारे, शर्म के मारे कुछ बताते ही नहीं है. अब इससे क्या होता है, पहचान तो हो गई कि मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ तो इश्यूज है, कंसर्न्स है, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए. बट इंटरवेंशन बहुत टाइम के बाद होता है, 4-5 साल के बाद हो जाता है. तो ये जो गैप है आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन का, ये बढ़ते जाता है. ये कहीं ना कहीं कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो उनका माइंडसेट कैसा है पेरेंट्स का, दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे तो यस द चाइल्ड कैन प्रोग्रेस. ऐसा नहीं है कि चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट आगे प्रोग्रेस नहीं करते हैं. मेरा खुद का एक स्टूडेंट है जो PhD कर रहा है, सुनील सहस्त्रबुद्धे, वो खुद PhD कर रहा है. शिवाजी पांडा सर हैं, काफी बड़े रोल मॉडल हैं, उनकी तो PhD हो भी चुकी, उन्होंने खुद का अपना एक स्कूल सेटअप बनाया है उड़ीसा में. सो देर आर मैनी who are having hearing loss और एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं. हम hearing loss के क्षेत्र में डॉक्टर मदन वशिष्ठ का नाम लेते हैं हमेशा. वो खुद भी hearing impairment है उनको है, and Gallaudet University में डीन रह चुके हैं. So it is possible, everything is possible, but timely और appropriate support system लेके अगर हम काम करें तो थिंग्स आर पॉसिबल.
1: तो किन किन क्षेत्रों में ये बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, ज्यादातर कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर इनके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है?
0: देखिए, अभी जैसे मैंने कहा कि हियरिंग लॉस की वजह से लैंग्वेज, स्पीच और कम्युनिकेशन अफेक्टेड है, ओके. सो अगर ये तीन चीज आपने सही, टाइमली, अप्रोप्रिएटली डेवलप कर दी तो बच्चे को कोई कंसर्न्स, इश्यूज नहीं आएंगे. हमारे पास ऐसे भी चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयर्ड हैं जो BSLP जिन्होंने कर चुके हैं, ओके, ऑडियोलॉजी का कोर्स कर चुके हैं, ऑडियोलॉजिस्ट हैं अभी, ओके. एडुकेशन के क्षेत्र में तो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत जगह पे यू विल फाइंड जो डेफ टीचर्स बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं बच्चों के साथ. टीचर के क्षेत्र में मैंने बहुत सारे देखे हैं. प्लस यू विल फाइंड मेनी पीपल इन IIMs, IITs ऑल्सो यू विल फाइंड. तो अगेन एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू आइडेंटिफिकेशन, इंटरवेंशन का गैप कम करना है एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर हम काम करें तो यस थिंग्स आर पॉसिबल. प्लस टीम अप्रोच में काम करना बहुत जरूरी है. टीम अप्रोच का मतलब पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, जो भी उनके थेरेपिस्ट होंगे या साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हो गए, इन सबको साथ में लेकर अगर वो आगे बढ़ेंगे तो यस थिंग्स आर पॉसिबल.
1: बिल्कुल. अच्छा डॉक्टर गायत्री, हमें बताइए कि कैसे पहचाने कि किसी बच्चे को हियरिंग लॉस है, मतलब वो सुनने में असमर्थ है, प्रारंभिक अवस्था में कैसे पहचान होती है?
0: ओके, फॉर सिंपल एग्जांपल, अगर मैं फैमिली सेटअप पे बात करूं तो आप जोर से आवाज बुला रहे हैं बच्चे का, राहुल राहुल राहुल, बच्चा प्रतिसाद नहीं करता है. आपने चिल्ला के बात किया तभी भी प्रतिसाद नहीं कर रहा है, देयर इज नो चेंजेस इन एक्सप्रेशन. हमें जब आवाज आती है तो हम उस तरफ देखते हैं, ओके, जहां से आवाज आती है हम उस तरफ देखते हैं, तो बच्चा वहां पे रेस्पॉन्ड नहीं करता है। अगर बहुत जोर से कोई आवाज आती है तो हम नॉर्मली दचकते हैं, वी स्टार्टल, ओके। अगर बच्चा स्टार्टल नहीं करता है या दचकता नहीं है, तो दीज आर सर्टन साइंस जहां पे बच्चा रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। अगेन घर की घंटी बजी है एंड द चाइल्ड इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि देयर इज अ डोरबेल। तो एनवायरमेंटल साउंड्स को अगर वो रेस्पॉन्ड नहीं करता है या फाइन साउंड्स जैसे स्पीच साउंड्स को वो रेस्पॉन्ड नहीं करता है, तो यस द चाइल्ड कैन हैव इश्यूज। बहुत बार क्या होता है कि हियरिंग लॉस उतनी मात्रा पे नहीं है, माइल्ड, मॉडरेट या मॉडरेटली सीवियर है, तो उन बच्चों को पहचाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे है, पर उसके लिए जांच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको रेगुलर स्कूल्स में मिल जाएंगे, जनरल स्कूल्स में मिल जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे बच्चे को लॉस तो है बट आप अगर थोड़ा जोर से बोलते हो तो बच्चा रिस्पॉन्ड कर लेता है। बट व्हेन यू से टर्न पेज नंबर दिस, तो पेज नंबर ये टर्न करना है, ये पूरा वाक्य समझना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगेन ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत ऊंचा बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं कंसर्न्स है। तो ये सब एक बिहेवियर रिस्पॉन्सेज है जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, और अगर ऐसा कोई बिहेवियर रिस्पॉन्स आप देखते हो तो तुरंत ENT ऑडियोलॉजिस्ट को मिलने, ताकि हमें पता चले कि हियरिंग लॉस है तो कितना हियरिंग लॉस है, और अगर हियरिंग लॉस है क्या वो दवाई से या सर्जरी से ठीक हो सकता है, तो फाइन, नहीं ठीक हो सकता है तो व्हाट आर द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, चाहे वो हियरिंग एड लगा दें या कॉकलियर इम्प्लांट लगे या हमको साइन लैंग्वेज का है सपोर्ट चाहिए, क्या करना है, तो हम प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक।
1: और शुरुआत में कोई चीज पता चल जाती है तो उसका इलाज भी संभव है।
0: एग्जैक्टली,
1: छोटी मोटी तकलीफें, छोटी मोटी समस्या है तो उसका इलाज भी संभव है। यहाँ पर एक गाना सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना?
0: पल पल दिल के पास
1: तुम रहती हो।
0: हाँ जी, किशोर कुमार जी
1: जी, सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर गायत्री, हमारे श्रोताओं को बताइए कि सुनना और बोलना एक साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या जिनको सुनने में समस्या होती है निश्चित रूप से उनको बोलने में भी समस्या होती है? ऐसा भी होता है कि बोलना बहुत स्मूथ होता है और सुनने में प्रॉब्लम होती है, ये इसके बारे में हमारे श्रोताओं को जरा विस्तार से बताइए।
1: स्पीच इम्पेयरमेंट और हियरिंग इम्पेयरमेंट दो अलग अलग डिसेबिलिटी है, ठीक है। अब पहले हम चलते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के क्षेत्र में। मुझे सुनाई नहीं देता है, अगेन आई रिपीट, इसलिए मुझे भाषा, वाचा और संप्रेषण में तकलीफ होगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि मुझे कितना हियरिंग लॉस है, ओके। उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि मेरा वाचा, भाषा और संप्रेषण कितना अफेक्टेड रहेगा। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से मुझे बात करने में प्रॉब्लम आएगी और भाषा, वाचा और संप्रेषण में प्रॉब्लम आएगी। स्पीच इम्पेयरमेंट बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, जिस बच्चे को स्पीच इम्पेयरमेंट हो उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, बिल्कुल नहीं। स्पीच इम्पेयरमेंट टोटली डिफरेंट थिंग है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आप जब बात करते हैं तो बात करने के लिए जो जो ऑर्गन्स या इन्वॉल्व हैं, ओके, जो भी आर्टिकुलेटर्स इन्वॉल्व हैं या जो वोकल फोल्ड्स हैं या जो भी इन्वॉल्व हैं, ओके, वो एक टोटली डिफरेंट क्षेत्र है, ओके। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से मुझे बात करने में तकलीफ हो सकती है, पर मैं बात नहीं कर सकती हूँ, या मुझे स्टटरिंग है या स्टैमरिंग है या मुझे कोई भी स्पीच रिलेटेड कंसर्न्स है, बट दैट डजंट मीन कि मुझे हियरिंग लॉस भी है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं,
0: जी
1: पर बहुत बार लोग उसको मिक्स कर लेते हैं। तो पहले जब हमारे पास पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट था, तब वी हैड डेफ की डेफिनेशन थी हमारे पास, एंड डेफ एक प्रॉपर एक डिसेबिलिटी था। RPWD एक्ट जब आया 2016, तो दो अलग डिसेबिलिटी बना दी, स्पीच इम्पेयरमेंट अलग, हियरिंग इम्पेयरमेंट अलग। एंड दोनों की टेक्निक्स, मेथड्स, सिखाने के तरीके एंड थेरेपी सेशंस काफी अलग हैं। तो ये दोनों चीजें अलग हैं।
0: बिल्कुल। और कुछ बच्चे जो बोल तो सकते हैं लेकिन ठीक से नहीं बोल पाते हैं, जिनको हकलाना कहते हैं,
1: राइट राइट राइट हाँ,
0: तो उनके लिए भी आपके
1: उनके
0: कुछ
1: लिए भी थेरेपीज होती हैं। एंड जैसे आपने खुद ने पहले कहा, जितना जल्दी आप जानोगे उतना जल्दी आप उसका निवारण कर सकते हैं, उतना जल्दी इंटरवेंशन प्रोग्राम शुरू हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा हकलाता है, तो आप उसको प्लीज एक इंटरवेंशन प्रोग्राम में लेके जाएं या थेरेपिस्ट के पास लेके जाएं। टू एड वन थिंग कि जैसे जनरल स्कूल्स में, रेगुलर स्कूल्स में यू विल फाइंड कि कुछ बच्चे हैं जिनको हियरिंग इश्यूज हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको स्पीच इश्यूज हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक प्रशस्त ऐप बनाया है, ओके। तो वो ऐप से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये बच्चे को रेड फ्लैग है कि ग्रीन फ्लैग है, ओके। तो वो स्क्रीनिंग करने में काफी
0: आसानी
1: आसानी होती है कि हाँ वो बच्चा कौन से ग्रुप में फिट होता है, ताकि आपका इंटरवेंशन प्रोग्राम या थेरेपी प्रोग्राम उस तरीके से बढ़ते जाएगा।
0: तो जो बच्चे सामान्य स्कूल में, सामान्य विद्यालय में पढ़ते हैं, तो टीचर्स का, शिक्षक का किस तरह का सहयोग होना चाहिए, क्या भूमिका होती है फिर?
1: जो जनरल टीचर्स हैं, जो रेगुलर टीचर्स हैं, उनके क्लास में यू विल फाइंड कि बहुत सारे अलग अलग डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं उनके क्लास में भी। तो उनके लिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट

0: इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आपको मालूम है कि आपके क्लास में ऐसा बच्चा है जिनको सुनने में तकलीफ है, तो उस बच्चे का आप सिटिंग अरेंजमेंट सही करें, मतलब उसको ठीक सामने बैठाएं, ताकि उसका हियरिंग एड जो एम्पलीफाई करता है साउंड, या वो कॉकलियर इम्प्लांट यूज़ करता होगा, या जो आपको स्पीच रीड करता होगा आपकी तरफ देख के यू नो वो समझता होगा, तो उसमें काफ़ी मदद हो जाती है। तो सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से रखें, क्लासरूम नॉइज को जितना कम कर सकते हो उतना अच्छा है, ताकि आप जो बात कर रहे हैं या जो उसका पीयर ग्रुप है, जो उसके फ्रेंड सर्कल हैं, जो वो बात कर रहे हैं, उनको वो ध्यान लेके समझ सके और सुन सके। दूसरी, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैं तो कहूँगी कि अगर आप पेरेंट्स को बुलाएं क्लास में और उनको बोलें आप बैठो और ऑब्जर्व करो कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है, तो दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल। तो पेरेंट एम्पावरमेंट अगेन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेरेंट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उनको लगे कि यस इसमें मुझे पढ़ाने में ये तकलीफ हो रही है तो मैं इसको किस तरीके से पढ़ाऊँ, तो सपोर्ट लेना स्पेशल एडुकेटर्स विल रियली हेल्प, बिकॉज स्पेशल एडुकेटर्स जिस तरीके से पढ़ाते हैं उनका मेथड्स और टेक्निक्स काफ़ी अलग होता है, तो वो बहुत हेल्प कर सकते हैं जनरल एडुकेटर्स को कि हम किस तरीके से आगे पढ़ा सकते हैं। चौथी चीज़ इज़ जो वो हियरिंग एड पहनते हैं, जो वो यहाँ तो कॉकलियर इम्प्लांट लगाते होंगे, आपने बहुत बार देखा होगा कान के पीछे एक मशीन होती है, ठीक है, और कान के पीछे और कान के ऊपर तक एक मशीन लगती होगी, तो हियरिंग एड हो या कॉकलियर इम्प्लांट बहुत कॉमन हो गई है, तो वो चल रही है कि नहीं चल रही है उसको भी जांचना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है बच्चे ने लगा तो दी है मशीन पर बैटरी खत्म हो गई है, आवाज जा भी नहीं रही है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि आवाज जा तो रही है, बच्चा सुन तो रहा है, अगर मशीन खराब हो गई है तो अगर आप ठीक नहीं भी सकते हो तो पेरेंट्स को बोल दो कि हाँ बाबा ये मशीन चल नहीं रही है तो आप ठीक करो, या माइनर रिपेयर्स करने आपको आने चाहिए। अगेन जैसे मैंने लास्ट कहा कि टीम अप्रोच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि इफ देर इज एनी कंसर्न आप उसको ऑडियोलॉजिस्ट के पास भेजें, ईएनटी के पास भेजें और स्पेशल एडुकेटर्स की सपोर्ट आप लें, तब जाके सक्सेसफुल होगी चीजें, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट।
1: तो क्या ऐसे बच्चों को कुछ मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट की भी जरूरत होती है, क्योंकि एक सामान्य स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और सारे बच्चे उसको तो पता है कि वो सुनने में असमर्थ है, हियरिंग एड लगा रहा है तो उसको पता है बोलने में असमर्थ है, तो वो जो हीन भावना के शिकार होते हैं तो उसमें किस तरह से मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट होता है या नहीं होता है?
0: इट ऑल डिपेंड्स ऑन चाइल्ड टू चाइल्ड एंड फैमिली टू फैमिली। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन हूँ और मेरी फैमिली ऐसी है जो बहुत पॉजिटिव है, ओके, एंड उनका माइंडसेट ऐसा है कि इट्स ओके, मतलब कि ठीक है, और उनका काफ़ी रीइन्फोर्समेंट हो रहे हैं, उन बच्चों को ज़्यादा इश्यूज और कंसर्न्स नहीं आते हैं। पर जहाँ पे पेरेंट्स ने खुद ने एक्सेप्ट नहीं किया कि मेरे बच्चे को ये कंसर्न है, एंड पेरेंट और बच्चे के बीच का जो संबंध है वो सही नहीं है, तो बच्चों को कंसर्न्स आएंगे ही आएंगे। इट कैन भी उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो कि मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है, मेरे से कोई क्यों नहीं बात कर रहा है, मुझे लोग अलग तरीके से क्यों ट्रीट कर रहे हैं, तो दैट कॉम्प्लेक्सिटी विल कम। पर ये तो हमारे साथ भी होता है कि समझो अगर हम कोई ग्रुप में गए और हमें लगा कि हाँ मुझे ये इंग्लिश भाषा बात करने नहीं आती और सबके सब इंग्लिश में बात करते हैं, तो वो तो हमको भी लगता है, ये एक स्वाभाविक चीज है। तो ये कंसर्न्स जहां पे एक्सेप्टेंस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वहां मैंने ये कंसर्न्स बहुत ज्यादा देखे हैं। एक दूसरा जो बहुत ज़्यादा देखा है मैंने, वो है कि क्या होता है कि पहले समझो बच्चा स्पेशल स्कूल में गया या थेरेपी सेंटर में गया, वहाँ पे पेरेंट्स को लगा और टीचर्स को लगा कि हाँ बाबा मेरा बच्चा अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, वो सब कुछ अच्छे से कर रहा है, उसको स्पेशल स्कूल सेटअप में जहाँ पे सब स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल टीचर हैं, एंड उसको वहाँ से पिक करके उन्होंने प्लेस कर दिया एक रेगुलर स्कूल में। अब वो रेगुलर स्कूल में बाकी सब एक सामान्य बच्चे, एक जनरल टीचर, उन्होंने कभी ऐसा बच्चा देखा नहीं, उसके पढ़ाने का तरीका जिस तरीके से वो दिखता है, दिखता तो बिल्कुल सेम है, ओके, बट वो हियरिंग एड है और मोस्टली कभी वो इशारे करता है तो वो थोड़ा अलग हो जाता है। तो वहां पे अगर वो कोप अप नहीं करता है, ओके, बाकी वो इन्वायरमेंट और सराउंडिंग से, देन देयर कैन बी अ साइकोलॉजिकल कंसर्न्स आल्सो। फिर क्या होता है, वहां से हम वापस उसको स्पेशल स्कूल में लेकर आते हैं, रिवर्स इंटीग्रेशन करते हैं, इस प्रोसेस में द चाइल्ड फेसेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम। थर्ड, अगर उसकी लैंग्वेज उतनी डेवलप नहीं है, चाहे वो मौखिक भाषा हो या सांकेतिक भाषा हो, अगर उसकी लैंग्वेज डेवलप नहीं है एंड द चाइल्ड इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट, ओके, अगर मेरा कम्युनिकेशन अफेक्टेड है, तो यस आई माइट हैव साइकोलॉजिकल कंसर्न्स आल्सो।
1: बिल्कुल,
0: सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा सिनेरियो है, कौन सा सिचुएशन है, दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। एंड समटाइम्स आई फील कि जो बिहेवियर्स है ना हम सब के,

0: वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. फॉर सिंपल एग्जाम्पल, अगर बच्चा स्कूल जाता है तो उसके सिक्योरिटी गार्ड उसको कैसे डील करते हैं, आया जो है आया किस तरीके से उसको डील करती है, और ये सब छोटे बच्चों में बहुत, बिकॉज दे आर मोर ऑफ विजुअल लर्नर्स. ओके, आपका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा होगा कि यू नो यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, बट आप मुंह से तो बोल रहे हैं हेलो गुड मॉर्निंग, बट फेशियल एक्सप्रेशन इज नॉट गोइंग विथ योर स्पीच. ओके, तो वो भी कहीं ना कहीं उसको फील होता
1: फील
0: है.
1: होता है.
0: तो बिहेवियर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, बिकॉज जो हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं वो मोस्टली विजुअल लर्नर्स होते हैं, दे आर मोर ऑफ विजुअल्स. ओके, तो आपका बर्ताव, आपका एटीट्यूड, आपका बॉडी लैंग्वेज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. यहाँ कहीं ना कहीं कमतरता हुई तो दैट मीन्स दैट विल अफेक्ट द चाइल्ड.
1: बिल्कुल सही बात है. इन बच्चों की ऐसी कौन सी प्रमुख शैक्षणिक आवश्यकताएं हैं जिन्हें हर माता-पिता और शिक्षक को समझना चाहिए, ये बताइए हमारे श्रोताओं को.
0: अभी जैसे मैंने कहा चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट, या वो बच्चे जिनको हियरिंग लॉसेस हैं, वो दो ग्रुप में होते हैं बेसिकली. एक ग्रुप जो हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट यूज करता है एंड उसका वर्बल कम्युनिकेशन डेवलप होता है, हम मोस्टली उनके इसमें मौखिक भाषा किस तरीके से विकास हो उसके ऊपर हम स्टेप्स लेते हैं. दूसरा ग्रुप है जहाँ पे हम साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, इशारों की भाषा बोलते हैं, या विजुअल स्पेशल मैनुअल कम्युनिकेशन हम जिसको बोलते हैं, ये एक ग्रुप होता है. ठीक है, अब इन दोनों ग्रुप में बेसिक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट या जो जरूरत है या लर्निंग नीड्स हैं बेसिकली, या कम्युनिकेशन और लैंग्वेज की जरूरत है. ठीक है, अब नॉर्मली लोगों को क्या लगता है कि आपने हियरिंग एड लगा दिया तो मेरा बच्चा बात करेगा, या कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी कर दी तो मेरा बच्चा बात करेगा, पर इसमें और चश्मे के बीच में बहुत फर्क है. मुझे अगर दिखाई नहीं देता है और मैं ऑप्थेल के पास जाती हूँ, ऑप्थेल मुझे चश्मा देगा और मुझे तुरंत दिखाई देगा, और वो आपका तभी का तभी टेस्टिंग करते हैं. ठीक है, जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो अलग अलग श्रवण यंत्र ट्राई करते हैं, फिर वो गेन देखते हैं, और उसके बाद आपको एक हियरिंग एड दिया जाएगा. हियरिंग एड लगाने के बाद तुरंत बच्चा बात नहीं करता है, उसके बहुत सारे थेरेपी सेशंस होते हैं, श्रवण प्रशिक्षण के बहुत सारे थेरेपी के सेशंस होते हैं, उसको सिखाया जाता है कि ये आवाज़ कौन सी है, इस आवाज़ का मतलब क्या है, आवाज़ आ कहाँ से रही है. तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ओके, एंड अ टीडियस प्रोसेस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी से आपको काम करना होता है. तो ये एक लर्निंग नीड है, जहाँ पे अगर लगता है कि हाँ बच्चे ने श्रवण यंत्र पहना है तो उसका ऑडिटरी ट्रेनिंग या श्रवण प्रशिक्षण आपको लगातार करना होगा. हियरिंग एड आपको लगातार पहनना होगा, एंड चाहे वो कॉकलियर इम्प्लांट हो या हियरिंग एड हो, आपको कंटिन्यूअसली पहनना बहुत ज़रूरी है. दूसरी चीज़ है, आप जिस वातावरण में हैं वो भाषिक वातावरण होना चाहिए. जितना ज़्यादा आप लैंग्वेज इनपुट दोगे उतना ज़्यादा आप लैंग्वेज आउटपुट होगा. जितना लैंग्वेज इनपुट नहीं है उतना आउटपुट इज़ अफेक्टेड. सोशल इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा कराएं ताकि बच्चे को भी लगे कि हाँ मैं इस समाज का एक हिस्सा हूँ, एंड मुझे हर जगह एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, एंड प्लस एक सोशल आइडेंटिटी भी डेवलप होती है. मैं जितना ज़्यादा समाज में इन्वॉल्व होंगी मेरी उतनी अच्छी आइडेंटिटी भी बनेगी. नीड्स है बेसिकली एक चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट की. अपार्ट फ्रॉम दिस, अब देखिए जब हम भाषा की बात करते हैं तो अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल दूँ मैथमेटिक्स का, अगर मैं लिखूंगी 26 प्लस 24 कितना होता है इन अ डिजिटल फॉर्मेट, वो बच्चा कर पाएगा. ओके, पर अगर यही चीज मैं भाषिक रूपांतर में दूं मैथमेटिकल सम्स, वो डिफिकल्ट हो जाएगा. बिकॉज अब जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ और जब मैं वो लिखती हूँ भाषा, ओके, टिपिकल मैथमेटिकल कंसेप्ट में जो भाषा का इस्तेमाल होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चे को भाषा सीखने में. नेक्स्ट व्हाट आई फील इज, हम कभी भी जो भी कंटेंट सिखाते हैं, या चाहे वो टीचर्स हो या चाहे वो पेरेंट्स हो, जो भी हम कंटेंट सिखाते हैं उस कंटेंट के अंदर जितने भी कंसेप्ट होते हैं, ओके, वो जितने भी संकल्पनाएं हैं वो संकल्पना संदर्भ के अकॉर्डिंगली सीखना बहुत जरूरी है. अब एग्जांपल, अगर मैं आपको एक शब्द बोलूं खोलना, ओके, ये शब्द है अगर खोलना, तो हम तो कितनी चारी अलग अलग चीजें खोलते हैं. ओके, क्लास में आप जाते हो और बोलते हो कि आप बुक्स खोलो, तो यू अंडरस्टैंड कि बुक मुझे खोलना है. ओके, बुक इस तरीके से खुलती है. ओके, अगर मैं कहूँ कि मुझे डोर खोलना है तो दैट क्रिया इज डिफरेंट. ओके, दैट प्रोसेस इज डिफरेंट. तो वन वर्ड बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, तो हेंस कंसेप्टुअल क्लैरिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर संकल्पना में अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती है तो इसके लिए बच्चों को आगे एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम्स होती है, नहीं तो फिर बच्चे फिर

0: रट्टा मार के वो वैसे आंसर लिखते हैं
1: हाँ
0: कि बहुत बार आप देखोगे कि बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका वो कीवर्ड देखते हैं और उसके हिसाब से आंसर लिखते हैं, क्योंकि उनमें कंसेप्चुअल
1: हाँ
0: क्लैरिटी ही नहीं
1: हाँ
0: होती है। और बहुत बार रट्टा मारना करते
1: हाँ
0: हैं तो रट्टा मारा हुआ चीज़ लिखते हैं पर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो अंडरस्टैंडिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अंडरस्टैंडिंग हुई तो बहुत सारी एकेडमिक डिफिकल्टीज तो चली ही जाएंगे। प्लस आई एम अ टीचर तो मैं लिटरेसी डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ कि जितना ज़्यादा आप रीडिंग राइटिंग कराओगे उतना ज़्यादा आप अच्छा प्रोग्रेस होगा।
1: अभ्यास
0: तो हाँ,
1: होगा।
0: जितना ज़्यादा रीडिंग हो, फॉर एग्जाम्पल 6 महीने का अगर बच्चा है, आप बोलोगे क्या मैं कराऊँ रीडिंग और राइटिंग एंड क्या ही कराऊँ, बट आप बुक खोल सकते हैं उसके सामने और बुक खोल के पढ़ सकते हैं तो वो जो
1: बिल्कुल।
0: विजुअल थिंग्स है, ओके दैट गोज इन हिज हेड, ओके बच्चा देख रहा है, उसका रिसेप्टिव लैंग्वेज इज ऑल्सो डेवलपिंग। आप पेज टर्न कर रहे हैं तो ही ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ जब हम रीड करते हैं तो मुझे पेज टर्न करना है, जब मैं रीड करता हूँ तो मैं ऊपर से लेके नीचे तक जाता हूँ, ना कि नीचे से लेके ऊपर तक। तो ये जो स्मॉल स्मॉल थिंग्स है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो
1: बिल्कुल
0: दिस ऑल थिंग कंपाइल्स इन द लर्निंग नीड्स ऑफ द चाइल्ड।
1: जी। तो ऐसे बच्चे जो सीख रहे हैं इस तरह, जिनमें श्रवण बाधित जो बच्चे हैं, तो इनकी समझदारी में कुछ भी कुछ फर्क होता है सामान्य बच्चों के तुलना में, कि नॉर्मल, क्योंकि जो सामान्य बच्चे हैं बहुत कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं आंखों से, और बहुत ऐसी जगहों पर ले जा रहे हैं। अमूमन होता होगा तुम्हें
0: राइट
1: कि
0: राइट राइट राइट
1: पेरेंट्स
0: हाँ
1: अवॉइड करते होंगे कि यहाँ नहीं ले जाना है, यहाँ ले जाना है, तो उनकी जो समझ, थिंकिंग प्रोसेस है, क्या बराबर होती है या कम होती है?
0: से आपका जब कॉग्निशन की बात करते हो तो कॉग्निशन बहुत हायर लेवल थिंकिंग है,
1: हाँ।
0: राइट। एंड उसके अंदर एक और चीज़ आती है जिसको हम मेटा कॉग्निशन बोलते हैं, तो उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं। प्रोसेसेस को समझने के लिए आपको एक यंत्र चाहिए, आपको एक टूल चाहिए जो है भाषा। कोई भी चीज़ को समझने के लिए, जैसे आई नो कि जो मैं बात कर रही हूँ ये माइक के माध्यम से, इट इज़ गोइंग टू मैम, मैम उनको चेंज वेंज करके एंड देन इट इज़ लाइव ब्रॉडकास्टिंग। एवरीथिंग आई एम अंडरस्टैंडिंग थ्रू लैंग्वेज, ओके। पर अगर मेरे पास लैंग्वेज ही नहीं है, हाउ विल माई अदर प्रोसेसेस विल टेक प्लेस? सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट
1: बिल्कुल
0: मैं ये नहीं कह सकती कि जो हियरिंग इम्पेयरमेंट होते हैं उनको कुछ कॉग्निटिव इश्यूज़ होते हैं, नहीं, दे आर नो कॉग्निटिव इश्यूज़, नो अंडरलाइंग इश्यूज़ एज सच, बट येस लैंग्वेज कॉग्निशन से जुड़ा हुआ है एंड इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑल्सो। तो वो काफ़ी
1: जी
0: अच्छा प्रोग्रेस करते हैं। बट अगेन सेम थिंग बॉइल्स डाउन टू लैंग्वेज और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। मेरे पास अगर भाषा ही नहीं है तो मैं आगे किस तरीके से वो प्रोसेस को समझूं या किस तरीके से रिस्पॉन्ड करूं या क्या कैसे करूंगी वो मुझे कैसे पता? जब तक मुझे वो रियल लाइफ सिचुएशंस नहीं पता होंगे या मुझे उस चीज़ का संदर्भ ही नहीं पता है कि मैं किस तरीके से करूँ। वैसे
1: बिल्कुल। यहाँ हम एक गाना सुनते हैं, कौन सा गाना सुनवाए?
0: ये मुंबई है मेरी जान, ए दिल है मुश्किल।
1: ऐ दिल है मुश्किल जीना, यहाँ ये जी सुनते हैं ये गाना। ऐ दिल

0: डॉक्टर गायत्री, हमें बताइए कि श्रवण बाधित बच्चे की सीखने की पूरी प्रक्रिया को किस तरह से प्रभावित करती है, जो सीखने की मतलब लर्निंग प्रोसेस होती है, अभी गाने से पहले भी इस बारे में हम बात कर रहे थे।
1: हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं या लर्निंग की बात करते हैं, एक सिंपल चीज़ को अगर हम ध्यान में रखें कि हर चीज़ मुझे एक्सेसिबल होना चाहिए। अगर सारी चीज़ें आपके पास एक्सेसिबल हैं तो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी आसान से हो सकता है। नाउ जब मैं एक्सेसिबिलिटी ये शब्द बोलती हूँ तो इसका अर्थ क्या है? एक्सेसिबिलिटी बेसिकली मींस कि मैं कोई भी चीज़ को पार्टिसिपेट करूँ तो उसमें कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, समझो व्हील चेयर का इस्तेमाल करती हूँ और आपके बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, सो मैं थर्ड फ्लोर तक कैसे जाऊँ? ठीक है, आई हैव टू टेक हेल्प ऑफ समबडी एल्स। ओके, मैं इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो एक्सेसिबल होना हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो हम ये रेडियो शो कर रहे होते और आप फ्रेंच में बात कर रहे होते, तो मुझे तो फ्रेंच आती नहीं है, तो इट वुड हैव बीन वन वे कम्युनिकेशन, क्योंकि मैं कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो लर्निंग सक्सेसफुल करने के लिए आप जो भी चीज़ें, जो भी मटेरियल आप बच्चों को देते हो या जो भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, बच्चे के लेवल के अनुसार होना चाहिए और उसको उस तक वो पहुंच सके, इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दैट इज़ एक्सेसिबल होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो हमारे बच्चे होते हैं वो मोर ऑफ विजुअल लर्नर्स होते हैं। ओके, सो आप कोई भी क्लासरूम देखोगे, अगर स्पेशल क्लासरूम देखोगे या अगर आप हमारे CDIC में आओगे, दैट इज़ क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, उधर भी आप देखोगे बहुत ज़्यादा विजुअल चार्ट्स होंगे, विजुअल थिंग्स होंगे, बिकॉज द चाइल्ड इज मोर ऑफ विजुअल। ओके, सो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आपको अलग अलग लेने होंगे एंड अगेन आई रिपीट, एक्सेसिबल होना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप कंसेप्ट कंटेंट दे रहे हैं, क्या वो साइन लैंग्वेज में उपलब्ध है कि नहीं है? ओके, और अगर साइन लैंग्वेज में उपलब्ध नहीं है, जो आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो भाषा मेरे बच्चे को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बहुत बार जो होता है वो टेक्स्ट जो होता है, स्कूल के जो टेक्स्ट होते हैं, उसको हम अडेप्ट करते हैं। अडेप्ट बेसिकली मीन्स वॉट, हम उसको चेंजेस करते हैं, चेंजेस बच्चे के लेवल के अनुसार चेंजेस करते हैं और बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स के माध्यम से सिखाते हैं। अगेन कमिंग टू बेसिक, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, कंसेप्ट्स क्लियर है तो बच्चे का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी आसान तरीके से होता है। हमारे बच्चों के लिए आप जब असेसमेंट भी करते हो, जो मूल्यांकन करते हो, तो आप समझो आप जब पढ़ा रहे हो तो पढ़ाते समय भी आप मूल्यांकन करते रहते हो, पढ़ाने के पहले भी करते हैं, पढ़ाने के बाद भी करते हैं और पढ़ाते समय बहुत बार हम मूल्यांकन करते हैं। एंड इट प्रोसेस शुड बी बेसिकली दोनों तरफ से इंटरैक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर क्लास में गई और खुद ही खुद बात किए जा रही है। और बहुत बार तो हमने ये देखा है कि जब हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट होना चाहिए, भाषिक वातावरण होना चाहिए, तो माँ ही बोले जा रही है। नहीं, बच्चे को भी मौका दो कि बच्चा भी बात करे, बच्चा भी वो प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। तो जितना ज़्यादा आप इन्वॉल्व करोगे बच्चे को हर प्रोसेस में, उतना ज़्यादा बच्चा प्रोग्रेस कर सकता
0: है। बिल्कुल। डॉक्टर गायत्री, हमारे श्रोताओं को बताइए कि सरकार की कौन सी नीतियां हैं, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां हैं इन बच्चों को जो शिक्षा में समर्थन देती हैं और बढ़ावा देती हैं?
1: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऐसे बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे स्कीम्स हैं जहाँ पे वो बच्चों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं या इंडिविजुअल्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हमारे पास अलग अलग एक्ट्स हैं, चाहे वो RPWD एक्ट हो या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो 2020 की, या SIPTA स्कीम हो, स्किल डेवलपमेंट के लिए वी हैव PM दक्ष स्कीम।

0: सो हमारे पास अलग अलग स्कॉलरशिप के स्कीम्स हैं ताकि बच्चे को ऐसा नहीं लगे कि एजुकेशन काफ़ी डिफिकल्ट है, यू नो मैं एजुकेशन कहाँ से लूँ और कैसे लूँ।
1: जी
0: एक सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आप अगर हमारे यहाँ पे अगर कोई दिव्यांग है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है और उसको बीएड का कोर्स करना है, एमएड का कोर्स करना है या डिसलिटी आईएसएल का कोर्स करना है, तो उसके लिए फ्री है एजुकेशन। ओके, दैट इज एज पर द स्कीम बच्चे के
1: जी
0: लिए फ्री है। अगर उसको कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करना है या फ्री कोचिंग करना है, तो इट इज़ टोटली फ्री। तो ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं जहाँ पे उनको हियरिंग एड भी मिलता है कंसेशनल रेट पे। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे लॉज आर इन प्लेस, स्कीम्स आर इन प्लेस, जहाँ पे हम एजुकेशन भी देते हैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में। सो ये सारी चीज़ें तो हैं इन प्लेस। पर जब हम गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस या लॉज एंड पॉलिसीज की बात करते हैं, वी स्टिल हैव टू यू नो डेवलप अवेयरनेस, और अवेयरनेस की आवश्यकता है अभी तक हमारे देश में कि अगर ये इशू है, अगर ये कंसर्न है, तो मुझे कहाँ जाना है। ये कहाँ जाना है, ये अभी तक एक कंसर्न है। अभी भी हमको अवेयरनेस में बहुत ज़्यादा काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ आई कैन कोट अ थिंग इज कोविड के टाइम पे, यू नो दे आर गोइंग टू हॉस्पिटल्स एंड दे वर हैविंग देयर ट्रीटमेंट ऑल्सो। सो यू थिंक ऑफ अ पर्सन जिसको कोविड अफेक्टेड है एंड वो हॉस्पिटल गया है एंड ही इज़ नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद द डॉक्टर बिकॉज देर इज़ नो इंटरप्रेटर। ओके, तो हमारे देश में अभी भी इंटरप्रेटर्स की संख्या बहुत कम है, उसमें और ज़्यादा इनरोल होना ज़रूरी है। थर्ड इज़ द एक्सेसिबिलिटी, इस एक्सेसिबिलिटी को भी हमें इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इन सब अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी, इंटरप्रेटर सर्विसेज एंड सपोर्ट सिस्टम अगर हम और बढ़ाते हैं, तो यस, तो गवर्नमेंट लॉज पॉलिसीज जो है इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी अच्छे से होगा। हम डॉक्यूमेंट्स में बहुत अच्छे हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत कर रहे हैं, पर फिर भी अगर ये दो तीन चीज़ पे और लाइन अप हम करें, तो यस, द चाइल्ड कैन गो मच मच हायर लेवल पे।
1: जी आप खुद इस संस्था में पढ़ाती हैं बच्चों को और आपके पास देश भर के बहुत सारे बच्चे आते होंगे। कोई ऐसा निजी यादगार कोई घटना है आपके पास जो शेयर करना चाहती हैं
0: मैं इस
1: कि
0: क्षेत्र में आई क्योंकि ऑन माय
1: आप तो
0: पर्सनल
1: हेड
0: नोट
1: हैं, डिपार्टमेंट की हेड हैं, तो बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही
0: नहीं,
1: हैं।
0: उसके पहले तो फैकल्टी थी एंड उसके पहले बहुत साल तक एनजीओ सेटअप में भी काम करती थी मैं। एंड आई इंटर्ड इन दिस फील्ड बिकॉज मेरी बुआ की डॉटर इज हियरिंग इम्पेयर्ड। ओके, सो जब भी मैं बुआ के घर जाती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि ये इशारों से बात कर रही है और मेरे पापा आराम से कम्युनिकेट कर सकते थे। एंड आई यूज टू फील ये ऐसे, ये कुछ अलग है, ये क्या है। ओके, सो व्हेन आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स आई थॉट कि लेट मी गेट इनटू दिस फील्ड बिकॉज दिस फील्ड आई फेल्ट इज वेरी सैटिस्फैक्ट्री, वेरी क्रिएटिव एंड बहुत कुछ चेंज हम कर सकते हैं। एंड अगर हम सब इकट्ठा होके एज अ टीम काम करें, तो आई फील यू कैन मेक वंडर्स। कमिंग टू द पर्सनल नोट, जिस संस्था में मैं काम कर रही हूँ, पहले मैं वहाँ पे फैकल्टी थी एंड उसके बाद मैं अभी 2024 में आई बिकेम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। सो बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, लाइक मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो खुद डेफ हैं, ने कहा कि जो बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं और पीएचडी करते हैं, और बहुत सारे सो कॉल्ड यू नो टिपिकली डेवलप्ड स्टूडेंट्स भी हैं। दोनों काफ़ी अलग हैं एंड दोनों का सीखने का तरीका काफ़ी अलग है, बट दीज आर ऑल यू नो लेसन्स, यू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स। और अगर मैं कहूँ कि मैंने इनसे क्या सीखा है, पेशेंस सीखा है काफ़ी ज़्यादा, मेरे में पेशेंस लेवल काफ़ी अच्छा हो गया है। एंड यू अंडरस्टैंड कि एक ही पहलू को हम कितने अलग तरीके से देख सकते हैं। जैसे हम रिसर्च में कहते हैं थर्ड व्यू। ओके, थर्ड व्यू बेसिकली मीन्स फ्रॉम रिसर्च एंगल, डिफरेंट तरीके से वही चीज़ को देखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दिस इज़ द थिंग व्हाट आई हैव अंडरगॉन एज अ रीडर।
1: बिल्कुल। भारत में श्रवण बाधित बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है, तो इसे मजबूत करने के लिए और क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं भारत सरकार की ओर से?
0: कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग की जब मैं बात करती हूँ, तो अगर मैं जनरल स्कूल्स की बात करूँ, तो जनरल स्कूल्स में जो टीचिंग स्टाफ है एंड नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको समझना, उनका एक्सेप्टेंस करना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ, जैसे मैं आई थिंक स्टार्ट से कह रही हूँ, वी नीड मोर डेवलपमेंट ऑन एक्सेसिबिलिटी। अगर हर चीज़ उनके पहुँच तक हो, तो यस, द थिंग्स आर पॉजिटिव। एट द एंड ऑफ द डे, माइंड सेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पॉजिटिव

0: माइंडसेट होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
1: जी, संक्षेप में बताइए चलते चलते कि आपकी संस्था किस तरह से मदद करती है इन बच्चों को, क्योंकि देश भर से बच्चे आते हैं, तो क्या क्या, किस तरह की थेरेपी दी जाती है और क्या क्या जांच की जाती है, फिर उनकी मदद कैसे करती है आपकी संस्था?
0: हमारी संस्था में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जिनको सुनने में तकलीफ होती है, तो वी हैव एन ऑडियोलॉजी डिपार्टमेंट जहाँ पे उनकी जांच की जाती है कि बच्चे को कितना सुनाई देता है, कितना सुनाई नहीं देता है, उसको कौन सी हियरिंग एड से फ़ायदा होगा, अगर कॉकलियर इम्प्लांट करना है तो कितने हद तक। हमने रिसेंटली वर्टिको थिंग भी बनाया है, वर्टिको एक क्लिनिक थेरेपी सेंटर बनाया है कि जिन बच्चों को, अगर सिंपल तरीके से बोलूं कि बहुत बार लोगों को चक्कर आते हैं, राइट, सम पीपल से ना आई हैव अ वर्टिगो इश्यूज एंड ऑल, ओके, सो दिस इज अ न्यू थिंग व्हिच इज बीइंग डेवलप्ड इन द डिपार्टमेंट। फिर हमारे पास एक डिपार्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, जिन बच्चों को बात करने में, वाचा में प्रॉब्लम आती है, स्टटर करते हैं, स्टैमर करते हैं, कभी कभी सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी कुछ शब्द नहीं बोलते हैं, तो उनकी पूरी थेरेपी वहाँ पे चलती है, फुल स्पीच थेरेपी लैब है, आइडेंटिफिकेशन से लेके इंटरवेंशन तक, ओके। देन वी हैव साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट जहाँ पे पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस होता है, बिहेवियरल मैनेजमेंट करते हैं, बिहेवियरल टेक्निक्स करवाते हैं ताकि उसका भी निवारण हो सके। और जिस डिपार्टमेंट से मैं आती हूँ, हम पूरा एजुकेशन देखते हैं उन बच्चों का, कि समझो अगर बच्चा कोई रेगुलर स्कूल में भी जाता है और उसको वहाँ पर भी तकलीफ होती है, तो वी गिव देम रेमेडियल टीचिंग एज वेल। सो एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगेन अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, डिप्लोमा से के पीएचडी तक, एंड हम साइन लैंग्वेज के भी कोर्सेज चलाते हैं, कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन। तो अगर किसी को लगे कि मुझे सांकेतिक भाषा सीखनी है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड काफी सारी कोर्सेज चलते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। हम कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते हैं ताकि जो हमारे तक नहीं आ सके तो हम वहां तक पहुंच सके, रीच दी अनरीच, तो हम वहां जाके कैंप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं और उनको हियरिंग एड्स या उनको जो जरूरत हो, ओके, वो हम देते हैं।
1: जी, तो आपके संस्था से कोई संपर्क करना चाहे तो क्या कुछ कर सकता है, मेल के जरिए? और
0: वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, AYJNISHDNIC वेबसाइट है, आप वहाँ जाके आपको हर डिपार्टमेंटल हेड्स के फोन नंबर्स और ईमेल आईडीज मिलेंगे, यू विल गेट ऑलमोस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ।
1: बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी है डॉक्टर गायत्री, और मुझे लगता है देश भर के हमारे श्रोता जो सुन रहे होंगे, जिन्हें भी, जिनके घर में जिन बच्चों को, जिन बड़ों को हियरिंग लॉस है या बोलने में दिक्कत है, तो बहुत अपने तई जहाँ इलाज संभव करें, नहीं तो आपकी संस्था से
0: श्योर
1: कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
0: श्योर श्योर।
1: और चलते चलते कोई गाना सुनवाना चाहेंगे?
0: जगजीत सिंह का कोई भी गाना, आई जस्ट लाइक हिम और लाइक हिज वॉइस अ लॉट, तो एनी सॉन्ग ऑफ जगजीत सिंह इज ओके विथ मी।
1: तुमको देखा तो ये ख्याल
0: हाँ,
1: है,
0: ऑल गुड,
1: तो सुनते हैं ये।
0: ठीक है।

0: और डॉक्टर गायत्री विविध भारती के स्टूडियो में आप आई और इतनी सारी जानकारी दी। और ये एक ऐसा विषय है जो जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, जो लोग इससे पीड़ित होते हैं वही लोग परेशान होते हैं। तो हमारा भी श्रोताओं से बस यही कहना है कि जहाँ कहीं ऐसे बच्चे हैं उनको सपोर्ट करें, मानसिक रूप से सहयोग दें। आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत
1: थैंक यू टू यू ममता मैम एंड थैंक्स टू विविध भारती द होल टीम। दे आर वेरी कोऑपरेटिव एंड द वे दे आर डीलिंग विद एवरीथिंग, सो थैंक्स टू देम। थैंक्स टू ऑल द लिसनर्स कि आप सुने और कहीं पे किसी को भी आवश्यकता हो तो प्लीज संपर्क करें अलियावर जंग संस्था को। थैंक यू सो मच।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गायत्री आहूजा से रेडियो सखी ममता सिंह की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के मेहमान।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बालाघाट केंद्र है। इस वक्त शाम के 5 बजे हैं। कीजिए अब सुनिए हमारे युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी।

नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आज आपके साथ आपके अपने रेडियो दोस्त आरजे बरखा कश्यप। युवावाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे विश्व साइकिल दिवस की, जो हर वर्ष 3 जून को मनाया जाता है। ये दिन केवल एक साधारण 2 पहियों वाले वाहन का उत्सव नहीं है, बल्कि स्वस्थ जीवन, स्वच्छ पर्यावरण और टिकाऊ भविष्य का संदेश भी देता है। दोस्तों, आज के समय में हम तकनीक और सुविधाओं से घिरे हुए हैं। छोटी सी दूरी तय करने के लिए भी हम बाइक या कार का इस्तेमाल करने लगे हैं। इसका परिणाम ये हुआ है कि शारीरिक गतिविधियां कम हो गई हैं और मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में साइकिल एक सरल, सस्ती और प्रभावशाली समाधान के रूप में हमारे सामने आती है। जरा अपने बचपन को याद कीजिए। जब पहली बार साइकिल चलाना सीखा था, तब गिरने का डर भी था और संतुलन बनाने की चुनौती भी। लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ा, आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। यही साइकिल हमें जीवन का एक बड़ा सबक भी सिखाती है। संतुलन बनाए रखने के लिए आगे बढ़ते रहना जरूरी है। अगर हम वास्तविक जीवन की बात करें तो आज भी देश के लाखों विद्यार्थी साइकिल से ही स्कूल जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोग रोजगार, शिक्षा और जरूरी कामों के लिए साइकिल का उपयोग करते हैं। कई खिलाड़ी अपने फिटनेस को बनाए रखने के लिए नियमित साइकिलिंग करते हैं। कोरोना महामारी के बाद तो शहर में भी लोगों ने स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूक होकर साइकिल चलाने की ओर फिर से रुख लिया है।

0: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
1: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी, चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां बीटेक कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री और साथ ही पॉलिटेक्निक के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में।
0: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबारा रोड, गर्रा, बालाघाट।
1: मोबाइल नंबर 6262604111 और 9425836824।
2: दोस्तों, साइकिल का एक और महत्वपूर्ण पहलू है पर्यावरण संरक्षण। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों के मुकाबले साइकिल बिल्कुल प्रदूषण नहीं फैलाती, ना धुआं, ना शोर, ना ही ईंधन का खर्च। जब हम साइकिल चलाते हैं तो ना केवल अपना स्वास्थ्य बेहतर बनाते हैं बल्कि पृथ्वी को भी सुरक्षित रखने में योगदान देते हैं। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना कर रही है, तब साइकिल एक छोटा लेकिन प्रभावशाली कदम साबित हो सकती है। यदि हम सप्ताह में कुछ दिन भी छोटी दूरी के लिए साइकिल का उपयोग करें तो ईंधन की बचत होगी, ट्रैफिक कम होगा और पर्यावरण को भी राहत मिलेगी। प्रिय युवा साथियों, साइकिल केवल परिवहन का साधन नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, अनुशासन और स्वस्थ जीवन शैली का प्रतीक भी है। इसलिए इस विश्व साइकिल दिवस पर आइए एक संकल्प लें कि हम अपने दैनिक जीवन में साइकिल को अधिक से अधिक स्थान देंगे, चाहे सुबह की सैर हो, कॉलेज जाना हो या आसपास के छोटे मोटे काम, जहां संभव हो साइकिल का उपयोग करेंगे। अंत में यही कहना चाहूंगी कि साइकिल के दो पहिए हमें एक बेहतर दिशा दिखाते हैं, एक पहिया स्वास्थ्य का और दूसरा पर्यावरण संरक्षण का। जब ये दोनों साथ चलते हैं तभी जीवन और समाज आगे बढ़ता है।

दोस्तों, गर्मी का मौसम अपने चरम पर है। देश के कई हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा है तो कहीं घट रहा है। ऐसे में आयुष मंत्रालय ने नागरिकों के लिए लू और अत्यधिक गर्मी से बचाव संबंधी महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य सलाह जारी की है। साथियों, तेज धूप और बढ़ता तापमान हमारे स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। इसलिए दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, हल्के और सूती कपड़े पहनना तथा दोपहर के समय अनावश्यक रूप से धूप में निकलने से बचना बेहद जरूरी है। अपने भोजन में तरबूज, खरबूजा, खीरा, टमाटर, नींबू और लौकी जैसे पानी से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करें। आयुष मंत्रालय ने छाछ, नारियल पानी और नींबू पानी जैसे प्राकृतिक पेय पदार्थों के सेवन की भी सलाह दी है, जो शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करती है। विशेष रूप से बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, बाहर काम करने वाले श्रमिक और हृदय रोग या उच्च रक्तचाप के पीड़ित लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यदि किसी व्यक्ति को चक्कर आना, सिर दर्द, मतली, अत्यधिक कमजोरी, शरीर का तापमान बढ़ना, भ्रम की स्थिति या बेहोशी जैसे लक्षण दिखाई दें तो इसे हल्के में ना लें। यह लू लगने के संकेत हो सकते हैं, जिसके लिए तुरंत चिकित्सीय सहायता आवश्यक है। गंभीर स्थिति में आपातकालीन हेल्पलाइन 108 या 102 पर तुरंत संपर्क करें। युवा साथियों, गर्मी से बचाव केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। अपने परिवार, मित्रों और आसपास के लोगों को भी इन सावधानियों के बारे में जागरूक करें। आइए इस गर्मी में सतर्क रहें, स्वस्थ रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित करें।

दोस्तों अब बात कर लेते हैं रोजगार सूचना की। NTA CSIR UGC NET की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं दिनांक 19 जून 2026 तक। इसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता सामान्य OBC उम्मीदवारों के लिए MSc समकक्ष डिग्री में 55% अंक अनिवार्य है। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग उम्मीदवारों के लिए 50% अंक आवश्यक है। इंटीग्रेटेड कोर्स और BE, BTEC, BPharma और MBBS के उम्मीदवार भी CSIR NET के लिए पात्र हैं। तो दोस्तों देर ना करें, जल्द ही आप अपने नज़दीकी नेट कैफ़े पर जाकर संपर्क करें या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट UGC.NET पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई और बारी है इस प्यारे से गीत की।

तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की जानकारी बहुत पसंद आई होगी और आप सभी को एक बार फिर से विश्व साइकिल दिवस की ढेरों शुभकामनाएं, और आज की रोजगार सूचना भी आपके लिए लाभप्रद हो, ऐसी मेरी कामना है।

और दोस्तों इस प्यारे से गीत के बाद अब दीजिए मुझे इजाज़त, क्योंकि घड़ी ने दी है हमें हिंट कि अब हमको जाना है और अगला प्रोग्राम आना है। तो चलिए अब स्वीकार करिए अपनी रेडियो दोस्त आरजे वर्षा कश्यप का प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आनंद बख्शी का लिखा गीत, जिसकी धुन बनाई थी जतिन ललित ने। फिल्म का नाम था मोहब्बते। लीजिए अब सुनिए मर्डर 2 फिल्म का ये नगमा मोहम्मद इरफान की आवाज़ में। बोल है सईद कादरी के और धुन बनाई है MM करीम ने।

श्रोताओं लीजिए, अब सुनिए उदित नारायण और पामेला जैन की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा गीत, जिसकी धुन बनाई है राजेश रोशन ने और फिल्म का नाम है न तुम जानो न हम।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा गीत, जिसकी धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने। फिल्म का नाम था परदेस। लीजिए, कार्यक्रम के आखिर में सुनिए रंग दे बसंती फिल्म के नगमा नरेश अय्यर और मोहम्मद असलम की आवाजों में।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। इस वक्त शाम की 6 बजे है। लीजिए पेश है कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट।
1: गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट,
0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट और मैं हूं आपकी दोस्त रिजवाना खान। श्रोताओं, कहा जाता है कि मुस्कान वो जादू है जो बिना कुछ कहे दिलों को जीत लेती है। एक प्यारी सी मुस्कान थके हुए चेहरे को रोशन कर सकती है, उदास मन को खुशियों से भर सकती है और रिश्तों में नई मिठास घोल सकती है। होठों पर जो ठहर जाए वो मुस्कान अच्छी लगती है, हर दर्द को जो छुपा जाए वो मुस्कान अच्छी लगती है। यूँ तो मिलते हैं लोग हज़ारों इस दुनिया में, मगर जो दिल में उतर जाए वो मुस्कान अच्छी लगती है।

0: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
1: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी, चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां BTEC कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री और साथ ही पॉलिटेक्निक के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में।
0: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबारा रोड, गर्रा, बालाघाट।
1: मोबाइल नंबर 6262604111 और 9425836824।
2: श्रोताओं, मुस्कुराने के लिए किसी बड़ी वजह की ज़रूरत नहीं होती। कभी बच्चों की मासूमियत, कभी दोस्तों की बातें और कभी किसी अपने का साथ चेहरे पर मुस्कान ले आता है। तेरी मुस्कान का असर कुछ ऐसा हुआ, दिल का हर कोना रोशन सा हुआ, जो बात लफ्ज़ों से ना कह सके कभी वो तेरी मुस्कान से बयां कर दिया।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
1: आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान।

श्रोताओं, मुस्कान सिर्फ चेहरे की खूबसूरती नहीं बढ़ाती बल्कि इंसान की पहचान भी बन जाती है। कई बार एक मुस्कराता हुआ चेहरा किसी की पूरी दुनिया बदल देता है। ज़िंदगी की राहों में मुस्कराते रहना, गम चाहे कितना भी आए गुनगुनाते रहना, क्योंकि मुस्कान वो दौलत है जिसे जितना बांटो उतना बढ़ती है।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: श्रोताओं, कभी गौर किया है, जब कोई अपना मुस्कुराकर

से हो पूछता है तो आधी परेशानियां वहीं ख़त्म हो जाती है। मुस्कान रिश्तों को मजबूत बनाती है और दूरियों को कम करती है। मुस्कान किसी की पहचान बन जाती है, हर खुशी की नई उड़ान बन जाती है। यूं ही नहीं लोग याद रखते हैं किसी को, कभी कभी मुस्कान ही जान बन जाती है।

श्रोताओं, जीवन में मुश्किलें सबके हिस्से में आती हैं, लेकिन जो इंसान मुश्किल समय में भी मुस्कराना जानता है वही असली विजेता कहलाता है। मुस्करा कर देखो तो सारा जहां रंगीन लगेगा, हर मौसम सुहाना और हर दिन हंसी लगेगा। गमों को थोड़ी देर किनारे रख कर देखें, जिंदगी का हर पल नायाब लगेगा।

0: श्रोताओं, बस इतना कहना चाहूंगी कि आपकी मुस्कान किसी के लिए उम्मीद की किरण बन सकती है, इसलिए मुस्कुराते रहिए, खुशियां बांटते रहिए। रहे सलामत आपकी ये प्यारी सी मुस्कान, महकता रहे हमेशा आपका जहान, हर खुशी कदम चूमे आपकी, यूं ही रोशन रहे जिंदगी का हर अरमान। इसी प्यारी सी मुस्कान के साथ मैं आपसे लेती हूं विदा, रिजवाना खान। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट। इस वक्त शाम के 6:30 हुए। लीजिए अब पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत।

श्रोताओं, इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। इस वक्त शाम के 7:05 होने को है। कुछ ही देर में हम रिले कर रहे हैं समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: Super 1000 after defeating China's Wang Hongyang in a comeback victory. India also registered a notable win in mixed doubles with Rohan Kapoor and Ritvika Gade defeating Chinese Taipei's Yang Bo-Xian and Hu Ling-Fang in straight games 21-14, 21-14. And that is the end of this news bulletin.
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। केंद्र सरकार ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 347B के चौड़ीकरण के लिए 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी। प्रदेश में 5 से 12 जून तक विशेष जन कल्याण अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने आज इसकी तैयारियों की समीक्षा की। और राज्यपाल वंगूभाई पटेल ने भोपाल में हिंदी पत्रकारिता द्वि शताब्दी महोत्सव के तहत पोस्टर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि शामिलाने से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा है कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत एक अहम साझेदार है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत दोनों देशों के विशेष संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नेपाल की नई सरकार के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमान ईंधन यानी ATF की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता को मंजूरी दी है। पश्चिम एशिया संकट के कारण ATF की कीमतें मार्च में 60 रुपए से बढ़कर मई में 182 रुपए प्रति लीटर हो गई थी। ये सहायता अगले 36 महीनों तक जारी रहेगी। इससे विमानन क्षेत्र के 77 लाख रोजगार सुरक्षित रहेंगे। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर दी एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: इसके अलावा मंत्रिमंडल ने दिल्ली NCR में पुराने 2 लाख ट्रक और 16,000 बसों को BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने की योजना को भी हरी झंडी दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 347B के उन्नयन और चौड़ीकरण को मंजूरी दे दी है। 233 किलोमीटर से अधिक लंबी इस परियोजना पर 4,415 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे बैतूल, खंडवा, खरगोन, बड़वानी जिलों में सड़क की स्थिति सुधरेगी, यातायात जाम की समस्या से राहत मिलेगी। ये मार्ग इंदौर और नागपुर हवाई अड्डों के साथ साथ कई औद्योगिक और जनजातीय केंद्रों को भी बेहतर संपर्क देगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास एजेंसियों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और देश के हर गांव और हर व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के एक लेख को साझा किया, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए आर्थिक अवसरों की चर्चा की है। श्री मोदी ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की नई कहानी लिख रही है। प्रधानमंत्री ने इसे वोकल टू लोकल की दिशा में देश की वैश्विक छलांग बताया। दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई है।

0: 8 दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया और 40 से अधिक लोगों को बचाकर पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक एक विशेष जनकल्याण अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी समीक्षा की। अभियान की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृहद वृक्षारोपण से होगी। इसके बाद 8 जून से स्वच्छता अभियान, 12 जून से 18 जून तक जन कल्याण शिविर और 19 से 20 जून को प्राकृतिक खेती पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। ये पूरा अभियान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून को संपन्न होगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज भोपाल में हिंदी पत्रकारिता द्वि शताब्दी महोत्सव के तहत आयोजित पोस्टर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने अपनी शुरुआत से ही समाचार प्रसार से आगे बढ़कर राष्ट्रीय चेतना जगाने, स्वाधीनता आंदोलन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने आज कहा कि इस दौर में हिंदी पत्रकारिता को वीडियो, पॉडकास्ट और मोबाइल मंचों के जरिए युवा पीढ़ी से जोड़ना जरूरी है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दीपक सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंचायत और नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ये काम तय समय सीमा में पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। सचिव ने अंतिम मतदाता सूची समय पर जिले की वेबसाइट पर अपलोड करने के भी निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने के मौके पर शिवपुरी जिले की मैहर शक्ति और स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष ज्योति जाटव ने अपनी प्रेरक कहानी साझा की है। लखपति दीदी योजना से जुड़कर ज्योति ने स्वरोजगार की राह पकड़ी और आज वे आत्मनिर्भर जीवन जी रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा,
2: हमारे गांव में समूह चलाती हूँ, मेरे समूह हैं 11 समूह हैं, उनकी बैठक करती हूँ और उन मतलब जो भी बैंक सखी का काम करती हूँ और बुक कीपर का भी करती हूँ, तो उसमें मुझे 5,000 रुपये महीने के मिल जाते हैं। और घर पे मेरी साड़ियों की दुकान भी है, तो साड़ियों की दुकान भी चलाती हूँ संजय सवेरे के टाइम में, तो आज मेरी इनकम 1,44,000 से अधिक है। मोदी जी के लिए मैं धन्यवाद बोलना।
0: भोपाल की रविन्द्र भवन में कल शाम मशहूर शायर और पद्मश्री प्राप्त बशीर बद्र को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के इस यादे बशीर बद्र कार्यक्रम में कई बड़े शायर, गायक और फिल्म निर्माता बशीर बद्र की विरासत पर अपने विचार रखेंगे। इसके बाद अखिल भारतीय मुशायरा शुरू होगा, जिसमें देश भर के नामचीन शायर अपना कलाम पेश करेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले के इटारसी में सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में मंगल दिवस के तहत सुपोषण दिवस और टीकाकरण दिवस का आयोजन किया गया। देवास में आज यूसीसी के संबंध में सुझाव और विचार प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई। अनूपपुर जिले की छात्रा कुमारी आंचलपुरी ने GEE एडवांस्ड 2026 में शानदार सफलता प्राप्त करते हुए ST PWD श्रेणी में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। छिंदवाड़ा में अवैध खनन के मामले में उमरानाला पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें पैदल न्यायालय पेश किया है। शिवपुरी जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर ने धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। कटनी में मलेरिया से बचाव और रोकथाम संबंधी व्यापक जन जागरूकता फैलाई जा रही है। खरगोन में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत जिले में दहेज सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा। नशे को कहे ना अभियान के अंतर्गत शाजापुर में आज पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। खंडवा में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक कल 4 जून को होगी। शहडोल जिले में श्रमिकों के कल्याण के उद्देश्य से नागरिकों से श्रम प्रहरी बनकर श्रम विभाग को सहयोग देने की अपील की गई है। नीमच की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से पिछले 2 वर्षों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए प्लेसमेंट सुनिश्चित किया जाएगा। आगर मालवा पुलिस विभाग द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 6 दिवसीय

विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बैतूल कलेक्टर ने आज विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आपने सुना बजरंगी भाईजान फिल्म का यह नगमा जुबिन की आवाज़ में। गीत में बोल थे नीलेश मिश्रा के और धुन बनाई थी प्रीतम ने। लीजिए अब सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में जावेद अख्तर का लिखा गीत, जिसकी धुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने। फिल्म का नाम है दिल चाहता है।

0: आंधी बारिश और ओलावृष्टि ने डेरा जमाए रखो है। बारिश, तेज हवाओं से पारा 8 से 10 डिग्री तक लुढ़क गया है। कहीं भी हीट वेव नहीं बनी है। मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन सहित 36 जिलों में आंधी बारिश को अलर्ट जारी करो है। बुंदेली समाचार इतना ही संपन्न होते हैं।
1: बुंदेली समाचार।
0: भैया हरो रेडियो से चाहे मनोरंजन की बात हो या फिर देश विदेश की जानकारी या अपने ग्रामीण भाइयों के लिए समसामयिक जानकारी और बहुत सारी ऐसी जानकारी जिसे वे अपने खेती किसानी को और अधिक उन्नत और अधिक पैदावार युक्त बना सकते हैं। तो जय विषय पे कुछ ऐसी वार्ता है आज लेके हम हाजिर भए हैं, ग्रामीण विकास में रेडियो को सामयिक योगदान। और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार खरे और उनसे बातचीत करी है मनोज सक्सेना भैया ने। तो सुन लेते हैं जब भेंट वार्ता ग्रामीण विकास में रेडियो का सामयिक योगदान।

0: नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष कार्यक्रम में। मित्रों, रेडियो आकाशवाणी को आप सभी लंबे समय से सुनते चले आ रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी उम्र को देखें और सोचें कि आप इसको कब से सुन रहे हैं, रेडियो को कितने वर्षों से सुन रहे हैं, तो शायद आप में से बहुत सारे लोग यही कहेंगे, बचपन से, पूरा जीवन हो गया रेडियो सुनते हुए। जी हाँ, क्योंकि रेडियो के प्रसारण को, आकाशवाणी के प्रसारण को 90 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। यह गरिमा में जो सफर रहा है उसी पर हम बात करना चाहते हैं और आज का हमारा विषय है कृषि एवं ग्रामीण विकास में रेडियो का सम्यक योगदान। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं रेडियो के एक अच्छे ब्रॉडकास्टर कह सकते हैं, प्रसारणकर्ता भी कह सकते हैं, एक अच्छे सुधी श्रोता भी कहे जा सकते हैं, डॉक्टर प्रदीप खरे, जो कि व्याख्याता हैं सरोजनी नायडू शासकीय कन्या महाविद्यालय नूतन कॉलेज भोपाल में। आप हमारे साथ हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बात हो रही है रेडियो के सफर की और रेडियो के 90 वर्षों का जो ये सफर है, इस पूरी यात्रा को आप कैसे देखते हैं?
1: देखिए, सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष जो पूर्ण होने वाले हैं
0: जी,
1: उसमें आकाशवाणी के सुधी श्रोताओं को नमस्कार कर रहा हूं और सभी को बहुत बहुत बधाइयां दे रहा हूं
0: जी।
1: मैं इस वक्त बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं अपने आप को आकाशवाणी के साथ जुड़ करके और इस पर बात करने के लिए
0: जी।
1: उसकी खास बात यह है कि लगभग 55 साल से नियमित रूप से
0: जी
1: मैं रेडियो को सुन रहा हूं।
0: क्या बात,
1: रेडियो ने जो ये यात्रा पूरी की है
0: जी,
1: आवाज के इस साल में शायद 8 जून 2026 को जो ये पूरे होने वाले हैं 90 वर्ष, मुझे लगता है कितनी बड़ी यात्रा होगी ये जो आज तक चल रही है, जिसके साथ हम लोगों ने अपना जीवन जिया है
0: जी,
1: जिसके साथ हम लोगों ने अपनी संस्कृति को देखा है,
0: क्या बात,
1: जिसके साथ हमने अपने गांवों को देखा है
0: जी,
1: और गांव की कितनी अच्छी संस्कृति होती है, चाहे वो कृषि विकास को ले लें, चाहे ग्रामीण जीवन को ले लें, चाहे ग्रामीण संस्कृति को ले लें, एक अद्भुत आनंद पैदा करता है
0: जी।
1: तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज के इस अवसर पर हमको रेडियो के सुनने की जो हमारी क्षमता और क्षमता के साथ में उसकी जो चीजें कंटेंट हमको मिलती हैं, उसकी विषय वस्तु, वो हमको बिल्कुल गौरवान्वित कर देती है और हम गर्व से प्रफुल्लित हो जाते हैं कि हमने रेडियो और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे

0: करने वाले हैं। मैं बहुत ही निश्चित रूप से आज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं आपके साथ इस बातचीत में शामिल होकर के।
1: वाकई 8 जून 1936 से शुरू हुआ यह सफर अब 90 वर्ष पूर्ण करने वाला है। मैं खरे साहब आपसे थोड़ा सा आपको बचपन में ले जाना चाहता हूं। जब आप छोटे रहे होंगे, क्या आपके कुछ संस्मरण हैं अभी जो रेडियो से जुड़े रहे हों बचपन में?
0: देखिए, बचपन की अगर आप बात करेंगे तो मेरा जीवन रेडियो को सुनने से ही शुरू हुआ है, आज से 55 वर्ष पहले। क्योंकि हमारे घर और परिवार में एक किसान परिवार का बेटा होने के कारण
1: जी,
0: खेती से जुड़े होने के कारण
1: जी,
0: गांव में रहने के कारण
1: जी,
0: हमको यही संस्कार मिला है कि हम केवल रेडियो को सुन सकते थे और रेडियो को हम एक मार्गदर्शक मानते थे, एक ऐसा बिंदु मानते थे कि जैसे ये हमारा मित्र है। हम बाहर तो खेलने बचपन में बच्चों के साथ जाते थे, लेकिन घर में आने के बाद रात तक रेडियो का ही श्रवण करते रहते थे।
1: जी जी।
0: तो ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं कि हम अपनी घड़ी का जो मिलान करते थे वो रेडियो करते थे, किसी से पूछ करके नहीं करते थे। अगर किसी ने कोई दूसरा टाइम होता था और हम उसको ये बोलते थे कि मेरी घड़ी भैया रेडियो से मिली हुई है, तो वो व्यक्ति भी रेडियो से अपनी घड़ी को मिलाता था। यानी कि इतना बड़ा मित्र, इतना बड़ा मार्गदर्शक जो हमको जीना सिखाता है
1: जी,
0: जो हमारे समय को पाबंद करता है, जो हमें अपनी सुइयों में बांध के रखता है, उसको हम जैसे ही डील करते थे तो बहुत सारे आकाशवाणी के चैनल हमको ये बताते थे कि आज ये कार्यक्रम आने वाला है, ये कार्यक्रम आने वाला है। और मैं आपको बताऊं कि मैं एक कागज और पेन लेकर के उस कार्यक्रमों को नोट कर लेता था। इसलिए नोट करता था कि इतने बजे आकाशवाणी से ये कार्यक्रम आएगा और इस कार्यक्रम को सुनना है। मैंने आपको पहले ही कहा कि गांव से जुड़े होने के कारण कृषि और ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को बड़ी धैर्य और बड़े प्रेम से सुनते थे
1: आप,
0: क्योंकि हमें मालूम तो हो कि आखिर कृषि की उन्नति किस तरह से हो रही है। क्योंकि सच में अगर आप देखें तो हमारा देश गांव में बसता है, हमारी संस्कृति गांवों की है। जितने शहर ये बने हुए हैं ये गांव के टुकड़े होकर के, टुकड़े ना कहें तो गांव की संस्कृति ही शहरों में पहुंची है और फिर कहीं ना कहीं वो प्रदूषित होकर के महानगरों का रूप ले लिया है।
1: रेडियो ने जो ये पूरे सफर तय किया है इतना लंबा, इसमें ग्रामीण विकास की अगर हम बात करें, कृषि के विकास की अगर हम बात करें, तो आप कैसे देखते हैं, किस तरीके से रेडियो का योगदान रहा होगा कृषि विकास में और गांव के विकास में?
0: वाह, कितना बढ़िया प्रश्न आपने किया है। और ग्रामीण भारत तक जानकारी पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम अगर कुछ रहा है तो वो रेडियो ही रहा है। रेडियो ने आखिर क्या किया ये देखने की जरूरत है। खेती की नई तकनीक अगर कहीं हमें प्राप्त हुई है तो रेडियो और आकाशवाणी के माध्यम से और उसके प्रसारण के माध्यम से ही प्राप्त हुई है। मौसम की जानकारी, कब बारिश होने वाली है, कब ओलावृष्टि होने वाली है, अगर इस जानकारी की अगर आप बात करेंगे तो इतना सशक्त माध्यम है ये रेडियो आकाशवाणी के प्रसारण कि कल बारिश होने वाली है, खेत में किसान को जाना है या नहीं, उसको कौन से बीज को बोना है और कौन कौन से काम उस समयबद्ध तरीके से करना है, उस प्रक्रिया को जानने के लिए हमें रेडियो का ही सहारा लेना होता था। और आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप तो डिजिटल युग आ गया है
1: जी,
0: लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे हमारे जैसे श्रोता हैं
1: जी जी,
0: जो रेडियो को आज भी बहुत सारे लोग सुनते हैं
1: जी।
0: अपनी घड़ी के मिलान से लेके उन्नत कृषि के तरीकों को लेकर के मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी, इतना ही नहीं कौन से बीज, कौन से उर्वरक का इस्तेमाल करना चाहिए, पशुपालन और सरकारी योजनाओं की जानकारी वो रेडियो के माध्यम से ही मिल रही है हमको
1: जी।
0: तो ये जो सारी जानकारी है ये किसानों तक रेडियो के माध्यम से ही पहुंची है और आज भी निश्चित रूप से मान के चलिए कि पहुंच रही है। इससे हुआ क्या, ये जानकारी तो पहुंच गई, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा लाभ ये हुआ कि कृषि के उत्पादन में भी वृद्धि हुई और कृषि के प्रति, ग्रामीण विकास के प्रति जनमानस में एक जागरूकता भी पैदा हुई।
1: बिल्कुल सच बात है। मुझे याद आ रहा है सर कि मैं जब बचपन से रेडियो में भी सुनता आया हूं और मैं अपना खुद का अनुभव बीच में साझा करना चाहूंगा
0: जी जी,
1: कि मैं बहुत छोटा था जब रेडियो चलता था तो मुझे लगता था इसके अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो बात कर रहे हैं और ऐसा लगता था कि हमारे ही परिवेश के लोग वहां बैठ करके बात कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं। और वो जब जिज्ञासा मन में होती थी तो लगता है कि रेडियो वाकई अंतस में जाकर के बस जाता है और फिर रेडियो जब चलता है जीवन में तो आगे बढ़ाता जाता है। पहले रोजगार समाचार, रेल सूचनाएं पहले रेडियो से जाया करती थी, जो लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वो जरिया होता था सूचना प्राप्त करने का, समाचार प्राप्त करने का।

0: ऐसे ही बहुत सारे कार्यक्रम होते थे। आपकी मन में ऐसे कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो आज भी आपके मन में छाप है, जिनकी लगता है कि वो कार्यक्रम आज भी हमारे लिए यादगार हैं?
1: देखिए, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न मुझे पूछा है, और इससे मुझे आपके पूछने से मुझे याद आ रहा है कि लगभग मैं शायद 5 या 6 वर्ष का रहा हूँगा
0: जी,
1: तब से रेडियो सुन रहा हूँ
0: जी जी।
1: इतना प्रभावी माध्यम जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, और मुझे लगता है आज के डिजिटल युग में जो हम पहुंचे हैं ना, वो रेडियो के माध्यम से ही पहुंचे हैं। अगर शायद रेडियो नहीं होता तो हमारे वैज्ञानिक आविष्कारों में इतनी बड़ी खोज आज तक नहीं पहुंच पाती। खैर, दूसरा प्रश्न आपका इसी के साथ में, और कुछ भी पूछा आपने शायद,
0: कौन कौन से कार्यक्रम है रेडियो?
1: हाँ देखिए, मैं तो बढ़िया बात है, मुझे अवसर मिला कि मैं उनका नाम ले रहा हूँ और मैं रोमांचित भी हो रहा हूँ
0: जी जी,
1: रेडियो और आकाशवाणी की बात से, क्योंकि इसको मैं 55 साल से आपको पहले ही बताया सुन रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम, खास तौर से कृषि दर्शन का कार्यक्रम आता था
0: जी,
1: चौपाल का कार्यक्रम आता था जी। हमारे घर के बाहर चौपाल में बैठ करके बहुत सारे गांव के लोग बैठते थे
0: जी,
1: और रेडियो बीच में उनके बैठा रहता था। तो हम ऐसी कल्पना में हम लोग करते थे, और हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उस वक्त के, ऐसी कल्पना करते थे कि जैसे रेडियो एक व्यक्ति के रूप में वहाँ उपस्थित है और वो जो बोल रहा है उसको हम लोग सुन रहे हैं, और उस वो एक आदर्श के रूप में रहता था और उसकी बात को हम मान रहे हैं। तो कृषि दर्शन का कार्यक्रम, चौपाल का कार्यक्रम, और मुझे याद आ रहा है कि किसान वाणी का कार्यक्रम, मौसम बुलेटिन, सरकारी योजनाओं से जुड़े बहुत सारे कार्यक्रम, क्योंकि उस समय तो हम छोटे बच्चे थे, जैसे जैसे बड़े हुए तो भी हमारा सुनना बंद नहीं हुआ, तो रोजगार के बहुत सारे अवसर आते थे तो उसी के माध्यम से मालूम होते थे, और जब रेडियो से ये मालूम हो जाता था कि रोजगार की ये जगह आई हुई है, तब उससे संबंधित हम रोजगार समाचार या उस समय जो भी इस तरह के बुलेटिन उपलब्ध हुआ करते थे प्रिंट मीडिया के माध्यम से, उनको खरीद करके हम लोग आवेदन किया करते थे। तो रेडियो की बड़ी सख्त और इस तरह की ये भूमिका रही है प्रारंभ से ही।
0: वाकई खरे साहब, आपने कहा ना कि रेडियो बहुजन हिताय है, बहुजन सुखाय है, और लक्ष्य रेडियो का यही है कि महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, इवन किसान हो, सभी के लिए इसमें बहुरंगी कार्यक्रम होते हैं, और सबको ज्ञान देना, सबके लिए रास्ता देना, सबके लिए एक सलाह देना, एक अच्छी अच्छी जानकारियां उन तक पहुंचाना रेडियो का काम है। अब डिजिटल युग आ चुका है, आज बहुत सारे माध्यम हैं, लेकिन आज की इस परिस्थिति में रेडियो की भूमिका को आप कैसे देखते हैं?
1: देखिए, आज का युग डिजिटल युग है
0: जी,
1: हमारे नौजवान, हमारे बच्चे सारे अब डिजिटल युग के साथ में समाविष्ट हो गए हैं
0: जी,
1: लेकिन इससे आप ये कभी नहीं कह सकते हैं कि रेडियो की महत्ता कम हुई है। रेडियो की स्थिति आज भी वही है, आज भी वही श्रोता हैं, 55, 60, 70 साल पुराने श्रोता आज भी रेडियो को सुनना पसंद करते हैं। डिजिटल युग में वो नहीं जी रहे हैं, उनके बच्चों के माध्यम से वो डिजिटल युग को जानते जरूर हैं
0: जी जी।
1: मोबाइल फोन, एफएम रेडियो के माध्यम से किसान तुरंत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसका लाभ हुआ है। कृषि और ग्रामीण विकास में कमी कहीं नहीं आई है, उनकी सूचनाओं में कहीं कमी नहीं आई है, क्योंकि एफएम रेडियो भी और मोबाइल फोन भी वो जानकारी प्रदान कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी खास बात और देखिए, आपकी आपदा या खराब नेटवर्क की वजह से रेडियो एक विश्वसनीय माध्यम बना हुआ है आज के समय में।
0: सच बात। और सर, एक बात और भी मैं आपको बीच में कहना चाहूंगा कि आज का डिजिटल युग आया है तो रेडियो भी अब डिजिटल युग में जा चुका है। हमारा न्यूज ऑन एआर एक ऐप है जिसके माध्यम से आप मोबाइल में उसको ऐप को डाउनलोड करके
1: जी जी।
0: पूरे देश के कार्यक्रमों को आप एक ही मोबाइल में एक साथ ट्यून करके सुन सकते हैं। हमारे युवा साथी, हमारे जितने भी रेडियो के श्रोता हैं, वे इस नए युग में, नए तरीके से, नए परिवेश में रेडियो को सुन रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। मैं सर आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, आप तो रेडियो में कंपेयर रहे हैं, सूत्रधार की भूमिका आपने निभाई है, और आपके परिवार से भी रेडियो से जुड़े हुए लोग रहे हैं, क्योंकि आप श्रोता अकेले नहीं हैं, आप वक्ता भी हैं रेडियो पर, क्या कहना चाहेंगे?
1: जी जी जी, आपने फिर मुझे वही पुरानी बातें याद दिला दी। बहुत मैं छात्र जीवन में था जब रेडियो से मुझे प्रेम हुआ था,
0: और पहला प्रेम आपका रेडियो है।
1: निश्चित रूप से रेडियो ही है, बिल्कुल। रेडियो से प्रेम होने के कारण ही मेरी बड़ी आकांक्षा होती थी कि मैं रेडियो में बोलूं, आकाशवाणी के माध्यम से मेरी आवाज दूसरे तक पहुंचे, और उसका परिणाम ये हुआ कि जबलपुर आकाशवाणी से

0: युवाणी कार्यक्रम में, कृषि दर्शन कार्यक्रम में और बहुत सारे कार्यक्रमों में मैंने कंपेयरिंग का काम किया। तो ये मान के चलिए कि रेडियो की जो भूमिका है युवाओं के लिए तो है ही, युवाओं की आपने बात की, महिलाओं के विकास के लिए भी युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है।
1: जी जी,
0: रेडियो ने महिलाओं को क्या दिया?
1: जी।
0: स्वास्थ्य की जानकारी दी,
1: वा,
0: पोषण की जानकारी दी,
1: सच,
0: खान पान की जानकारी दी, स्वरोजगार और शिक्षा संबंधी जानकारी प्रारंभिक रूप से रेडियो से ही प्राप्त हुई। तो युवाओं को रोजगार, कौशल विकास, जो आजकल पूरे देश में कौशल विकास की बात चल रही है, ये काम रेडियो में शुरू हो चुका था। आकाशवाणी के माध्यम से कौशल का कैसे विकास किया जाए, इस तरह के कार्यक्रम आया करते थे। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि कौशल विकास के कार्यक्रम, आधुनिक कृषि तकनीकों के कार्यक्रम, ये सब इनका जो सूत्रपात है वो रेडियो के माध्यम से ही जनमानस तक संस्कारित होकर के पहुंचा है।
1: बिल्कुल, अब बात कहीं अधूरी रह गई बीच में। मैंने शायद सुना था कि आपके परिवार में कुछ और लोग भी हैं जो रेडियो से जुड़े रहे हैं, आप शायद किनारा कर लिए उस बात को। मैं चाहता हूं वो भी हमारे श्रोता सुने।
0: जी जी जी जी जी, शायद मुझे उल्लेख करना ही पड़ेगा, आपने बताया तो। बहुत सालों तक आकाशवाणी भोपाल
1: जी,
0: आकाशवाणी सागर
1: जी,
0: मेरी पत्नी ग्राम सभा में बहुत वर्षों तक कंपेयर रही
1: जी,
0: ग्राम सभा के अनेक कार्यक्रम यहाँ से प्रस्तुत किए।
1: मैं आपको बता दूं, हमारे श्रोताओं को भी बता दूं कि 98 में उनका यहाँ उस समय ग्राम सभा में ऐसे कंपेयर के रूप में वह रही हैं, और मेरा सौभाग्य है कि मैंने बहुत सारे प्रोग्राम उनके साथ ग्राम सभा में दिए हैं, और बहुत वाकई बहुत अच्छा उनके साथ का वो रहा है काम करने का अनुभव मेरा। जिस तरीके से रेडियो आगे बढ़ रहा है और इतना लंबा सफर रेडियो ने सफलतापूर्वक तय किया है, हमारे श्रोताओं के लिए आखिर में आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए, रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता कि जहां आज भी विकास के मार्ग नहीं खुल पाए हैं, रेडियो ने उनको संस्कारित और विकसित किया है। वो रेडियो की आवाज़ ही उनको संस्कार भी दे रही है और उनका मनोरंजन भी कर रही है। जो लोग संस्कारित हो चुके हैं, जो शिक्षित हो चुके हैं, जो महानगरों में हैं और गांव में हैं, वो तो अब रेडियो के ऊपर भी पहुंच गए हैं, क्योंकि अब डिजिटल युग आ गया है।
1: सच बात।
0: लेकिन रेडियो की अस्मिता, रेडियो के अस्तित्व को वो लोग नकार नहीं सकते हैं, और भविष्य में मुझे ऐसा लगता है, या शायद अभी भी हो, क्योंकि मैं तकनीक से बहुत ज़्यादा परिचित नहीं हूँ गांव में रहने के कारण, और वहाँ पर ग्राम में जीवन में संस्कारित होने के कारण, कि शायद भविष्य में या आज भी रेडियो डिजिटल तकनीक, मोबाइल ऐप और इंटरनेट रेडियो के साथ और अधिक प्रभावी रेडियो बनता चला जा रहा है, या आप इसको ये कह सकते हैं कि बन गया है। अब आप देखिए कि स्थानीय भाषाओं में, जिस प्रदेश में जाएं वहां की अपनी एक स्थानीय भाषा है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो स्थानीय भाषाओं में भी कृषि आधारित कार्यक्रम किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी बनते जा रहे हैं और बन रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं अपने सुधी श्रोताओं से भी निवेदन करूंगा कि रेडियो में जो जानकारी मिल रही है वो सच्ची जानकारी है, सही जानकारी है, बहुत शोध परक जानकारी है, उसको आप प्रामाणिक तौर पर स्वीकार कर सकते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रदीप कुमार खरे जी, आपने हमसे बहुत अच्छी और लंबी बातचीत की है, बहुत सारगर्भित बातचीत की है, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

अभी हमारे श्रोता भैया बहन सुन रहे थे ग्रामीण विकास में रेडियो की सामयिक योगदान। ये वार्ता सुन के जरूर वे लाभान्वित हुई हुई हैं और उन्हें भी अपने दिन याद आ गए हुई हैं कि कैसे उनने अपने बचपन की शुरुआत रेडियो के माध्यम से करी थी और आज 90 वर्ष होवे पे भी आज हम देख रहे हैं कि कुछ बदलावों के साथ हमारे रेडियो में वही एक चमक बनी हुई है। और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर प्रदीप कुमार खरे और उनसे बातचीत करी थी मनोज सक्सेना भैया ने। और आप सुन लेते हैं गिरजा भाई को गाओ भाव कृष्ण भजन।

भूमि की उर्वरता को टिकाऊ बनाए रखवे के लाने हमें जरूरी होते हैं कि हम सतत फसल उत्पादन लेते रहे। और हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनने प्रकृति से जो जीवाणु अपन को मिल रहे हैं उनको पहचान के उनसे विभिन्न प्रकार के पर्यावरण के लाने जो उपयोगी उर्वरक हैं उनको तैयार करके रखो है, जिन्हें हम जैव उर्वरक या जीवाणु खाद कहते हैं। जैव उर्वरक के इस्तेमाल करवे से वायुमंडल में जितने भी उपस्थित नाइट्रोजन हैं पौधों को सुगमता से उपलब्ध हो जाते हैं। भूमि में उपलब्ध फास्फोरस घुलनशील रूप में भी उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे माटी और उपजाऊ बन जाते हैं। जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरकों के पूरक के रूप में हैं, विकल्प के रूप में इनको हम नहीं मान सकते हैं। जैव उर्वरकों में जीवित सूक्ष्म जीव जीवाणु कहलेवे कवक और शैवाल के रूप में पाए जाते हैं, जे पौधों की जड़ों या मिट्टी में पहुँच के प्राकृतिक रूप से पोषक तत्व की संख्या को बढ़ाऊत हैं और वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है ऊखों स्थिर भी रखते हैं। फास्फोरस को घुलनशील बनाऊत हैं और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा देते हैं। जई काजे ये हमारे सबके लाने बहुत उपयोगी माने जाते हैं। और इनके उपयोग में सबसे बड़ी बात करें कि जैव उर्वरक अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे राइजोबियम होते हैं जो दलहनी फसलों में गांठें बनाऊते हैं, एजोटो बेटर होते हैं जो

गेहूं, मक्का, कपास के लिए नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं। फास्फोरस घुलनशील जीवाणु के रूप में होते हैं, ये मिट्टी में उपलब्ध अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील के रूप में पौधों लोग उपलब्ध कराते हैं। नील हरित शैवाल के रूप में होते हैं, और इनकी सबसे बड़ी जो बात है वो इनमें बहुत सारे लाभ छुपे भए हैं। सबसे बड़ी बात है ये लागत में कम होते हैं, मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं, कैसे ये प्राकृतिक जीवाणुओं से बनाते हैं, में जल धारण की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, और सबसे बड़ी बात जो है वो पर्यावरण संरक्षण के करीब हैं। रासायनिक उर्वरों की तरह इनमें पानी और मिट्टी को प्रदूषित करने की क्षमता नहीं होते, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वह है उत्पादन में जे वृद्धि कराते हैं। जब इतनी अच्छी इनमें बात है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जैव उर्वरकों को प्रयोग करें और अपनी जो है फसल को और उपजाऊ बना के रख लें वे। और अब सुन लेते हैं गणपत सिंह यादव और साथियों के स्वर में जो लोकगीत।

भैया हरो चलवे से पहले आप और खो कल के कार्यक्रम सोई बताओ चलवे कल भुंसरा सुनवे कृषि चर्चा 6:45 पे मृदा सौरीकरण को महत्व और वाचक से रही है आराधना कुमारी को और संजय चुने भेंट वार्ता गर्मी के मौसम में स्वास्थ्य रहवे के लाने आयुर्वेद की सलाह वाचक से रही है ऋतु पांडे से पूनम सरावगी की बातचीत और आरती बहन को देव आज्ञा राम राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे केकी की आवाज़ में जन्नत फिल्म का ये नगमा। बोल थे सईद कादरी के और धुनमनाई थी प्रीतम ने। लीजिए अब सुनिए उदित नारायण और पूर्णिमा की आवाज़ों में जावेद अख्तर का लिखा गीत, जिसके धुनमनाई है अनु मलिक ने। फिल्म का नाम है दिल जले।
1: राख के ढेर में

आरजू झूठ है कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

हो तुम रेत के ये महल, जिनको एक रोज खुद ही मिटाओगी तुम। आज कहती हो इस दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा नाम तक भूल जाओगी तुम।

0: एक पल में जो आकर गुजर जाता है, ये हवा का वो झोंका है।
1: श्रोताओं लीजिए, अब सुनिए उदित नारायण की आवाज़ में जावेद अख्तर का लिखा गीत, जिसकी धुन बनाई है राजेश रोशन ने और फिल्म का नाम है दस्तक।

श्रोताओं लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गीत जिसके धर्मनाई है जतिन ललित ने, फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज़ में गरम मसाला फिल्म का ये नगमा। बोल थे मयूरपुरी के और धुन बनाई थी प्रीतम ने। लीजिए कार्यक्रम के आखिर में सुनिए उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आनंद बख्शी का लिखा गीत, जिसकी धुन बनाई है उत्तम सिंह ने। फिल्म का नाम है हम तुम पर मरते हैं।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। इस वक्त रात के 8:30 हुए हैं। लीजिए आप सुनिए कार्यक्रम पॉप संगीत।

समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के

0: विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
2: ओडिशा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है फिशिंग हो, पान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से ओडिशा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
0: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: न्याय बंधु, कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से

0: विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतिव्रत बैनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटक नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डी के शिव कुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
3: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में एक महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98 लाख से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
5: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित होगी। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
4: वहीं आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन

0: औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है, जो बाजार से 50 से 80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
1: लगभग 1 साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का भी सलाह है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
0: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40 लाख करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंग फांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कंबोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
4: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union cabinet approves 10,000 crore rupee ATF

0: किसी के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका आज के फनकार में। आज हम बात करेंगे उस चेहरे की जिसे देखकर दिल मुस्कुरा उठता है, जिसकी मुस्कान पर लोग दिल हार जाते हैं और वो हमारे दिल में बस जाता है। एक ऐसा अभिनेता जो रोमांस करता है तो सच्चा लगता है,
1: सच कह रहा है दीवाना,
0: और जब दर्द दिखाता है तो आंखें नम हो जाती हैं।
1: दिल दिल ना किसी से लगाना।
0: जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे अपने आर माधवन की, जिन्हें प्यार से लोग मैडी कहते हैं।

एक ऐसा कलाकार जिसने टेलीविजन से शुरुआत की, तमिल सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई और फिर बॉलीवुड में अपने अभिनय से लाखों दिलों को छू लिया।

रंगनाथन माधवन का जन्म 1 जून 1970 को बिहार के जमशेदपुर में हुआ, जो अब झारखंड में आता है। पिता राघवन टाटा स्टील में मैनेजर और माँ सरोजा बैंक में मैनेजर थीं। आर माधवन की फैमिली जमशेदपुर में ही रहती थी, इसी वजह से इनकी स्कूलिंग यहाँ से पूरी हुई। अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद महाराष्ट्र में मौजूद कोल्हापुर के राजाराम कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स से बीएससी में ग्रेजुएशन किया और वो पढ़ाई में बहुत ही शानदार स्टूडेंट थे और ग्रेजुएशन करने के बाद मुंबई के किशनचंद चेलाराम कॉलेज से पब्लिक स्पीकिंग में अपने पोस्ट ग्रेजुएशन को कम्प्लीट किया। पढ़ाई के अलावा आर माधवन पढ़ाई के दिनों में ही एनसीसी कैडेट भी रह चुके थे और एनसीसी ट्रेनिंग भी उन्होंने ली। लाइफ में एक ऐसा समय भी आया जब वो मिलिट्री ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। इसी दौरान उन्हें मॉडलिंग का ऑफर मिला और फिर आया टेलीविजन का दौर। यूले लव स्टोरीज, बनेगी अपनी बात, सी हॉक्स और घर जमाई, इन सीरियल्स में उन्होंने छोटे पर्दे पर अपनी पहचान बनाई।

पर असली ब्रेक मिला साल 2000 में मणिरत्नम की तमिल फिल्म अलई पायते से। इस फिल्म की सफलता ने उन्हें तमिल सिनेमा का रोमांटिक हीरो बना दिया और फिल्म का हिंदी रीमेक साथिया के रूप में बना साल 2002 में, और इसमें नजर आए विवेक ओबेरॉय और रानी मुखर्जी।

साल 2001 में उन्होंने हिंदी फिल्म रहना है तेरे दिल में से हिंदी डेब्यू किया। फिल्म में दिया मिर्जा और सैफ अली खान के साथ उनके किरदार मैडी ने युवाओं के बीच उन्हें सुपरस्टार बना दिया। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म शुरुआत में औसत रही, लेकिन बाद में ये कल्ट रोमांटिक क्लासिकल बन गई।

साल था 2002, फिल्म थी दिल विल प्यार व्यार। इस फिल्म में माधवन ने एक ऐसे नौजवान का किरदार निभाया जो प्यार में टूटा तो जरूर, लेकिन फिर उस टूटे दिल को संगीत के सुरों में ढाल दिया। एक तरफ इमोशन था तो दूसरी तरफ रफ्तार से भागती जिंदगी, और इन दोनों के बीच माधवन ने अपनी एक्टिंग से वो बैलेंस बनाया जिसे देख दर्शक बस यही बोले क्या बात है।

बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जो आर माधवन के लिए सिर्फ एक रोल नहीं बल्कि एक क्रिएटिव सफर थी, राम जी लंदन वाले। ये फिल्म तमिल हिट नल दमयंती की हिंदी रिमेक थी जिसे लिखा था कमल हासन ने, लेकिन हिंदी वर्जन को माधवन ने सिर्फ निभाया ही नहीं बल्कि संवादों से लेकर क्लाइमेक्स तक खुद लिखा खुद संवारा। बावर्ची नाम से शुरू हुई ये फिल्म बाद में राम जी लंदन वाले बनी। और खास बात ये थी कि निर्देशक संजय दयामा, जिन्हें आपने लगान जैसी फिल्मों में बतौर सह निर्देशक देखा होगा, पहली बार डायरेक्शन की कमान संभाल रहे थे। राम जी लंदन वाले आज भी माधवन के करियर की एक यादगार कहानी है। साल 2006 में रंग दे बसंती में फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय राठौर की भूमिका माधवन ने निभाई, जो छोटी लेकिन बेहद असरदार थी। कहा जाए तो उनके किरदार के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी गुथी गई। इस फिल्म में सोहाली खान के साथ उनकी जोड़ी को काफी सराहा गया।

0: साल 2009 में आई फिल्म थ्री इडियट्स और आर माधवन उस कहानी का वो हिस्सा बने जिसने लाखों युवाओं के दिल की बात कह दी। उन्होंने निभाया फरहान कुरैशी का किरदार, एक ऐसा लड़का जो इंजीनियरिंग की किताबों में उलझा जरूर था लेकिन उसके भीतर बसता था एक कलाकार का दिल, एक फोटोग्राफर की उड़ान। फरहान की दुविधा, उसके डर और अंत में उसका हिम्मत से किया गया फैसला, ये सब कुछ इतना सच्चा लगा कि मानो हर दर्शक को अपनी ही कहानी उसमें दिखाई दी। माधवन ने फरहान को सिर्फ निभाया नहीं बल्कि जिया, और इसी वजह से आज भी वो किरदार लोगों के दिलों में एक प्रेरणा की तरह जिंदा है।
1: जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होंठों को करके गोल, होंठों को करके गोल, सीटे बजा के बोल, लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होंठों को करके गोल, होंठों को करके गोल, सीटे बजा के बोल।

साल 2011 और पर्दे पर नजर आई एक अनोखी प्रेम कहानी तनु वेड्स मनु। इस फिल्म में आर माधवन बने डॉक्टर मनु शर्मा, एक शांत संकोची लेकिन दिल से बेहद सच्चे प्रेमी। उनके सामने थी कंगना रनौत एक बिंदास और बगावती तनु के रूप में। मनु का किरदार जैसे सादगी की मिसाल था, वो प्यार करता लेकिन उसका शोर नहीं मचाता था, उसकी खामोशी में भी इश्क की आवाज थी। और फिर साल 2015 में इसका सिक्वल आया तनु वेड्स मनु रिटर्न्स। फिल्म ने तो जैसे

इसके बाद माधवन कुछ समय के लिए सिल्वर स्क्रीन से दूर हो गए। इस दौरान उन्होंने खुद को रिफाइन किया, एक्टिंग और लुक्स पर काम किया और साल 2017 में धमाकेदार वापसी की फिल्म विक्रम वेधा से। इस क्राइम थ्रिलर में उन्होंने एक पुलिस अफसर का किरदार निभाया जिसे क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों का प्यार मिला। इस थ्रिलर को निर्देशित किया था पुष्कर गायत्री की जोड़ी ने, जिन्होंने साल 2017 में तमिल सिनेमा को एक नई ऊंचाई दी। आर माधवन बने ईमानदार पुलिस अफसर विक्रम, गंभीर, सुलझा हुआ और भीतर से सवालों से घिरा हुआ। वहीं विजय सेतुपति के निभाए किरदार वेधा ने अपनी कहानियों से विक्रम की सोच को ही हिला दिया। ये फिल्म जितने थ्रिलिंग थी उतनी ही सोचने पर मजबूर करने वाली। तभी तो साल 2022 में आई इसकी हिंदी रीमेक। निर्देशन फिर से पुष्कर गायत्री के हाथ में था। इस बार विक्रम बने सैफ अली खान और वेधा बने ऋतिक रोशन। फिल्म में एक्शन और स्टाइल भरपूर था लेकिन गहराई थोड़ी हल्की। सैफ का विक्रम ज्यादा आक्रामक था जबकि ऋतिक वेधा के रूप में पूरी तरह चार्म और धमक से भरे। तमिल वर्जन सोच के दरवाजे खोलता है और हिंदी वर्जन एंटरटेनमेंट का दरवाजा।

साल 2022 में आर माधवन ने खुद को सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प और जुनून के प्रतीक के रूप में पेश किया। फिल्म थी रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। ये फिल्म तीन भाषाओं में एक साथ बनी, इंग्लिश, तमिल और हिंदी। इस बार माधवन ने सिर्फ पर्दे पर अभिनय नहीं किया बल्कि इस फिल्म को लिखा, निर्देशित और प्रोड्यूस भी किया। कहानी थी एक सच्चे हीरो की, इसरो वैज्ञानिक नंबी नारायणन की, जिनके जिंदगी में विज्ञान जितना बड़ा था उतना ही बड़ा था अन्याय से लड़ने का हौसला भी। माधवन ने इस किरदार में नंबी सर की प्रतिभा, पीड़ा और आत्मसम्मान को कुछ इस तरह जिया कि हर दर्शक की आंखें नम हो गई। रॉकेटरी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और कांस फिल्म फेस्टिवल में भी इसे स्टैंडिंग ओवेशन मिला। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये थी माधवन की सबसे महत्वाकांक्षी और दिल के करीब परियोजना, जिसने साबित किया कि जब सच्ची कहानी और सच्चा कलाकार एक साथ मिल जाएं, तो सिनेमा इतिहास बन जाता है।

माधवन की निजी जिंदगी भी उतनी ही प्रेरणादायक है। उनकी पत्नी सरिता बिरजे हैं, जिनसे उनकी मुलाकात एक पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप के दौरान हुई थी। वो एयर होस्टेस थी और दोनों ने साल 1999 में शादी की। उनका बेटा वेदांत माधवन एक इंटरनेशनल स्विमर है और भारत के लिए उसने स्वर्ण पदक जीते हैं। माधवन अपने बेटे की सफलता को सबसे बड़ा गौरव मानते हैं।

वर्षों में माधवन ने न सिर्फ सिनेमा में वापसी की बल्कि अपने अभिनय की गहराई से सबको चौंका दिया। साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म शैतान, इसमें उन्होंने एक तांत्रिक की भूमिका निभाई जो रहस्यमय और भयावह शक्तियों से जुड़ा हुआ है। इस किरदार में उनका खामोश डर, रहस्यपूर्ण मुस्कान और संजीदगी ने दर्शकों को डराया भी और बांधे भी रखा। ये भूमिका उनकी अभिनय क्षमता का एक नया आयाम दिखाती है। इसके अलावा वेब सीरीज डी कपल्ड में उन्होंने एक तलाकशुदा लेखक की भूमिका निभाई जो अपने रिश्तों और समाज की विडंबनाओं से जूझ रहा है। इस सीरीज में उनका व्यंग्यात्मक अंदाज और ईमानदार प्रदर्शन एकदम नया अनुभव था। साथ ही 2023 में नेटफ्लिक्स की बहुचर्चित वेब सीरीज द रेलवे मैन में उन्होंने भारतीय रेल कर्मियों के संघर्ष को दर्शाने वाले एक अहम किरदार में दमदार अभिनय किया। हिसाब बराबर में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और समाज के ज्वलंत मुद्दों को बारीकी से प्रस्तुत किया। माधवन का मानना है कि फिल्मों का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि प्रेरणा देना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना भी।

माधवन को मिले पुरस्कारों में शामिल हैं बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर साउथ अवार्ड, अलई पायते फिल्म के लिए आईफा और जी सिने अवार्ड का नॉमिनेशन उन्हें मिला थ्री इडियट्स फिल्म के लिए। राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें मिला बेस्ट फीचर फिल्म का रॉकेटरी के लिए। इसके अलावा उन्हें यूएन द्वारा यूथ आइकन के तौर पर सम्मानित किया गया। उनकी छवि एक जिम्मेदार अभिनेता और संवेदनशील इंसान की है। माधवन एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने मेहनत, लगन और ईमानदारी से इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। उम्र के इस दौर में भी उनका चार्म और व्यक्तित्व उन्हें किसी भी नए अभिनेता से कम नहीं ठहराता। वो आज भी हर दिल में बसते हैं, युवाओं के फेवरेट हैं और हर भूमिका में एक नई ताजगी लेकर आते हैं।

0: मोहब्बत आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आज केंद्रित था दिलकश मुस्कान के मालिक आर माधवन पर। स्वर नेहा शर्मा का, शोध आलेख और प्रस्तुति तेजश्री कामले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: आज के फनकार।

अना की बहुत हैं आप हसीन, दिल को ठुकराया करते हैं, लेकिन हम भी दिल वाले दुश्मन को गले लगाया करते हैं। सामिन, हम में से बहुत लोग अपना जलवा बरकरार रखते हैं, और रखना भी चाहिए। इस जलवे को बरकरार रखिए बरखुरदार। फना निजामी कानपुरी फरमाते हैं, वो आंख क्या जो आरिज़ो रुख पर ठहर न जाए, वो आंख क्या जो आरिज़ो रुख पर ठहर न जाए, वो जलवा क्या जो दीदा हो दिल में उतर न जाए, वो जलवा क्या जो दीदा हो दिल में उतर न जाए।

शायरी में जलवा शब्द ज्यादातर हुस्न और इश्क से जुड़ा है, हालांकि शब्द अलग अलग जगहों पर अलग अलग ढंग से इस्तेमाल किए जाते हैं और अर्थ भी जुदा होते हैं, लेकिन हुस्न के जलवे तो मशहूर हैं। अमीर मिनाई फरमाते हैं, इलाही क्या कयामत है वो जब लेते हैं अंगड़ाई, इलाही क्या कयामत है वो जब लेते हैं अंगड़ाई, मेरे जख्मों के सब टांके अचानक टूट जाते हैं।

हुस्न का जलवा तो अच्छे अच्छों को घायल कर देता है। खुदा जाने आज उसका कैसा जलवा होगा, हुस्न होगा, नजाकत होगा और जमा होगा। वहीं जलील मानिकपुरी कहते हैं, मेरी आंखों से मेरी यार का जलवा देखो, चश्मे मजनू से बाहरे रुख ए लैला देखो। मेरी आंखों से मेरी यार का जलवा देखो, चश्मे मजनू से बाहरे रुख ए लैला देखो।

इस अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है। हम न समझे तेरी नजरों का तकाजा क्या है, कभी पर्दा कभी जलवा ये तमाशा क्या है।

सामिन, इश्क करने वालों के लिए अपनी महबूबा के हुस्न का जलवा बिल्कुल दवा जैसा होता है। तभी तो अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि किस किस अदा से तूने जलवा दिखा के मारा, किस किस अदा से तूने जलवा दिखा के मारा, आजाद हो चुके थे तूने बंधा बना के मारा।

कभी कभी प्रेमी जितने बेकरार होते हैं अपने महबूब का जलवा देखने के लिए, उतना ही जलवा दिखाने वाला भी बेताब होता है। हाँ, तभी तो ज़ौक साहब फरमाते हैं, इश्क का ज़ौक के नज़ारा मुफ्त में बदनाम है, इश्क का ज़ौक के नज़ारा मुफ्त में बदनाम है, हुस्न खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए।

जलवा था, जलवा है, जलवा रहेगा, लेकिन एक दिलजला आशिक खुदा से यही कहता है, कोई तो जलवा खुदा के वास्ते दीदार के काबिल दिखाई दे, कोई तो जलवा खुदा के वास्ते दीदार के काबिल दिखाई दे, संग दिल तो मिल चुके हैं हजारों, कोई अहले दिल तो दिखाई दे, कोई अहले दिल तो दिखाई दे।

यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। इस वक्त रात के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब पेश है कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी नगमे।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में भरोसा फिल्म का ये गीत। बोल थे राजेंद्र कृष्णन के और धुन बनाई थी रवि ने। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में आंखें फिल्म का ये नगमा। बोल है साहिर के और धुन बनाई है रवि ने।

श्रोताओ लीजिए, अब सुनिए तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज़ों में राजेंद्र कृष्णन का लिखा गीत, जिसकी धुन बनाई है सलील चौधरी ने। फिल्म का नाम है छाया।

छोटी सी बात, लीजिए इस फिल्म का नगमा सुनिए यशुदास और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीत में बोल है योगेश के और धुन बनाई है सलील चौधरी ने।

श्रोताओ लीजिए, अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में कैफी आज़मी का लिखा यह गीत। धुन है मदन मोहन की और फिल्म का नाम है हीर रांझा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर

0: काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।